मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 मई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय 5:57 होने को हैं। अब हमारी प्रांतकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 6 बजने को हैं समाचार। कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया।

0: अमरीकी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और सीपीआईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हर घर गूंजे भारत माता की जय जयकार, देशभक्ति से महके अपना सारा संसार। हमारा भारत विविधताओं में एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। देश के वीर जवानों की वजह से हम चैन की नींद सो पाते हैं। तिरंगे की शान बनाए रखना हर भारतीय का पहला कर्तव्य है। भारत माँ के लिए समर्पण ही सच्ची देशभक्ति कहलाती है। जब कोई सैनिक सीमा पर जागता है तब पूरा देश चैन की नींद सोता है। जब राष्ट्रगान की धुन बजती है तब हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। देशभक्ति केवल शब्द नहीं बल्कि अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान है। इन्हीं देश प्रेम की भावनाओं को नमन करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं एक प्रेरणादायक देशभक्ति गीत से।

देश प्रेम से ओतप्रोत यह प्रस्तुति सचमुच मन में नई ऊर्जा और गर्व का संचार करती है। श्रोताओं, राष्ट्रभक्ति हमें अपने देश से जोड़ती है और ईश्वर भक्ति हमें अपनी आत्मा से। जब ये दोनों भाव एक

साथ मिलते हैं तब जीवन में सच्चे संस्कार और सकारात्मकता का निर्माण होता है। इसी सुंदर भावना के साथ अब बढ़ते हैं प्रभु वंदना की ओर। सबसे पहले हम श्री गणेश जी का स्मरण करते हैं। प्रभु श्री गणेश देवों में सबसे प्रथम पूज्य हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हे प्रथम पूज्य गणराया, आपकी महिमा सबसे न्यारी, रिद्धि सिद्धि के दाता आप, भक्तों के संकट हरने वाले विघ्नहारी। तो आइए कार्यक्रम की प्रथम प्रस्तुति।

भक्ति मनुष्य को विनम्रता, धैर्य और प्रेम का संदेश देती है। जब मन अशांत हो तब ईश्वर का स्मरण हमें नई शक्ति प्रदान करता है। संत कबीर दास जी ने भी कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। भोलेनाथ को कल्याण और करुणा का प्रतीक माना जाता है। आइए सुनते हैं अगली मधुर प्रस्तुति, भगवान शिव को समर्पित।

जीवन की भागदौड़ में कुछ पल ईश्वर चिंतन के लिए निकाल लिए जाएं तो मन को अद्भुत शांति प्राप्त होती है। भक्ति हमें यह सिखाती है कि हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना ही सच्ची साधना है। इन्हीं भावों के साथ अब प्रस्तुत है अगला भक्तिमय गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन समय की गति, आलेख सुधा शर्मा का है, वाचन स्वर है पद्मश्री तपस्वी का।
1: समय की अपनी एक गति है, समय का स्वभाव है चलते रहना, उसकी यात्रा कभी रुकती नहीं, थमती नहीं, सीमाओं के पार होती है। इसलिए समय की यात्रा और उसकी दूरी अंकों में अंकित कर पाना दूभर काम है। दर्शन की भाषा में कहें तो अनंत से अनंत की तरफ, परंतु हम हैं कि अपनी विविध सीमाओं में इसे बांधना चाहते हैं, खुश हो लेना चाहते हैं, मन का धन करने में तुले हैं। इसलिए 2 के 4, 5 के 6 और तो और 24 से 25 और 25 से 26 में जाने की खुशियां ढूंढते हैं, जैसा कि वर्तमान समय है। प्रदर्शन और प्रदर्शनकारी नीतियों से जुड़कर भागम भाग भरी जिंदगी में समय से आगे निकलने की जुगाड़ करते हैं, व्यस्तता दिखाते हैं, बेखबर होकर यहां वहां चले जा रहे हैं, जैसे 24 घंटों का समय कहीं कम न पड़ जाए। सोचने की बात है कि अंजूरी में भला नदी कैसे समा सकती है और ना ही समुद्र, पर हम सब अपनी अंजूरी में पूरी नदी या सागर महसूस करते हैं और यही हमारी मानवीयता और अहंकार का विशद विस्तार है। यदि साधारण रूप से देखें तो बहुत अंतर नहीं पड़ता है, कल भी वही है और आज भी वही है, समय का चक्र चलता रहता है, परंतु अणु का अंतर विस्तार ही काल और गति है। इस मान से मनुष्य बहुत छोटा और

0: किस करवट बैठेगा कोई भला कैसे बता सकता है। हाँ, समय के बदलने का सामान्य मतलब होता है रोज नया नया घटता रहे, मगर जहाँ नजरें नीची हो, मन महसूस कर ना रह जाना पड़े, आंखें छलछला न जाए, तकलीफ ना हो पाए खुद को और दूसरों को भी, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं। ये भी सच है कि मनुष्य और उसकी सीमाएं असीम है और संभावनाएं भी अपार हैं, परंतु मनुष्य कुछ भी बदल नहीं सकता, केवल अपने आप को छोड़कर, वह भी यदि समय के साथ चले तभी। यदि हम अपने अंदर झांक कर देखें कि कुछ भी बदलने की जरूरत है और अपने आप को बदलना शुरू किया तो चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। संकल्प व्यक्तिगत ही होता है। कहते हैं, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। अच्छे समय की अनुभूति करना, सकारात्मक सोच पैदा करना, ये विकल्प ही तो है जिससे भीतर के संसार को कुछ कुछ बदलने का हम संकल्प ले लेते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन समय की गति। आलेख सुधा शर्मा का था, वाचक स्वर था पद्मश्री तपस्वी का। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। आज सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है, नवजात शिशु एवं बच्चों में हीट स्ट्रोक से बचाव। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर दीप शिखा चौधरी शिशु एवं बाल्य रोग विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। समय रहेगा सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 2710223 और 2710224। इंदौर का स्टडी कोड है 0731। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है खेती की बातें।
2: खेती की बातें कार्यक्रम सुनने वाला सगला किसान भाई बहना के मनीषा शर्मा की प्रेम भरी राम राम। भाई बहनों, आज अपन बात करांगा जैविक खेती के बारे में। अपन जहाँ देखो वहाँ अपने सुनने में मिले कि जैविक खेती करना बड़ो फायदेमंद रहे है, पर जैविक खेती करने से कई कई फायदा होए उका बारे में भी अपने जानकारी लेनी बहुत जरूरी है। तो भाई बहनों, अपना लिए और अपना पर्यावरण का लिए जैविक खेती वरदान है। जैविक खेती करने से अपना जो प्राकृतिक खाद होने हैं, जैसे गोबर खाद, हरी खाद, केचुआ खाद, इन सब का अपन जब प्रयोग करा तो एक से अपनी जो मिट्टी है उसमें जो आवश्यक पोषक तत्व की आवश्यकता है वी मिले उनकी, और साथे साथे अपनी मिट्टी की सेहत में भी सुधार हो गए। और साथे साथे जैविक खेती से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़े, जिका से जो मिट्टी है उसमें पानी सोखने की क्षमता बढ़ी जाए, और पानी सोखने की क्षमता बढ़े तो जमीन में नमी बनी रहे, इसका लिए अपने सिंचाई के लिए बार बार पानी देने की जरूरत नहीं पड़े। किसान भाइयों के भी आर्थिक लाभ हुए, जैसे कि लागत में कमी हुए। अपन बाजार से जब रासायनिक खाद या उर्वरक खरीदा तो वी उर्वरक वी खाद वी कीटनाशक होन बहुत महंगा आवे, और अबिका से अपना जो घर में अपन खाद अपना जो कृषि अवशेष से बनावा उनको प्रयोग करांगा तो किसान भाइयों उनके निश्चित तौर पर आर्थिक लाभ तो होवेगो सही। इका साथे साथे जो अपन उत्पाद तैयार करांगा या जो फसल तैयार करांगा उसमें के जो बाजार में अपन बेचने जावांगा तो उसको दाम भी अच्छो मिलेगो। आने यू भी अपन देखने में आवा कि जैविक तरीका से उगाई गई सब्जी फल और अनाज की मांग शहरों में बहुत रहे और इनको मूल्य रासायनिक उत्पाद से अधिक रहे, तो अपने किसान भाइयों के अच्छो दाम भी मिलेगा। साथे साथे जैविक खेती करने का लिए सरकार भी सहायता दे है, तो सरकार द्वारा जैविक खेती के अपनाने का लिए बहुत

0: प्रोत्साहन, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जावे, जिको प्रयोग करके या जिको उपयोग करके अपना किसान भवन अच्छो लाभ कमाई सकता है। इका साथे साथे मानव स्वास्थ्य के लिए भी जैविक खेती वरदान है। भाई बहनों, जैसो कि आपके मालूम है, जैविक उत्पाद में कीटनाशकों का हानिकारक जो अवशेष मिनी रहे, और जब किसान भाइयों जैविक खेती करके उत्पाद के बाजार तक पहुंचावेगा तो उनको उत्पादन तो अच्छो होएगो जोएगो, साथ साथ उनके मुनाफो भी होएगो, अच्छो दाम मिलेगे और लोग उनका स्वास्थ्य में भी सुधार होवेगो। और जो जैविक तरीका से उगाया गया उत्पाद है वे निश्चित तौर पे अधिक पौष्टिक रहेगा, उनमें विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट्स की जो मात्रा है वह भी अधिक रहेगी। मानव स्वास्थ्य का साथ साथ पर्यावरण का स्वास्थ्य का हिसाब से भी जैविक खेती वरदान है। जैविक खेती करने से अपन भूजल के प्रदूषित होने से बच सकता है, और साथ साथ जहरीला रसायनों का प्रयोग से जो पृथ्वी के या मिट्टी के नुकसान हुए है उके भी अपन बच सकता है। अपन जब खेत में रसायन होन को इस्तेमाल करा तो मित्र कीट रे जिसे केचुआ, मधुमक्खी होन, इनके भी अपन नष्ट करीदा। तो यदि जैविक खाद को अपन ने उपयोग करियो तो ई जो मित्र कीट है इनकी भी बच जाएगा। और आज का समय में अपन देख ही रहा है जलवायु परिवर्तित हो रही है, जैविक कृषि प्रणाली में कार्बनिक उत्सर्जन कम होवे और स्वस्थ मिट्टी अधिक कार्बन संग्रहित करने में सक्षम होवे, जिका से अपनो पर्यावरण सुरक्षित और संरक्षित रहे। तो भाई बहनों, आज अपन बात इतरीज करांगा। मनीषा शर्मा के दुविधा, राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस कांड।

आज प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का समापन प्रकरण, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास की विनय और रामायण के पारायण की फलस्तुति की गई है। भक्त कवि का कहना है कि इस कलिकाल में श्री राम स्मरण के अतिरिक्त योग, जप, तप, व्रत, पूजा आदि कोई भी दूसरा साधन नहीं है। स्वयं को संबोधित करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, हे मेरे मन, पतित पावन श्री राम का भजन कर किसने सदगति नहीं पाई। जो मनुष्य रघुकुल शिरोमणि का चरित गाते और सुनते हैं, उनके समस्त पाप और मन का मैल बिना परिश्रम के धुल जाते हैं, उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। जो रामायण की 5-7 मनोहारी चौपाइयों का अर्थ समझकर हृदय में धारण कर लेते हैं, उनका 5-5 प्रकार की अविद्या का अंधकार अर्थात अज्ञान श्री राम कृपा से मिट जाता है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंदबुद्धि तुलसीदास ने परम शांति पाई, उन श्री राम के समान कृपालु अन्य कोई नहीं। हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है, न ही आपके समान कोई दीन बंधु। ऐसा जानकर हे रघुवंश भूषण, आवागमन के मेरे भयानक दुख का हरण कीजिए। श्री रामचरितमानस पुण्य रूप, पापों का हरण करने वाला, कल्याणकारी, विज्ञान और भक्तिदायक है।

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 6:50 हुए हैं, वक्त है कार्यक्रम विवरण का। तो आइए अब आपको हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 7:20 से साहित्यिकी में सुनिएगा आशुतोष दुबे और सत्यनारायण व्यास का कविता पाठ। 7:35 से कार्यक्रम सुनहरे पल में आप आनंद ले सकते हैं सदाबहार फिल्म संगीत का। 8:30 से प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे। 9:00 से लोक संगीत में सुनिएगा प्रेमलता नारमदेव और साथियों के गाए लोकगीत। 9:15 से सुगम संगीत में आप सुन सकते हैं पलासी शर्मा को। 9:30 से शास्त्रीय संगीत में आनंद लीजिएगा विवेक कर्महे के गाय राग मुल्तानी का। 10:05 से सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन में हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। आज दिन की सभा में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। 11:00 से सजीव फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। 12:00 से फिल्म संगीत। 12:30 से संग्रहालय से। 1:00 से महिला कार्यक्रम। 1:30 से लोक संगीत। 1:45 से सुगम संगीत। 2:00 से फिल्म संगीत और 2:30 से चित्रपट संगीत। तो ये थे आज दिन की सभा में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विवरण। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी 5:00 से युवा साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी के साथ। 5:45 से सुनिएगा फिल्म संगीत। 6:00 से NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा। 6:30 से सुगम संगीत में आप सुन सकते हैं पलासी शर्मा को। 6:45 से लोक संगीत में किशनलाल मधुकर और साथियों के लोकगीत सुने जा सकते हैं। 7:20 से किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती गृहस्थी में डॉक्टर DK वर्मा से भेंट वार्ता होगी। विषय है जैव संवर्धित किस्मों की उपयोगिता एवं वर्तमान कृषि उत्पादन। 8:15 से सुनिएगा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 9:15 से चित्र गीत सुने जा सकते हैं। 9:30 से श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन प्रसारित किया जाएगा। 10:30 से शास्त्रीय संगीत में आनंद लीजिएगा शशिकांत मनोहर तांबे के ख्याल गायन का। राग है अभोगी। तो ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 6:55 होने को हैं। संस्कृत समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पंचराष्ट्र यात्रायाः पंचमं अन्तिमं प्रचरणं सफलतया सम्पाद्य इटली देशात् नवदिल्लीं प्रत्यागतवान्। ह्यः भारत इटली देशयोः मध्ये विशेष रणनैतिक सहयोग रूपेण स्वसंबंधस्य उन्नयन घोषणा अभवत्। कृषिः महत्वपूर्ण खनिजाः आयुर्वेदः विज्ञानं तंत्रज्ञानं इत्यादिषु अनेकेषु क्षेत्रेषु द्वयोः देशयोः मध्ये अनेकाः सन्धयः हस्ताक्षरिताः। कर अपराधानां धनशोधनस्य आतंक वित्तपोषणस्य च निवारणार्थम् अपि राष्ट्रद्वयेन ज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरं जातम्। इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह रोम नगरे संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ नौका वहन क्षेत्रेषु नौकापत्तनानां आधुनिकीकरणे रसद क्षेत्रे नीर अर्थव्यवस्थायां च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्येषावदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च उभौ देशौ उन्नत निर्माणस्य आधारभूत संरचनायाः, ऊर्जायाः, अर्थव्यवस्थायाः, रक्षायाः च क्षेत्रेषु परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। भारतम् इटली च सांस्कृतिक विनिमयं प्रवर्धयितुं, प्राचीन सभ्यतानां मध्ये संवादं सुदृढं कर्तुं च द्विसहस्राब्दस्य सप्तविंशतितमं वर्षं संस्कृतेः पर्यटनस्य च वर्षरूपेण आचरिष्यतः। इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया उक्तं यत् एषः उपक्रमः द्वयोः देशयोः मध्ये परस्परं अवगमनं गभीरं कर्तुं, सांस्कृतिक कूटनीतिं च अधिकं सुदृढं कर्तुं साहाय्यं करिष्यति। सा अवदत् देशयोः मध्ये सुदृढतर सम्बन्धाः न केवलं राजनैतिक आर्थिक सम्बन्धैः अपितु जनानां समाजानां च मध्ये सम्पर्कस्य माध्यमेन अपि मापिताः भवन्ति। प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेन्द्र मोदिने इटली देशस्य रोम नगरे खाद्य कृषि संघटनेन प्रतिष्ठितं एग्रीकोला पदकं प्रदत्तम्। पुरस्कारं प्राप्य श्रीमोदी भारतस्य कोटि कोटि कृषकाणां, पशुपालकानां, मत्स्यपालकानां, कृषि वैज्ञानिकानां, श्रमिकाणां च कृते एतत् सम्मानं समर्पितवान्। पदकमिदं खाद्य कृषि संघटनस्य महानिदेशकेन प्रदत्तम्। गृहमंत्री अमित शाह, वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रधानमंत्रिणः कृते एग्रीकोला पदकं प्राप्त्यर्थं अभिनन्दनं कृतवन्तः। गृहमंत्री अमित शाह अवदत् यत् भारतं कृषिक्षेत्रे वैश्विक नेतृत्वेन उद्भूतमस्ति तथा च देशस्य कृषि प्रतिरूपं समग्र विश्वस्य कृते एकं मानदण्डं स्थापयति। पश्चिम बंगाल राज्ये दक्षिण चतुर्विंशतिः परगण मण्डलस्य फाल्टा विधानसभा क्षेत्रे पुनर्मतदानं अधुना सप्तवादनतः आरभ्यते, यद्धि सायं षड्वादने समाप्तं भविष्यति। आहत्य षड् प्रत्याशिनः सौभाग्यस्य प्रतीक्षां कुर्वन्ति, येषु द्वौ निर्दलीयौ अपि स्तः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन रक्तवर्णीय संचेतना प्रख्यापिता यत् उत्तरप्रदेशस्य, मध्यप्रदेशस्य, विदर्भस्य च भागेषु आगामि दिनत्रयं यावत् तापतरंगतः तीव्रतापतरंगस्य स्थितिः भवति। विभागेन अनुमानितं यत् हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आन्ध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखण्डे च एतादृशाः एव परिस्थितयः सम्भवन्ति। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं चतुस्तोपकैः पराजितम्। अद्य सायं सार्धसप्तवादने गुजरात टाइटन्स दलं अहमदाबाद नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: भारत और इटली ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत

0: करने में मदद मिलेगी। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान उग्रिक उला मेडल से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर सीमा सुरक्षा में बाधा डालने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अब भी खुला है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मुंबई पहुंचे। साइप्रस का शिष्टमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना होगा। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी कल मुलाकात करेंगी। ये राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा के 1 साल से भी कम समय बाद हो रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटन्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में सीरीज का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है नवजात शिशु एवं बच्चों में हीट स्ट्रोक से बचाव। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर दीपशिखा चौधरी शिशु एवं बाल्य रोग विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का स्टडी कोड है 0731। तो सुनना ना भूले कार्यक्रम हेलो डॉक्टर सुबह 10:32 से 11:02 तक विविध भारती इंदौर से FM 101.6 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। सूचना समाप्त हुई।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
2: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका,

0: मैं गई थी कुल्लू मनाली।
1: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में, मजा आया कि नहीं?
0: अरे काहे का मजा,
1: क्यों क्या हुआ?
0: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
1: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
0: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
1: ये हुई ना बात।
2: आकाशवाणी इंदौर पर प्रसारित हो रहा है NCERT प्रायोजित कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे।

0: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत और इटली के बीच कृषि, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने कई समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली में प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। राज्य सरकार ने नई तबादला नीति को दी मंजूरी, 1 जून से होंगे तबादले। और प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी अब 28 मई तक होगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों के आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली दौरा पूरा कर नई दिल्ली लौट आए हैं। भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, समुद्री परिवहन और बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया, जिससे कुशल स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए नए अवसर खुलेंगे। भारत और इटली ने टैक्स से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस बयान में कहा कि भारत इटली संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना 2025 से 2029 दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक व्यवहारिक और भविष्य उन्मुखी रोडमैप देखी। श्री मोदी ने यह भी बताया कि भारत इटली रक्षा औद्योगिक रोडमैप ने रक्षा क्षेत्र में मिलकर विकास करने और मिलकर उत्पादन करने के नए रास्ते खोल दिए हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी

0: सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी समझौते, भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जा सके और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देशों के रिश्ते केवल राजनीतिक और अर्थव्यवस्था से नहीं बल्कि लोगों और समाजों की आपसी जुड़ाव से भी मजबूत होते हैं। सुश्री मेलोनी कल रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और इटली, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली के रोम में स्थित खाद्य और कृषि संगठन एफएओ के मुख्यालय में प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने पुरस्कार ग्रहण करते हुए इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। श्री मोदी को ये मेडल एफएओ के महानिदेशक क्यू डोंग्क्यू ने प्रदान किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पुरस्कार खाद्य सुरक्षा, सतत विकास और मानव कल्याण के प्रति भारत की अट्यूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
0: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: इंदौर में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की दो दिवसीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स देशों की जनसांख्यिकीय ताकत उन्हें कामकाज के भविष्य को आकार देने का अवसर देती है। हमारे ब्रिक्स देश मिलकर दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कौशल विकास, डिजिटल समावेशन और उद्यम आधारित विकास पर केंद्रित प्रयासों के माध्यम से सम्मानजनक रोजगार के अवसरों का विस्तार करने और दुनिया के सबसे जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक का निर्माण करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य सरकार ने नई तबादला नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत 1 जून से 15 जून के बीच तबादले किए जा सकेंगे। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री की मंजूरी से होंगे, जबकि प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री की स्वीकृति जरूरी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 30,055 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृतियां दी गई। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन के लिए 15,184 करोड़, किसानों की फसल बीमा योजना के लिए 11,608 करोड़ रूपये मंजूर किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक अगले वर्ष उज्जैन में होगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 19 मई को बस्तर में परिषद की 26वीं बैठक में इस आशय की सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक लेने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारी को लेकर हो रही व्यापक नागरिक व्यवस्थाओं, मानव प्रबंधन और आपदा प्रबंधन का भी मुआयना करेंगे। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए जिन किसानों के स्लॉट 23 मई तक बुक हो चुके हैं उनके लिए अच्छी खबर है। अब सरकार उनका गेहूं 28 मई तक खरीदेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस बात की घोषणा

0: करते हुए कहा कि सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मध्यप्रदेश सरकार के प्रयास से इस साल 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन होगा, इससे किसानों को बड़ा फायदा पहुंचेगा।
1: 23 तारीख का समय पूर्व निर्धारित था, मुझे किसानों की ओर से बताया गया कि स्लॉट जिनने बुक कर लिए लेकिन लाइन लंबी लग रही है, तो किसानों के लिए और गुंजाइश देते हुए हमने कहा जिनके भी स्लॉट बुक हुए ऐसे सभी किसानों से हम माल खरीदेंगे, इसलिए उसकी तारीख 23 तारीख से बढ़ाकर 28 मई तक करने की मैं घोषणा कर रहा हूँ। हमारे अपने कमिटमेंट है किसानों के साथ, हमारी अपनी किसानों हितैषी सरकार है, किसानों के लिए किसान, गरीब, महिला, युवा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम चारों वर्गों की चिंता करते हैं।
0: आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल अपने घरेलू मैदान ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। आज के मैच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अभान सिंह पवैया ने कल ग्वालियर में आदर्श गौशाला लाल टिपारा के बायोगैस प्लांट का जायजा लिया। खंडवा के खालवा विकासखंड की ग्राम रोशनी में कल जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने 1,36,00,000 रूपये लागत के इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर का लोकार्पण किया। आगरमालवा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राही किसानों के लिए 30 जून तक बायोमेट्रिक ईकेवाईसी अभियान संचालित किया जा रहा है। झाबुआ कलेक्टर ने उद्यानिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं, आगामी प्रस्तावों और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की समीक्षा बैठक ली। मंडला में जिला पंचायत द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। निवाड़ी कलेक्टर जमुना भिड़े ने अधिकारियों से कहा है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का विभाग द्वारा पंचायतों में प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। खरगोन जिले के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 26 मई को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और प्रधान जिला न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में दत्तक शिशुगृह शाजापुर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम साहित्य की।
1: नमस्कार श्रोताओ, प्रस्तुत है साहित्यिक पत्रिका साहित्य की।

0: आज इस कार्यक्रम में आशुतोष दुबे और सत्यनारायण व्यास की कुछ मार्मिक कविताएं प्रस्तुत हो रही हैं। पहली कविता आशुतोष दुबे सुना रहे हैं, जिसमें सारनाथ के स्तंभ के प्रदर्शित चार शेर दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु एक चौथा शेर अदृश्य है। तो कल्पनाशीलता से परिपूर्ण ये कविता।
1: चौथा शेर, सारनाथ के अशोक स्तंभ में चार शेर हैं, जो किसी भी तरफ से देखने पर तीन ही दिखाई देते हैं। चौथा शेर यकीनन एक मायूस शेर होगा, भग्न हृदय और अवसाद ग्रस्त। इतने इतने बरसों में कभी सुनाई नहीं दी उसकी दहाड़, शायद अपने चेहरे को ढूंढता हुआ वह चौथा शेर मोह भंग का शिकार होकर चल दिया होगा फिर से जंगल की ओर, जहां रहने के कायदे भूल जाने की वजह से वह गिरा होगा किसी छुपे हुए गड्ढे में और ले आया गया होगा चिड़ियाघर के पिंजरे में, जहां अब वह अपनी भयानक बेचैनी और ऊब में चक्कर काटता रहता है और लोग उस पर हंसते हुए कंकर और मूंगफली के छिलके फेंकते रहते हैं। वह अपनी पनीली उदास और धुंधली आंखों से जनगण के इस विचित्र मन को देखता रहता है, रात में उसके रोने डुकरने की आवाज आती है। मुमकिन यह भी है कि एक ऐसे समय में जब सियारों और गीदड़ों के नक्कार खाने में खुद शेर की आवाज एक तूती की हैसियत रखती हो, यह चौथा शेर अपने शेर होने की निरर्थकता पहचान गया हो और अपने तीनों सजावटी भाइयों के बनिस्बत उसने बेहतर यही समझा हो कि सिर्फ एक मुहर, एक चिन्ह, एक प्रतीक नुमा मौजूदगी में गुमशुदा रहते चले आने की बजाय त्याग देना ही उचित है यह राजसी किंतु कागजी वैभव, और फिर बुद्ध की तरह चल दिया हो दुख के कारणों की तलाश में, बैठा रहा हो किसी अनाम बोधि वृक्ष के नीचे अपनी नख दंत विहीन कातर गरिमा में वह करुण अशेर सा शेर, जिसने जानी हो धीरे धीरे अपने दुख की पहली और अंतिम वजह शेर होना और रह न पाना।
0: चौथा शेर कविता के बाद अब स्वच्छता में सिरमौर इंदौर की एक आवाजी तस्वीर कैसी है, इसी पर केंद्रित है आशुतोष दुबे की ये कविता।
1: इंदौर को लेके मैंने कुछ कविताएं लिखी जिनमें इंदौर फिगर करता है बहुत मुख्य रूप से, और एक ऐसा शहर जिसमें हम बचपन से रहते हैं और रहते चले जाते हैं, मगर शहर वही नहीं रहता। आप जितनी भी संपर्कति से उस शहर में रहते हैं, धीरे धीरे आप पाते हैं कि एक अजनबियत उस विकसित होते हुए बदलते हुए शहर में और आपके बीच में आ जाती है। तो धीरे धीरे जो चीजें होती हैं या जो चीजें थीं, उनका भी एक डॉक्यूमेंटेशन कविता में होना चाहिए, क्योंकि कविता में अगर चीजें बचेंगी नहीं तो कहां बचेंगी। इस तरह से देखें तो कविता एक तरह का संग्रहालय भी है, जहां हम अपनी स्मृतियों को एक समय के देखे हुए जिए हुए को भी रखते हैं। तो ये कविता है शुक्रिया। इस्माइल साइकिल सर्विस से चार आने घंटे से मिलने वाली साइकिल का शुक्रिया कि उससे संतुलन सीखा और सीखी रफ्तार और उस पर काबू पाने की विधियां। ठेले पर लगने वाली लाइब्रेरी से चार आने रोज पर मिलने वाले गुलशन नंदा के उपन्यासों का शुक्रिया कि उन्होंने अगले मोड़ तक पहुंचाकर विनम्रता से कहा, आगे आप जाइए, हमें आपके साथ यहीं तक आना था। सिगरेट के धुएं, बदबू और खटमल भरी सीटों वाले उन गंदे टॉकीजों का शुक्रिया जिनके मटमैले पर्दों पर जीवन के तमाम गुमशुदा रोमांच हमारा इंतजार करते थे। गांधी हाल के बगीचे में बने सीमेंट के उस शेर का शुक्रिया जिसके एक कान में घुसने के लिए सीढ़ियां और दूसरे कान में फिसल पट्टी है, और उसने बताया कि चीजें उतनी डरावनी नहीं होती जितनी लगती हैं, और शेर भी खेल का साथी हो सकता है। गर्मियों के आते ही जगह जगह खुल जाने वाली गन्ने के रस वाली उन मधुशालाओं का शुक्रिया, वे कड़े से कड़े घाम में भी ठंडी मिठास की गुंजाइश थी। आगे बढ़ती एक उम्र बार बार पीछे मुड़ती है और अपने एक दौर के सामने शुक्राने में झुकती है।
0: आइए अब एक कविता सत्यनारायण व्यास से सुनते हैं, जिसमें प्रेम की सफलता को अपना घर बसाने की दृढ़ इच्छा रखने वाले एक अलग ही जज्बा रखते थे।
2: ये तब की बात है जब लोग प्रेम में सफल होने के लिए नहीं, प्रेम की स्मृति में घर बनाने के लिए प्रेम करते थे। वे प्रेम नहीं करते थे, प्रेम का एक गल्प रचते थे, निर्द्वंद उसमें रहते थे। ये तब की बात है जब प्रेमी जन देवदास देख पढ़ तड़प तड़प जाते थे। प्रेम करने वाले प्रेमिकाओं की शादी में दौड़ दौड़ कर काम करते थे, यथा समय ब्याह कर अपना घर बसाते थे, प्रेम की स्मृति के घर में अक्सर चले जाते थे और यथा समय लौट आते थे।
0: और आइए अब आशुतोष दुबे से सुने कुछ और कविताएं।
1: अब जो मैं दूसरी इंदौर वाली कविता की बात कर रहा था, इंदौर का एक बहुत महत्वपूर्ण समारोह है जो इंदौर में ही एक यूनिक फीचर की तरह है, वो है अनंत चतुर्दशी का जुलूस। सालों साल तो उसकी कोई ऐसी चीज थी कि आसपास के तमाम लोग हमारे यहाँ आते थे, अब जगह जगह से वो निकलने लगे, लेकिन हमारे यहाँ का जो हमारी परंपरा चली आ रही थी आज भी चल रही है। तो इस कविता का शीर्षक है एक शहर का रथ जगा। अब तो इंदौर की कपड़ा मिलों के लिए रोने धोने वाले भी नहीं बचे, जिनसे कभी इंदौर का देश दिसावर में नाम था, पर उनका शहर में अनंत चौदस की रात को शुरू करवाया गया रथ जगा आज भी होता है। हजारों लोग सड़कों पर होते हैं, इधर से उधर आते जाते, हजारों अपने पराए घरों की छतों, छज्जों, खिड़कियों, ओटलों पर आसपास के गांव कस्बे वाले और शहर इंदौर के लोग अनंत चतुर्दशी की जगमगाती झांकियां देखने के लिए, रेहड़ी वाले तरह तरह के हसीन चेहरों के पीछे चलते पुंगी बजाने वाले फुकरे, उनके ठीक आगे लस्सन फोड़ने वाले शोहदे, पुलिसिया डंडे खाते और गलियों में भागते छुपते रात भर चालू रहने वाले सिनेमा घरों में तीन तीन शो तक देख लेने वाले पड़ोसी कस्बों के सूरमा, झांकियों से पहले तरह तरह के अखाड़े निकलते, भीड़ के घेरे में बनेठी घुमाता हुआ कोई लोगों के एन पास आता और फिर उसी कौशल से दूर हो जाता, देखने वाले देखते रह जाते सांस रोके, और हमेशा की तरह देर से निकलने वाली झांकियां अपने बेडौल यंत्र चलित पुतलों से कहती हुई कहानियां और उन्हें निहारते मुग्ध लोग। अल सुबह पिताजी का जगाना और अपनी साइकिल पर राजबाड़ा ले जाना याद आता है, जब दिन के बढ़ते उजाले में झांकियों की रोशनियां कम हो रही होती, पर इससे उन्हें देखने का हमारा रोमांच कम नहीं होता। बरसों बीत गए और बीतेंगे, कपड़ा मिलों के वे मजदूर अब तक खप गए होंगे जिन्होंने शुरू किया अपने खून पसीने वक्त से यह उत्सव, अब उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी अपने तरीकों से खा कमा रही होगी, लेकिन आज भी इन कपड़ा मिलों के नाम से निकलती हैं ये झांकियां। पहले इन्हें मिले निकालती थीं, अब उनके प्रेत निकालते हैं। जश्न मनाते जिंदा लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शहर जागता है इस रात बदस्तूर। यहीं से हम थोड़ा सा आगे चलेंगे खजूरी बाजार की तरफ, तो खजूरी बाजार के बीच में ही एक गली आती है जिसका नाम है मोरसली गली। उस मोरसली गली में एक जनरल लाइब्रेरी है जिसमें हम बचपन में जाया करते थे, तो उस लाइब्रेरी की स्मृतियों को भी मैंने एक कविता में पिरोया है। राजबाड़ा के सामने एक बहुत अच्छा सार्वजनिक वाचनालय था, मोरसली गली में था, फिर ये कस्तूरबा स्कूल के सामने था। इस एरिया के जितने भी थे उसमें हम लोग बहुत रेगुलरली जाते थे। मोरसली गली की जनरल लाइब्रेरी पता नहीं अब है भी या नहीं, और है भी तो किस हाल में। खजूरी बाजार और सराफे की मध्यस्थ इस गली में तमाम भंगेड़ी गंजेड़ियों की आवाजाही थी, इसी के बीच में यह लाइब्रेरी हमारी शाम का ठिकाना। बच्चों की कोई पत्रिका शायद ही खाली मिलती, लोटपोट, मधुमुस्कान, इंद्रजाल कॉमिक्स अगर मिल जाती तो खुशकिस्मती होती, वरना अखबार या बड़ों की पत्रिकाएं ही मिल पाती, नवनीत, कादम्बिनी, धर्मयुग, हम बेमन से इन्हीं को पढ़ते और अपनी मनपसंद पत्रिका पर नजरें गड़ाए रखते, झपटने के लिए तैयार। टाइम्स ग्रुप ने तब तक किसी फायदेमंद धंधे के एवज में पत्रिकाएं बंद करने का नहीं सोचा होगा, नहीं हिंदुस्तान ग्रुप ने। भारत के धूल भरे छोटे शहरों कस्बों में इनका इंतजार करने वाले हजारों लोग रहे होंगे जो तब तक टीवी के सामने नहीं जा बैठे थे। कुछ देर बैठते ही लकड़ी की बेंच की दरारों से खटमल खून पीने के लिए ऊपर खींचे चले आते, लेकिन खुजाते पहलू बदलते हम पढ़ने के नशे में टिके रहते। गहराती सांझ में हम घर लौटते, जांघों पर दंदोड़े, नाखून की खरोंचे लिए, लेकिन हमारे दिमागों में पढ़त का खुमार होता। कई पते बदले हैं तब से और गुजरने के रास्ते भी, लेकिन मूर्सली गली की जनरल लाइब्रेरी वही है, बचपन की उसी झुकती हुई शाम में उसका असली पता है। मरणासन एक दृश्य है एक्चुअली, जिसमें हम जब किसी बहुत ही गंभीर रूप से ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं जिसके बारे में लगभग हमें और सभी को ये पता होता है कि अब ये शायद नहीं बचेंगे। मरणासन ये दो कविताएं हैं। एक, मृत्यु उनके सिरहाने खड़ी है और वे तैयार हैं। मृत्यु उनके सिरहाने खड़ी है और वे तैयार हैं। प्रतीक्षा है घर भर में जो आंखों में डबडबाती है। वे पूरे हवास में हैं, सबको नमस्कार करते हैं, दोनों हाथ उठाकर भरोसा दिलाते हैं। कुछ पलों बाद इशारे से आगुंतक को जैसे कहते हैं, बस भेंट हो गई, जाओ अब, अंतिम समय है। और वे जानते हैं उन्हें कोई क्या कुछ कहेगा, अपनी तैयारी से वही सबको दिलासा दे रहे हैं। शोक अभी स्थगित है, उसे उनका इशारा नहीं मिला है। ये दूसरी कविता है मरणासन दो। मरते हुए आदमी से क्या कह पाते हैं आप, मरते हुए आदमी से क्या कह पाते हैं आप, क्या कह पाता है मरता हुआ आदमी आपसे? क्या आप कह सकते हैं जाने का पल

0: बढ़ती हुई चमड़ी से मढ़ी हड्डी भर रह गया है और बहुत मुलायम है और जिसमें ऊष्मा की आखिरी किस्त का स्पर्श है। आपका हाथ उसके हाथ को थामता है और वही करता है तमाम आखिरी बातें। आप तो जितने खामोश गए थे उससे भी ज्यादा खामोश लौट आते। कुछ कहना चाहता था पर सोचा बाद में कहूंगा। पिता के पास कुछ देर बैठ जाऊंगा, बेटे से प्यार से बात करूंगा, माँ से सुन लूंगा उनके गठिया की तकलीफ धीरज से, पत्नी से अकेले में माफी मांग लूंगा। पर बस इतनी सी देर में देखता हूं पिता नहीं है अब, बेटा बड़ा होकर दुनिया में निकल चुका, माँ अब कुछ कहती ही नहीं और माफी कहीं होती ही नहीं है। कहने की इच्छा के पल के बाद कोई बात नहीं है, यह बहुत बाद में पता चलता है। मुश्किल यह नहीं थी कि हमाम में सब नंगे थे, मुश्किल यह थी कि हमाम को इससे कोई परेशानी नहीं थी। अनीति ही रणनीति थी और ऐसा होने के लिए उसकी तारीफ थी। दुविधाएं विसर्जित हो चुकी थीं और उहापोह कोई थी ही नहीं। सभासद गर्दन झुकाए बैठे थे। पुण्य सबका इतना क्षीण हो चुका था कि न सिर्फ गलत को गलत कहने में कंठावरोध था, बल्कि वह इतने तरीकों से इतनी बार होता आया था कि गलत नहीं लगता था। मुश्किल यही थी।
1: अभी आप आशुतोष दुबे और सत्यनारायण व्यास का कविता पाठ सुन रहे थे। अब आज का साहित्य की कार्यक्रम समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्य की, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम सुनहरे पल में पेश है लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का ये गीत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक बार मुस्कुरा दो, इस फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज में। बोल इंदिवर के हैं, धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हीरो फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

बातों बातों में इस फिल्म का गीत सुनिए अमित कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाज में। बोल योगेश के हैं, धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए गोरा और काला फिल्म का गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 8 बजने को हैं समाचार, कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
4: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
3: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता की जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया जहाँ भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
3: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिक बेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
8: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख की। पश्चिम बंगाल लगभग 2200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
3: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
9: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में भी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और CIM का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
3: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमरीका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
10: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
3: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नैनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4था और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
11: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि वीके कृष्ण मेनन का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 3 मई। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, शिवाजी नगर भोपाल से जयप्रकाश दुबे और उज्जैन से संजीव जैन। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

चंपारण भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास से जुड़ी वो भूमि जहां सत्य ने पहली बार अन्यायी सत्ता की आंखों में आंखें डालकर

के सतवरिया गांव में हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार था जिसकी अपने क्षेत्र में बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनके पिता का नाम कोलाहल शुक्ल था जो मूलतः सीवान जिले के निवासी थे, लेकिन बाद में वो सतवरिया आकर बस गए थे जहां उन्होंने काफी भूमि अर्जित की। इसी समृद्ध परिवार में राजकुमार शुक्ल का पालन पोषण हुआ। इस तरह वो एक समृद्ध और प्रभावशाली किसान थे जिनकी आर्थिक स्थिति उस समय के औसत किसान से बहुत बेहतर थी। उनका विवाह केवला देवी से हुआ था। उनके पारिवारिक जीवन में उनकी पत्नी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि पंडित राजकुमार शुक्ल को एक सत्याग्रही के रूप में विकसित करने और संघर्षों में साथ देने में केवला देवी का महत्वपूर्ण योगदान था। उनके परिवार में दो पुत्रियां थीं जिन्होंने उनके संघर्षपूर्ण जीवन को बहुत करीब से देखा था। राजकुमार शुक्ल ने अपनी युवावस्था में बेतिया राज में एक मुहर्रिर यानी मुंशी के रूप में भी कार्य किया था, जहां उन्हें प्रशासनिक और विधिक प्रक्रियाओं का आरंभिक ज्ञान प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह कृषि तथा सामाजिक कार्यों में संलग्न हो गए। ये वो समय था जब अंग्रेजों ने किसानों पर अत्याचार की एक अलग ही कहानी लिखी। अपनी ही कृषि भूमि पर किसानों के लिए अलग नियम, कानून और प्रतिबंध लागू हुए जिसने किसानों की दुर्दशा कर रखी थी।

चंपारण में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी थीं और ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में उन्होंने किसानों पर अत्याचार का एक संगठित ढांचा तैयार कर लिया था। उन्होंने तिनकठिया खेती की प्रणाली लागू की थी। ये एक दमनकारी भू राजस्व व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी भूमि के प्रत्येक बीघा यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा भूमि पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी। ये प्रणाली बेहद शोषणकारी थी क्योंकि किसानों को नील की फसल के लिए जो मूल्य दिया जाता था वो उनकी लागत से भी कम होता था। बागान मालिक स्वयं ही मूल्य निर्धारित करते थे। नील की खेती से भूमि की उर्वरता का भी ह्रास होता था क्योंकि नील की जड़ें गहरी होती थीं जो भूमि की उर्वरता को नष्ट कर देती थीं, जिससे उस भूमि पर बाद में अनाज उगाना कठिन हो जाता था। इसके साथ ही 40 प्रकार के अवैध कर भी किसानों पर लगाए गए थे। राजकुमार शुक्ल स्वयं बेलवा कोठी के अंतर्गत एक रैयत थे, इसलिए इन प्रताड़नाओं का उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव था। अंग्रेजों के इस शोषण और अत्याचार ने उन्हें भीतर तक आंदोलित कर रखा था। उनकी संघर्ष यात्रा इन्हीं अत्याचारों के प्रतिरोध से आरंभ हुई। उनका प्रतिरोध सन 1907-08 के आसपास स्पष्ट रूप से उभरने लगा था। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था और भारत की धरती पर यह उनका पहला आंदोलन था, लेकिन चंपारण में गांधी जी के आगमन से लगभग एक दशक पहले भी किसानों ने सामूहिक विद्रोह किए थे, जिसमें शेख गुलाब और शीतल राय जैसे नेताओं की अगुवाई में बागान मालिकों के गुंडों और कारिंदों को कड़ी चुनौती दी गई थी। राजकुमार शुक्ल ने इस दौरान स्थानीय पंचायतों को संगठित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। वो चाहते थे कि किसान अपने विवादों को निलहे साहबों की अदालत के बजाय अपनी पंचायतों में सुलझाएं। राजकुमार शुक्ल की ये पहल ब्रिटिश सत्ता और बागान मालिकों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इससे उनके न्यायिक और प्रशासनिक एकाधिकार को खतरा पैदा हो गया था। वो बागान मालिकों के लिए एक बड़ा अवरोध बन गए थे। परिणाम स्वरूप उन्हें व्यक्तिगत क्षति पहुंचाई गई, उनकी फसलों को नष्ट कर दिया गया, उनके घर को आग लगा दी गई, उनका पशुधन भी छीन लिया गया, उन पर दर्जनों झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। बेलवा कोठी के बागान मालिकों ने उन पर चोरी, मारपीट और दंगे के आरोप लगाए। सन 1914 में एक बागान मालिक के साथ हुए विवाद के कारण उन्हें कुछ हफ्तों के लिए जेल में भी डाला गया, लेकिन राजकुमार शुक्ल का प्रतिरोध लगातार जारी रहा। ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, उनका संकल्प अडिग रहा। अपमानजनक स्थिति और आर्थिक नुकसान के बावजूद वो अंग्रेजों को चुनौती देते रहे, लेकिन अब उन्हें लगने लगा था कि चंपारण की जो समस्या है वो केवल स्थानीय स्तर पर प्रतिरोध करके सुलझाई नहीं जा सकती है, इसके लिए एक राष्ट्रीय नेतृत्व की आवश्यकता है, और उनकी दृष्टि में इस समस्या को केवल गांधी जी ही सुलझा सकते थे।

राजकुमार शुक्ल के इस संघर्ष में उनके साथ जुड़े पीर मोहम्मद मुनीश। वो एक पत्रकार थे और कानपुर से निकलने वाले समाचार पत्र प्रताप में वो चंपारण के किसानों पर होने वाले अत्याचारों की खबरें लिखते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में निकलने वाला ये पत्र किसानों की पीड़ा का दर्पण बन गया। पीर मोहम्मद मुनीश के साथ मिलकर राजकुमार शुक्ल ने इस संदर्भ में गांधी जी और कई राष्ट्रीय नेताओं को पत्र भी भेजे थे। दोनों की जोड़ी ने ही मिलकर वो वैचारिक धरातल तैयार किया जिस पर बाद में चंपारण सत्याग्रह खड़ा हुआ। दिसंबर सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, अंबिका चरण मजुमदार जैसे अनेक नेताओं से राजकुमार शुक्ल खुद मिले, लेकिन सभी ने उनसे कहा कि वो स्थानीय स्तर पर इस समस्या को सुलझाएं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब गांधी जी से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने गांधी जी से प्रार्थना की कि आपको चंपारण चलना होगा, वहां किसान मर रहे हैं। हालांकि अधिवेशन में उनके प्रयासों से चंपारण में किसानों की दुर्दशा पर एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया था, लेकिन राजकुमार शुक्ल इससे संतुष्ट नहीं थे। वो चंपारण में गांधी जी की उपस्थिति चाह रहे थे, जैसे नियति भविष्य लिख रही थी। अधिवेशन के बाद गांधी जी ने चंपारण जाने में अपनी असमर्थता जताई और राजकुमार शुक्ल साये की तरह उनके पीछे हो लिए। गांधी जी कानपुर गए, शुक्ल जी वहां भी पहुंच गए। गांधी जी साबरमती आश्रम लौट आए तो वो आश्रम में डेरा डालकर बैठ गए। गांधी जी कलकत्ता पहुंचे तो वो पहले से ही वहां मौजूद थे। गांधी जी ने बाद में लिखा भी कि इस अनपढ़ किंतु संकल्पवान किसान ने मुझे जीत लिया। अंततः 9 अप्रैल सन 1917 को वो राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण के लिए रवाना हुए और 10 अप्रैल को दोनों पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचे। दोनों की साधारण वेशभूषा देखकर नौकरों ने उन्हें अछूत समझ लिया तथा कुएं से पानी तक लेने से रोक दिया। यही वो बिंदु था जब गांधी जी ने महसूस किया कि भारत की लड़ाई केवल अंग्रेजों से नहीं, सामाजिक कुरीतियों से भी है। इसके बाद गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां जेवी कृपलानी और छात्रों ने उनका स्वागत किया। 15 अप्रैल सन 1917 को वो मोतिहारी पहुंचे, जो पूर्वी चंपारण का मुख्यालय था। यहीं से आरंभ हुआ चंपारण सत्याग्रह।

भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह जिसने ब्रिटिश राज को हिला कर रख दिया। कमिश्नर ने गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने इस सरकारी आदेश की विनम्रता पूर्वक अवहेलना की। 18 अप्रैल को मोतिहारी की अदालत में गांधी जी की पेशी हुई। राजकुमार शुक्ल ने आसपास के गांवों में सूचना फैला दी, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों की संख्या में किसान अदालत परिसर में जमा हो गए। ये जन सैलाब ब्रिटिश सत्ता के लिए अप्रत्याशित था। और फिर गांधी जी ने अदालत में अपना ऐतिहासिक बयान दिया। उन्होंने कहा, मैंने कानून तोड़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज और मानवीय सेवा के उच्चतर कानून का पालन करने के लिए जिला छोड़ने से इनकार किया है। उनका बयान बिजली की तरह पूरे देश में फैल गया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा, मुकदमा वापस ले लिया गया और गांधी जी को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति मिल गई। ये भारत में सविनय अवज्ञा की पहली बड़ी नैतिक जीत थी। राजकुमार शुक्ल गांधी जी के साथ गांव-गांव घूमते रहे। गांधी जी ने उन क्षेत्रों को देखा जहां अत्याचार चरम पर था। इस जांच के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद और जेबी कृपलानी आदि के साथ एक टीम तैयार हुई। राजकुमार शुक्ल ने किसानों को निर्भीक होकर बयान देने हेतु प्रेरित किया और लगभग 10,000 किसानों के बयान दर्ज हुए। इस आधार पर चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ, तिनकठिया प्रथा समाप्त हुई, किसानों से वसूले गए अवैध धन का एक हिस्सा लौटाने का आदेश हुआ और अन्यायपूर्ण कर से भी मुक्ति हुई। राजकुमार शुक्ल ने इस आंदोलन के बाद भी शिक्षा, स्वच्छता और जन जागरण के कार्य में स्वयं को समर्पित रखा। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। वो विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और खादी के प्रचार में जुट गए तथा किसान सभा आंदोलन के प्रारंभिक स्तंभ बने। वर्षों की कानूनी लड़ाई में ब्रिटिश दमन ने उनकी संपत्ति छीन ली थी, पशुधन नष्ट हो गया था, उनकी आर्थिक स्थिति भी टूट चली थी, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। इसी विपन्न अवस्था में उन्होंने 20 मई सन 1929 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि राजकुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन ले, राजकुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में होगा।
1: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी भोपाल।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लोक संगीत में प्रस्तुत है प्रेमलता नारामदेव और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत। सबसे पहले सुनिए ये पारंपरिक वन्नी गीत।

0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात। युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: आकाशवाणी इंदौर पर प्रसारित हो रहा है NCERT प्रायोजित कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे।
4: आइए अब सुनते हैं पारंपरिक पन्ना गीत। कलाकार हैं प्रेमलता नारामदेव और साथी

लोक संगीत में आज आप सुन रहे थे प्रेमलता नारमदेव और मंडली के गाय निमाड़ी लोकगीत। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत में पेश है पलासी शर्मा की गाई ये गजल।

0: किसका है लिखा हुआ है?
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है नवजात शिशु एवं बच्चों में हीट स्ट्रोक से बचाव। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर दीपशिखा चौधरी शिशु एवं बाल्य रोग विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। तो कॉल कीजिएगा सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का स्टडी कोड है 0731। फ़ोन करना न भूलें सुबह 10:32 से 11:02 तक विविध भारती इंदौर पर। सूचना समाप्त हुई। आइए सुनते हैं एक और गजल। आवाज है पलासी शर्मा की, कलाम है बशीर बद्र का।

सुगम संगीत में आज आप सुन रहे थे पलासी शर्मा की गायक गजलें। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।

0: लड़की।
1: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
2: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाए।
1: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
2: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
1: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
2: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
1: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
2: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
1: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
2: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
1: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
2: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
1: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
2: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
3: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
2: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
1: समय है पानी बचाने का,
2: पानी का मोल समझने और समझाने का।
1: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
4: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में प्रस्तुत है विवेक करमहे का ख्याल गायन। राग है मुल्तानी। तबले पर संगत की है सुमित मालविया ने। हारमोनियम पर हैं प्रमोद बोरगांवकर।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे विवेक करमहे का गाया राग मुल्तानी। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।
1: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
2: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाए।
1: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
2: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला ना रखें।
1: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
2: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
1: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।

0: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
1: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
0: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
1: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
2: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। जिले की चिट्ठी कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में।
3: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छतरपुर जिले की चिट्ठी, आलेख सुनील पांडे, वाचन स्वर दीपा सिंह। छतरपुर जिले में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। जिले के खजुराहो और नौगांव का तापमान 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने जिलेवासियों को धूप और लू से बचाव करने के निर्देश दिए हैं। लोगों से शीतल पेयजल का उपयोग करने, धूप में नहीं निकलने, धूप से बचाव के लिए चश्मे और छाते का उपयोग करने को कहा है। जिले में इन दिनों कलेक्टर के निर्देश पर जलगंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्राचीन तालाबों बावड़ियों की साफ सफाई, पुराने तालाबों का गहरीकरण, सार्वजनिक कुओं की साफ सफाई की जा रही है ताकि आने वाली बारिश के पहले बेहतर जल प्रबंधन हो सके। निजी समाजसेवी संस्थाएं भी जल प्रबंधन के कार्य में सहभागी बनी हुई है। छतरपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नमा शिवाय अर्जरिया ने बताया है कि जिले की सभी ग्राम पंचायत में एक एक काम जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत सुनिश्चित किया गया है। जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान गणना का कार्य जारी है। इसी क्रम में गौरिहार तहसील में सबसे पहले HLB का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा हरपालपुर, लवकुशनगर, चांदला निकायों में भी शत प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। कलेक्टर और प्रमुख जनगणना अधिकारी पार जायसवाल ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रगण को, सुपरवाइजर्स, ग्रामीण अधिकारी, SDM सहित संपूर्ण टीम को बधाई दी है। कलेक्टर ने कहा कि इस प्रकार की जिम्मेदारी और समर्पण से ही जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य को समय से पहले सफलतापूर्वक सम्पन्न किया जा सकता है। SDM बलबीर रवन ने प्रगणकों को प्रशस्ति पत्र सौंपकर सम्मानित किया। वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाए जाने के उपलक्ष्य में खरीफ फसल की तैयारियों को लेकर छतरपुर जिले में जागरूकता अभियान प्रारंभ हो गया है। इसी क्रम में 16 मई से 10 दिन तक संचालित होने वाले कृषि रथ को छतरपुर विधायक ललिता यादव ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला पंचायत CEO नमा शिवाय, अर्जरिया उप संचालक कृषि अनिल मिश्रा सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। छतरपुर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का काम युद्ध स्तर पर जारी है। अभी तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक 1,37,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है। जिला नागरिक और खाद्य आपूर्ति अधिकारी सीताराम कुठारी ने बताया कि जिले में 80 उपार्जन केंद्र बनाए गए थे, जिसमें किसानों के लिए छाया पानी की पर्याप्त व्यवस्थाएं भी की गई थी। शासन के निर्देशानुसार गेहूं खरीदी 23 मई से बढ़ाकर 28 मई कर दी गई है। किसानों को 2,625 रूपये प्रति क्विंटल की दर से उनके बैंक खातों में सीधे भुगतान किया जा रहा है। किसानों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी और कोताही ना हो, इसके लिए जिला कलेक्टर द्वारा निरीक्षण टीम में गठित की गई है। छतरपुर जिला कलेक्टर पार जायसवाल ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और फार्मर रजिस्ट्री सहित विभिन्न राजस्व कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण और फार्मर रजिस्ट्री में प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे छतरपुर जिले की चिट्ठी। आलेख था सुनील पांडे का, वाचन स्वर दीपा सिंह का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था।
1: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
2: हेलो।

0: हेलो
1: हेलो एमएस हॉटलाइन।
0: हेलो,
1: हेलो
0: हाँ जी साहब,
1: जी सर, नमस्ते।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: जी
0: कौन सा
1: मेरा
0: गाना
1: नाम
0: सुनना
1: सोना
0: चाहेंगे पहले ये बता दें, फिर हम बात करते रहेंगे।
1: फिल्म का नाम है आपकी कसम।
0: आपकी?
1: आपकी कसम,
0: हाँ जी,
1: इसका वो है करवटे बदलते रहे सारी रात हम। हेलो जी
0: हाँ जी,
1: सर,
0: हाँ जी, हाँ जी सर, बताएं कहाँ से बोल रहे
1: जी
0: हैं, कौन बोल रहे हैं, बताएं आप।
1: मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: सिसोदिया साहब, क्या हाल है आपके?
1: जी मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है। गर्मी काफ़ी है हमारे यहाँ पे अभी।
0: गर्मी काफी है।
1: जी हाँ, अभी तो सर बताओ, आपको अपना उज्जैन और इंदौर दोनों जिले अभी अलर्ट कर रखे थे गर्मी के लिए।
0: आपकी कसम का रात भर करवटें बदलते रहे हैं ना, आप ये गाना सुनना चाहते हैं।
1: हाँ जी, सारी रात करवटे बदलते रहे हम। जी सर, और
0: और
1: बताइए
0: गर्मी
1: कैसे
0: का
1: हैं
0: क्या उपाय कर रहे हैं आप, गर्मी से बचने के क्या उपाय चल रहे हैं आपके?
1: आप? गर्मी से बचने के लिए घर पे रहते हैं, और सुबह शाम अपना खेत का काम निपटा लेते हैं। पशुओं के लिए चारा सुबह ले आते हैं, और उनको मतलब ठंडी छाँव में बांध रखा है, और पशुओं को भी मतलब समय समय पर पानी पिलाते रहते हैं, और मतलब हम घर पे ही रहते हैं अभी।
0: अच्छा,
1: और कार्यक्रम सुनते रहते हैं सर।
0: रेडियो सुनते रहते हैं।
1: जी हाँ, मोबाइल पे कार्यक्रम सुनते हैं, हम आराम से मिलता है इसको तो प्रसारण।
0: वाह वाह,
1: जी हाँ,
0: ठीक
1: और
0: है,
1: आपका
0: अच्छा
1: कोई
0: लगा
1: अनुभव
0: आपसे
1: सुना
0: बात
1: मुझे
0: करके।
1: कुछ
0: आपकी
1: बताओ
0: पसंद
1: सर।
0: का गीत मिल गया है, सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी थैंक यू सो मच।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार सर,
0: कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: मैं ग्राम उलझाऊ जिला सीहोर गेंदालाल परिहार बोल।
0: गेंदालाल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। गाना बताइए, आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: सर जाने दुश्मन फिल्म गाना
0: जानी दुश्मन,
1: जी,
0: कौन सा गाना?
1: तेरे हाथों में पहना चूड़िया। सर इको आ रहा थोड़ा,
0: आप किधर से आ रहा होगा?
1: नहीं एक आ रहा सर मोबाइल में
0: अच्छा, वो आपकी वजह से आ रहा होगा। यहाँ तो ठीक है। आप
1: जी।
0: बताएं, गर्मी के क्या हाल हैं, पानी की
1: गर्मी तो
0: क्या
1: बहुत बढ़ रही
0: व्यवस्था
1: सर
0: है?
1: जी, गर्मी का तो भी हाल है
0: बुरा हाल है।
1: जी, अब
0: पानी
1: क्या
0: का
1: कहना
0: कैसे
1: पड़ता है
0: उपयोग कर
1: गर्मी
0: रहे
1: के
0: हैं, पानी
1: बेचारे में।
0: कैसे
1: तो
0: बचा रहे हैं?
1: पानी के बचत तो कर जो लगता है वो तो खैर लगता है पानी।
0: क्या साधन है आपके पास पानी का?
1: यहाँ पे नलाते थे, गांव में टंकी बनी हुई है
0: अच्छा, नगर निगम से नल आते हैं।
1: और
0: पर्याप्त रहता है,
1: जी
0: आपके परिवार का गुजारा हो जाता है उसमें?
1: जी सर हो जाता ना,
0: चलो अच्छा है, सबको मिल रहा है अच्छे से पानी।
1: अच्छे से मिल रहा है पानी। ट्यूबवेल भी है यहाँ पे गांव में घरों पे। जी
0: जी, चलिए सुनिए आपके पसंद का गीत। फोन करने के लिए
1: जी
0: धन्यवाद।
1: जी सर।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, राजू अग्रवाल बोल रहा हूँ, राजाराम नगर देवास।
1: अग्रवाल साहब नमस्कार, क्या हाल है आपके? गर्मी बहुत पड़ रही है।
0: हाँ।
1: गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
0: गाना
1: आवाज बहुत गूंज रही सर आपकी, थोड़ा सा दूर हो जाए रेडियो से। हाँ
0: ये हीरा मोती पिक्चर का गीत है, हम तुमको देखते हैं का गीत है, बलराम जोशी की आवाज में है
1: जी।
0: हीरा मोती गीत है,
1: हम तुमको तुमको देखते हैं।
0: हाँ, वो जन्म कौर जी का,
1: दिलराज कौर जी की आवाज है।
0: हाँ हाँ जी।
1: और कारोबार आपका ठीक चल रहा है?
0: हाँ ठीक है सर, और
1: धन्यवाद आपका, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। आप पुराने श्रोता हैं हमारे।
0: कल आ भी रहे हैं आप वहाँ पे?
1: जी जी जी
0: अगर आप
1: जी जी जी जी लीजिए, सुनिए आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हेलो।
1: अस्सलाम
0: वालेकुम। सलाम
1: वालेकुम। तकलीम बोल रहा हूँ धर्मपुरी से।
0: जी साहब, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहेंगे।
1: आओ प्यार करें फिल्म का है, रफी साहब के आवाज में ये जूपी जी की निगाहें थी।
0: आओ प्यार करें। ये झुकी झुकी निगाहें। और बताएं क्या गर्मी के हाल चल रहे हैं आपके यहाँ।
1: गर्मी बहुत है आगे बली।
0: अच्छा, तो फिर
1: बहुत
0: बचने के
1: ज्यादा
0: लिए क्या कर रहे हैं
1: गर्मी
0: आप, गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय चल रहे हैं।
1: है। कुछ कुछ
0: अच्छा, गर्मी है, कूलर है, एसी है, क्या है, क्या उपाय कर
1: कुछ भी
0: रखे हैं।
1: नहीं। एक तो भीषण गर्मी, ऊपर से चक्की की हीट, और व्यवस्था कुछ भी नहीं।
0: अच्छा, गर्मी तो जबरदस्त है
1: तो
0: इस साल, सबसे ज्यादा। ठीक है,
1: जी, बहुत ज्यादा गर्मी
0: होना भी जरूरी है। गर्मी नहीं
1: है। मैं
0: पड़ेगी
1: कम
0: तो बारिश नहीं
1: एसी
0: होगी।
1: एसी कूलर लगा के कमजोर हो जाऊंगा सर।
0: सही बात है।
1: हर
0: ठीक है,
1: हर मौसम के हिसाब से रहना चाहिए आदमी। जी
0: सही है। जी,
1: जी
0: चलिए, आपकी पसंद का गाना मिल गया, सुनते हैं।
1: शुक्रिया।

चुप सके। अब आज का MH हॉटलाइन कार्यक्रम संपन्न होता है। सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर जारी रहेगा आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM।

0: 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: हेलो MH हॉटलाइन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत। जंजीर फिल्म का गीत सुनिए मन्नाडे की आवाज में। गीतकार हैं गुलशन पावरा, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

वाला हम सफर हमराज हो ता कयामत जो

0: CRT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: किशोर कुमार और मोहम्मद रफी को सुनिए फिल्म दोस्ताना में।

एन इवनिंग इन पेरिस। इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, मैं हूं नीतिका वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे फरिश्तों की।
1: हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार,
0: किससे बातें हो रही है हमारी
1: आज? कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी रंगीन लेटर वाला बोल रहा हूँ मैं।
0: नियाज मोहम्मद जी, बहुत स्वागत है आपका।
1: आपका कार्यक्रम सुनता हूँ मैडम, बहुत अच्छा लगता है। पहली बार मेरे को फोन लगा है मेरा आपके कार्यक्रम में
0: जी।
1: वैसे मैं लेटर लिखता रहता हूँ आप।
0: जी जी जी, बहुत स्वागत है आपका नियाज जी। नियाज मोहम्मद जी, आपसे जानना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में फरिश्ते के तौर पर आप किसे मानते हैं? हम जिंदगी में फरिश्तों की बात करना चाह रहे हैं। हाँ,
1: जो आज हमारा जो यकीन इस चीजों से होना चाहिए, तो जो मनोभाव हमारा, जो मानवता है, जो समाज है, उस परिवर्तित के रूप में जो हमारा है उसको मानने पर ही फरिश्ते माने जा सकते।
0: कुछ बता सकते हैं आप इसके बारे में?
1: यही बताता रहा हूँ मैं बिल्कुल, कि आदमी जो चीज अपने अच्छे कर्मों का फल अगर हम सही आत्मविश्वास के साथ अगर करते हैं, या वो किसी भी धर्म का हो, या किसी भी समाज का हो, या किसी भी व्यक्तित्व के भाव को अच्छी तरह से अगर उसको व्यक्तित करते हैं तो वो फरिश्ते के रूप में कहलाएगा। यदि अच्छा काम नहीं कर रहा है और जो मान लो कि हम उसे मुझे फरिश्ते कहो तो ही नहीं हो सकता
0: जी। फरिश्ते जो हैं वो नेक दिल होते हैं, नेक काम करते हैं और इंसानियत के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं।
1: वो कटु शब्दों से बिल्कुल दूर रहते हैं।
0: जी जी, चलिए, आपने बहुत अच्छी परिभाषा दी है फरिश्ते की और उम्मीद करते हैं कि ये फरिश्ते की बातें जो आज इस कार्यक्रम में हम कर रहे हैं वो आगे चढ़कर कुछ और भी रूप ले और बहुत अच्छी अच्छी हमें जानकारियाँ भी मिलें और लोगों के सुझाव भी मिलें।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत अच्छा मैम साहब, बहुत अच्छे आपने पूछा, मुझे भी अच्छा लगा
0: जी।
1: और इस तरह से आत्मविश्वास बढ़ता है मैडम इससे
0: जी।
1: आदमी की नकारात्मक जो टिप्पणियां जो होती है ना,
0: हाँ,
1: उसके भाव वो घर कर जाती है
0: जी।
1: ये कार्यक्रम जो होता है वो प्रशंसक जो आप और जो होते हैं,
0: हाँ,
1: आपके शब्दों में जो भाव आते हैं
0: जी,
1: वो हमें बिल्कुल प्रभावित करते हैं और हम इसी से आपसे सुन के,
0: हाँ,
1: हम भी इसे अच्छे लिखते हैं और सुनते हैं और कार्यक्रम में फोन लगता है तो हमें भी शब्दों में भाव पैदा होता है।
0: चलिए, अच्छा लगा आपसे
1: मैडम
0: जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नियाज मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया
1: जी। जी
0: नमस्ते।
1: दोस्ताना गाना का गाना है मैम
0: सर, यहाँ
1: रहे ये दोस्ता हमारा
0: जी। यहाँ पर क्या गाने हम अपनी पसंद का सुनाते हैं, कोशिश करते हैं अगर हम डाल सकें।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पसंद का ही गाना सुना दीजिए मैम।
0: बिल्कुल,
1: बहुत अच्छा लगा
0: जी
1: आपको कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। परिवार को मेरी तरफ से ईद की मुबारकबाद अग्रिम
0: जी,
1: और आप
0: आपको भी
1: कुशल, हम सब मिलकर रहे
0: जी। नमस्कार तो,

0: हेलो
1: जी मैडम।
0: जी, नमस्कार। बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम है आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: जी मैडम जी।
0: आपको कभी समझ में आया कि ये दोस्त नहीं होते तो आज मेरा ये काम रुक जाता या ये काम नहीं हो पाता?
1: जी
0: ऐसा कभी हुआ तो
1: ऐसा हुआ है सर मैडम जी।
0: बताइए वो वाकया क्या था।
1: जी मैडम जी, ऐसा मेरे साथ हुआ है। हम वो जी कल गया जी, गए थे हम
0: हाँ
1: तो अपने पिताजी की वो कराने के लिए पिंडदान।
0: हाँ
1: तो हमें बहुत समस्या आ गई थी, हमारा पर्स सब चला गया था, बैग भी चला गया था।
0: हाँ
1: तो हमारे साथ में एक मित्र गया था, हमारे साथ
0: हाँ
1: में, तो
0: हाँ
1: उसने हमारे खाने पीने से लेकर और पूरी व्यवस्था, जब तक हम घर नहीं लौटे आए,
0: हाँ
1: और हमारे साथ में खड़ो ही रहो, भाई तुम्हें चाय तो नहीं पीने क्या है?
0: हाँ
1: लेकिन ऐसा दोस्त होना चाहिए मैडम जी।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात। ऐसे ही दोस्त हमेशा मिले, सभी को मिले। एक बार आपका परिचय फिर दे दें।
1: जी मैडम जी मैडम, हम अपने जिला दमोह से बोल रहे हैं,
0: हाँ
1: गिरधारी सेन नाम है हमारा। जी मैडम
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा गिरधारी सेन जी आपसे बात करके, बहुत
1: जी।
0: शुक्रिया।

0: आकाशवाणी भोपाल।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश का ये प्रसारण है
0: जी।
1: जी आपका परिचय दीजिए।
0: मैं आपका बहुत पुराना श्रोता हूँ, सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ।
1: जी जी जी कैसे हैं राजेश नेमा जी?
0: बढ़िया है, ठीक ठाक है
1: जी जी। चलिए,
0: और आपके लगभग प्रसारण बहुत पुराना श्रोता हूँ, इसलिए बहुत पुराने कार्यक्रमों से भी जुड़ाव रहा है।
1: जी जी
0: और
1: जी,
0: वर्तमान में जो शानदार कार्यक्रम आ रहे हैं उनसे भी जुड़ाव है और
1: जी,
0: हमेशा रहेगा।
1: जी जी जी आज बात आपके गीत हमारे में, हम फरिश्तों के बारे में बातें कर रहे हैं। जिंदगी में कभी कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, ऐसी कोई घटना जिसमें कभी आपको कोई व्यक्ति जो है वो फरिश्ते के रूप में मिला हो?
0: अच्छा अच्छा जब मैं पढ़ाई करता था उस समय की बात है, किसी कारणवश एक पेपर मेरा मिस हो गया था
1: जी।
0: तो एक चूंकि सामान्य क्लास थी तो हमारी क्लास के कक्षा शिक्षक थे
1: जी,
0: तो उन्होंने जब जांच की तो हमारा पेपर नहीं मिला, तो वो फिर घर पर आए और उन्होंने कहा कोई बात नहीं।

0: परेशान मत होना, आप पेपर बाद में भी दे सकते हो। तो मेरी बहुत सी बड़ी परेशानी एक बच गई उस समय, तो मैंने कहा ये इस तरह के लोग जो हैं वो निश्चित रूप से दूसरों के काम आते हैं और परेशानियां दूर करते हैं।
1: यानी आपके जीवन में शिक्षक जो हैं वो एक फरिश्ते के रूप में आए थे।
0: जी मैं चूंकि स्वयं शिक्षक हूँ
1: जी
0: और एक छोटा सा कार्टूनिस्ट भी हूँ
1: जी,
0: तो शिक्षकों का एक अलग मेरे मन में आदर सम्मान हमेशा है और रहेगा।
1: जी शिक्षक हमेशा आदरणीय होते हैं क्योंकि वो जीवन के लिए वो आधारशिला बनाते हैं। माता पिता तो पहली पाठशाला होते हैं, प्रथम पाठशाला तो माँ ही होती है, लेकिन
0: बिल्कुल जीवन उन्हीं से शुरू होता है।
1: जी बिल्कुल,
0: जो मायने में जीवन है
1: जी
0: वही जिंदगी की सही राह दिखाते हैं और हम आगे चल के प्रगति कर सकते हैं उन्हीं के मार्गदर्शन में।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, जीवन का साक्षात्कार जो है वो हमारे शिक्षक ही हमें करवाते हैं। बहुत अच्छा लगा राजेश नेमा जी आपसे बात करके, उम्मीद करते हैं आप हमारे कार्यक्रम के साथ यूं ही जुड़ा करेंगे और भविष्य में भी आप हमसे बातें करेंगे।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, किससे बातें कर रहे हैं हम, परिचय दीजिए।
0: इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन।
1: जीनत परवीन जी, बहुत स्वागत है आपका
0: जी।
1: कैसी हैं?
0: अच्छी हूँ मैम।
1: अच्छा जीनत परवीन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिंदगी में आपके लिए कोई फरिश्ता बन के आया है कभी? कोई ऐसा वाकया हुआ है जिसमें आपको वो इंसान जो है वो फरिश्ते के रूप में नजर आया हो?
0: हाँ वैसे तो हुआ है ऐसा
1: जी, बताएं।
0: जैसे कुछ भी जरूरत पड़ती तो कोई इंसान है जो फरिश्ता बन के आ जाता है।
1: तो आपके जीवन में वो फरिश्ता कौन है?
0: फरिश्ता मेरे हस्बैंड ही है।
1: चलिए बहुत अच्छा लगा। जीवन साथी जो है वो सही मायने में आपके सारथी होते हैं
0: जी।
1: और तो बताइए आप किस तरीके से मानती हैं कि जीवन साथी जो है आपके वो आपके लिए फरिश्ता है?
0: बस कुछ भी काम होता है तो कर देते हैं,
1: और
0: जैसे कहीं जाना होता है तो मना नहीं है, कहीं पे भी घूमो फिरो, घर के कामों में हेल्प कराते हैं।
1: हाँ, इसमें बतौर फरिश्ता आपको क्या समझ में आया? जीनत जी, जैसे कि हम कहते हैं कि जिंदगी में किसी ने यदि पढ़ाई के लिए आपको प्रेरित किया है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको किसी ने प्रेरित किया है, चाहे वो आपके पड़ोसी हों, आपके भाई हों, दोस्त हों, जीवन में किसी भी प्रकार से कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आया जिसने आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाया हो, इस प्रकार की कोई बात हो तो वो बताएं आप।
0: हाँ जैसे कहीं अर्जेंट कहीं जाना रहता है तो एकदम वो ड्यूटी भी छोड़ के मतलब आ जाते हैं, छोड़ने हैं मेरे को,
1: हाँ हाँ
0: कहीं जाना पड़ता है अर्जेंट तो।
1: अच्छा, तो चलिए हम मानते हैं कि आपके जीवन साथी जो हैं वही आपके लिए फरिश्ते हैं
0: जी
1: जी। चलिए आगे बढ़ने
0: जी
1: के लिए,
0: सपोर्ट करते हैं ना, सबके लिए करते हैं।
1: चलिए जीनत परवीन जी, आपसे बात करके अच्छा लगा
0: जी, शुक्रिया मैम
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो
1: जी नमस्कार
0: नमस्कार दीदी,
1: जी आपका परिचय दे दीजिए।
0: मैं ग्राम गुरुजी कला से राजकुमार लखेरा बोल रहा हूँ।
1: जी लखेरा जी, आपका बहुत स्वागत है।
0: जी, और कैसी हैं मैडम जी?
1: जी हम तो अच्छे हैं। लखेरा जी आपसे जानना चाहते हैं
0: जी
1: कि जीवन में आपके लिए फरिश्ता क्या है, या जीवन में आपके लिए कोई ऐसा व्यक्ति कभी आया हो जो आपके लिए फरिश्ते के तौर पर साबित हुआ हो,
0: जी वैसे मैडम जी, वैसे तो
1: कभी किसी ने बहुत आगे बढ़ के मदद की हो, कभी परेशानी में घिरे हुए हो आप और आपकी किसी ने बहुत अच्छे से मदद करी हो, भगवान के रूप में खड़ा हो गया हो आपके लिए।
0: ये ऐसा वाक्य अब तो नहीं आया मैडम जी। बाकी ये रहता है कि माता पिता यदि अपने बच्चों को अच्छे तरीके से संस्कार दे के और उनको संपन्न बना रहे हैं।
1: माता पिता आपके लिए किस प्रकार से फरिश्ते साबित हुए हैं ये बताइए।
0: यही कि हर समय पे मतलब मदद करते रहते हैं, कभी कोई समस्या नहीं आ पाती, यदि कोई आती है तो वो मतलब है उसका निराकरण करते हैं।
1: हाँ
0: कभी कोई नहीं आ पाती समस्या, वैसे उनके उसमें रह
1: हाँ
0: मदद करते रहते हैं
1: माता पिता,
0: और माता पिता। और कभी ऐसे मौका आया तो दोस्त भाई, अगर यदि अच्छे हैं तो दोस्त भाई भी मदद करते हैं।
1: हाँ तो दोस्त भाई भी तो वो संस्कार लेते हैं जब माँ बाप से, तभी तो आगे बढ़ पाते हैं वो आपके लिए,
0: जी
1: मदद के लिए।
0: जी मैडम,
1: चलिए तो अच्छा लगा आपसे बात करके कि माता पिता के संस्कार के साथ में भी इंसान जो है वो फरिश्ते सा काम करता है।
0: जी थैंक
1: जी लखीरा साहब, आपने फ़ोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: यू मैडम।

0: चलिए आपसे भागचंद साहू जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जिंदगी में आपके लिए सैनिक क्या मायने रखते हैं और सैनिक को आप फरिश्ते के तौर पर कैसे देखते हैं?
1: सैनिक तो दीदी ऐसा है, देखो देश की सुरक्षा के लिए सैनिक बिना कुछ नहीं हो सकता, देश की सुरक्षा नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल यही कहना है।
0: हाँ, और सैनिकों के लिए और भी क्या कुछ कहना चाहेंगे?
1: और दीदी हम तो देखो पानीपुरी सेंटर का ठेला लगाते हैं हम।
0: हाँ
1: हाँ उसी में लगे रहते हैं और कार्यक्रम आपके सुनते रहते हैं।
0: जी जी, जी। चलिए, सैनिक आज सीमा पर हैं इसलिए हम सुरक्षित हैं और निश्चिंत हैं कि
1: थोड़ी अपन सुरक्षित हो सका।
0: जी, निश्चिंत है कि हमारा देश सुरक्षित है।
1: बिल्कुल बिल्कुल दीदी बिल्कुल।
0: चलिए भाग्यचंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल ठीक है दीदी, नमस्कार
0: नमस्कार।

0: जी मैम जी
1: जी, आपका परिचय दीजिए।
0: आपका नीम सोता कमलेश कार बात कर रहा हूँ, जिला नरसिंहपुर के ग्राम करकबेल से। सकुशल है मैम जी? बिल्कुल सुन रहे हैं आपको। जी
1: जी कमलेश कहा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिंदगी में आपके लिए फरिश्ता कौन है, कोई वाकया बताइए। आज
0: सबसे पहले फरिश्ते की बात करें तो सबका फरिश्ता तो मैं कह सकता हूँ, हम जैसे मानते हैं भगवान।
1: जी जी जी,
0: उससे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। जो सांस ले रहे हैं, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी,
1: हाँ हाँ,
0: इन सभी के अस्तित्व के कारण ही हमारा अस्तित्व है।
1: जी जी जी,
0: रही दूसरी बात फरिश्ते की, जो जीता जागता रहता है, जो सामने दिखता है बिल्कुल,
1: हाँ,
0: मेरे घर में मेरा परिवार है।
1: जी जी जी,
0: और रही दूसरी बात तो मेरे ग्राहक बंधु है, चाय नाश्ते की दुकान मैम जी, तो ग्राहक बंधु जो होते वो मेरे लिए फरिश्ते का काम करते, मेरे लिए कह सकते हैं जीवन यापन के लिए जो माध्यम होता है उसके तहत वो उपस्थित होते हैं और मेरा सहयोग के माध्यम से मेरी दुकान चलती है।
1: हाँ।
0: तो इस प्रकार से दो प्रकार के मेरे फरिश्ते हैं। और तो तीसरी मैम जी एक बात और कहेंगे कि दोस्त हैं मेरे कुछ, एक ऐसे दोस्त हैं जो सामने तो देखते हैं लेकिन मदद मैम जी वो अप्रत्यक्ष रूप से मेरी हमेशा करते ही रहते हैं।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात कही आज आपसे बातें करके, बहुत अच्छा लगा कमलेश कहा जी। आपने पंचतत्व की बात कही है, परिवार की बात कही है और ग्राहक की बात कही है। वाकई में आपके जीवन के लिए ये बहुत मायने रखते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: जी जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: आपको और आपकी टीम को।
1: जी जी।

0: हेलो
1: जी नमस्कार।
0: जी मैम नमस्कार, अमर सिंह राठौर बोलो मैम, कटनी मध्य प्रदेश से, ग्राम डिठवारा। जी मैम आज कौन सा विषय रखा हुआ मैम?
1: जी आज हम बात कर रहे हैं फरिश्ते की। जो कोई भी आपके जिंदगी में आपके लिए कभी फरिश्ते के रूप में उपस्थित हुआ हो या आप मानते हैं कि वो फरिश्ते हैं तो वो बताए कुछ।
0: सबसे पहले तो मेरे माता पिता फरिश्ते हैं मैम, जिन्होंने मेरे को धरती पे लाया, उन्होंने इतना सब कुछ शिक्षा दी, बचपन में मेरे को शिक्षा दी। और दूसरे फरिश्ते हैं मैम मेरे गुरु
1: जी, जिन्होंने
0: मेरे को पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया, उन्होंने इतना सहयोग किया।
1: जी जी
0: आज आदमी इस जगह पे है।
1: जी
0: जी मैम। और तीसरी मैम जीवन संगिनी है मैम, पत्नी।
1: जी
0: जो हमेशा साथ साथ निभाती हैं।
1: जी जी
0: उससे बड़े फरिश्ता और कौन हो सकता है।
1: चलिए कोई और वाकया बताना भी चाहते हैं कुछ तो बताइए कि किस प्रकार से कभी माता पिता और गुरु और जीवन संगनी की आपने बात करी है।
0: जी जी जी मैम, मैं जब भी क्या कुछ थोड़ा परेशान होता हूँ, कुछ भी रहता है, तो माता पिता से अपनी बात मैं शेयर करता हूँ और वो मुझे बहुत ढंग से गाइडलाइन देते हैं।
1: हाँ।
0: और मुझे सफलता प्राप्त हो

0: बेटी है, तो मेरे लिए माता पिता सर्वोपरि है मैम
1: जी।
0: जी जी, और उन्हीं की मैं वंदना करता हूँ, रोज सुबह उठ के दोनों के चरण स्पर्श करता हूँ
1: जी।
0: यही मेरी दिनचर्या है।
1: चलिए, बहुत
0: जी
1: अच्छा
0: मैम,
1: लगा अमर सिंह जी, माता
0: जी जी
1: पिता आपके लिए और जो फरिश्ते हैं, ये फरिश्ते आपके जीवन में हमेशा बने रहें, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे, यही कामना करते हैं
0: जी मैम,
1: जी।
0: थैंक यू।
1: धन्यवाद।

0: समझने की, ऐसे जज्बातों को समझने की और साथ ही ऐसी ऊर्जा को समझने की जिससे बिगड़ता काम सवर जाए, जो अनहोनी को टाल जाए और जो आपको कृतज्ञ कर जाए। जीवन में फरिश्ते ये मुख प्रकृति भी है, ये वसुधा है जिसे हमने संसाधनों से सराबोर किया है। हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं। आज कार्यक्रम में हमने बात की अपने जीवन के फरिश्तों की। आप सभी श्रोताओं के विचार जानकर हमें खुशी हुई और उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। और अब कार्यक्रम से अनुमति दीजिए नीतिका वर्मा को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत। हमारे ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा था।
2: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली में प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने बधाई दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। एक अन्य बैठक में शिक्षा मंत्री ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने पर बल दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। डॉ. यादव परिवहन, सहकारिता, जनजातीय कार्य, पशुपालन और लोक निर्माण विभाग के कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि गेहूं उपार्जन के लिए जिन किसानों के स्लॉट 23 मई तक बुक होंगे, उन किसानों से गेहूं खरीदी 28 मई तक की जाएगी। प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है। राज्य के 16 शहरों में बुधवार को पारा 44 डिग्री से अधिक रहा। खजुराहो में सबसे अधिक 47.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश में लू का अलर्ट जारी किया है। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम का कल भोपाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। वहीं इससे पहले भारतीय अंडर 18 महिला हॉकी टीम ने सीरीज के चौथे और अंतिम मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम को 4-1 से हरा कर शानदार प्रदर्शन किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला नगमा हमने आपके लिए चुना है। किशोर कुमार की आवाज है, अलका याग्निक ने साथ दिया है, माया गोविंद ने गीत लिखा है, संगीत है कल्याण जी आनंद जी और फिल्म का नाम है पिघलता आसमान। पसंद आप सब श्रोताओं की। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीए, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबीए इस गीत को सुनना चाह रहे हैं। इसी गीत को पसंद किया है अमित रैकवार, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवपालिका, पारस और संदीप ने। ये पत्र हमें मिला है बैतूल से। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर फिल्म पिघलता आसमान से ये नगमा।

और अब आपको सुनवा रहे हैं मर्यादा फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है, पसंद आप सब श्रोताओं की। मन्नू, मंजू, पिंकी, ऋषिका, रवि, स्वीटी, मनोज, कामिनी, इन्होंने पत्र लिखा है भोपाल से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल और प्रियांश वर्मा।

और अब आपको सुनवा रहे हैं खंडवा के श्रोताओं की पसंद पर गीत। पसंद है संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और समस्त पंचोलिया परिवार की। फिल्म का नाम है काजल, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, गीत लिखा है साहिर ने और संगीत है रवि का। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

एक थी लड़की, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाज़ लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, जीएम दुरानी और साथियों की है। विनोद का लिखा ये गीत है, संगीत अजीज़ कश्मीरी का, पसंद आप सब श्रोताओं की। झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु और तासु इस गीत को सुनना चाहते हैं। भोपाल से मयंक और राशि, पंकज और साधना इस गीत को पसंद कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं एक थी लड़की फिल्म का ये गीत।

अब आपको सुनवा रहे हैं तीसरी मंजिल फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। मजरूह के शब्द हैं, संगीत आरडी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा इस गीत को सुनना चाहते हैं। हांसी शहर से

शब्दाक्षरों और सुरों के अनूठे संगम को समेटे आकाशवाणी प्रसारण के गौरवमयी 90 वर्ष की सफर और आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस के ऐतिहासिक

अवसर पर आप सभी श्रोता सादर आमंत्रित हैं शुक्रवार 22 मई सन 2026 को सजीव फोन इन प्रोग्राम में सुबह 10:10 से 12 बजे श्रोता इस कार्यक्रम के माध्यम से आकाशवाणी से अपने 90 वर्ष के सफर का जिक्र कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए टेलीफोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर के बाहर के श्रोता 0731 कोड अवश्य लगाएं। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और विविध भारती चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जाएगा। इस प्रोग्राम को आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। साथ ही इस प्रोग्राम का लाइव स्ट्रीमिंग आकाशवाणी इंदौर की फेसबुक पेज पर भी किया जाएगा। इस प्रोग्राम में आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। आकाशवाणी इंदौर के अभियांत्रिकी प्रमुख अभय कुमार गुप्ता से, आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक से, साथ ही आप बातें कर सकेंगे अपने समय के जाने माने उद्घोषक विजय रॉय से, आकाशवाणी इंदौर की हर दिल अजीज उद्घोषिका देविंदर कौर मधु से और अपने जमाने के आवाज के जादूगर संतोष जोशी से। इस कार्यक्रम में उत्साह है, उमंग है और ढोल की थाप है, तो जरूर फोन लगाइए। शुक्रवार दिनांक 22 मई सन 2026 को सुबह 10:10 से 12 बजे तक

0: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
1: क्या?
0: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
1: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: और सुनेंगे कैसे?
0: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: सुनते रहिए मालवा किसान आकाशवाणी इंदौर।
1: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
2: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
1: तो सुनते रहिए मालवा किसान
3: आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक पंचतंत्र। आज सुनिए इसकी 8वीं कड़ी।

सभी श्रोतागण, दादा दादी एवं नाना नानियों को विशेष प्रणाम। आप सबको पंचतंत्र की छोटी छोटी कहानियाँ जरूर भाती होंगी। अभी तो ढेर सारी कहानियाँ और भी हैं। पिछली कथा में हमने सुना, लघु पतनक नामक कौवे ने देखा कि किस प्रकार चित्रग्रीव अपने साथियों को जाल में फंसा देखकर घबराया नहीं, बल्कि उन्हें हौसला दिया। सबने मिलकर जाल को उड़ा लिया। बहेलिया हार कर लौट गया। लघु पतनक भी उनके साथ उड़ चला। फिर उसने देखा कि हिरण्यक नामक चूहे ने उन सबको जाल से मुक्त कर दिया। लघु पतनक ने हिरण्यक से मित्रता कर ली। पहले तो हिरण्यक तैयार ही नहीं हो रहा था, फिर लघु पतनक के तर्क के सामने उसने हार मान ली। वे दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। एक दिन लघु पतनक ने उस जगह को छोड़ने का निश्चय किया। हिरण्यक को लेकर वो दक्षिण की ओर अपने मित्र मंथरक कछुए के पास पहुंच गया। मंथरक ने उनका बहुत स्वागत किया, परंतु मंथरक ने हिरण्यक से अपनी पुरानी जगह को छोड़ने का कारण पूछा। हिरण्यक ने बताया, अपने भाग्य में जो लिखा है वो तो होकर ही रहता है। इस संदर्भ में उसने छोटी छोटी कहानियां भी सुनाई। एक वणिक पुत्र की कथा भी सुनाई, जो हमेशा अपने भाग्य पर ही विश्वास करता था। उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। संयोगवश उसका मिलन राजकन्या से हो गया, लेकिन सच्चाई ज्ञात होने पर राजकन्या ने उसे निकाल दिया तो प्राप्त व्यर्थ नगर की ओर चल पड़ा। वहीं से एक बारात निकल रही थी, वो उसमें शामिल हो गया। अब आगे।

क्या शानदार बारात है। लगता है जैसे किसी बड़े आदमी के घर जा रही है। अच्छा, ये तो नगर सेठ की बेटी की शादी है। अरे ये कोलाहल कैसा, लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? अरे ये तो एक मदमत हाथी महावत से छूट गया है, सबको रौंदता हुआ जा रहा है। हे प्रभु, हे प्रभु, इनकी रक्षा करो। ये दुल्हन बेचारी अकेली खड़ी है, मुझे उसके पास जाना चाहिए।

0: बचाया है, इसलिए अब आपको छोड़कर मेरी जीवित दशा में कोई भी दूसरा व्यक्ति मेरा पाणी ग्रहण नहीं कर सकता।
1: भाग्य में लिखी वस्तु मिल ही जाती है। हाँ, मनुष्य के भाग्य में लिखी वस्तु उसे मिल ही जाती है।
2: अगली सुबह राजा ने पूरा वृतांत सुना। अपनी कन्या को संपूर्ण अलंकारों एवं दास दासियों से युक्त करके 1000 गांवों के साथ अत्यंत आनंद के साथ प्राप्त व्रत को सौंप दिया। राजा ने उसे युवराज का सम्मान दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ, मनुष्य को भाग्य का लिखा मिल ही जाता है, और इसी कारण मैं लघु पत्नक के साथ यहाँ आ गया हूँ।
3: आप सबका इस तालाब के किनारे स्वागत है। आपका जो धन नष्ट हुआ उसके लिए चिंतित ना हो। भाग्य में यदि उपभोग का सुख नहीं है तो वह संभव नहीं होता। जैसे सौमिलक धन खो देता था।
2: सौमिलक धन खो देता था, वो कैसे मंत्रक?
3: तो सुनो, एक नगर में सौमिलक नाम का एक जुलाहा रहता था। वो अनेक प्रकार के रंगों और चित्रकारियों से युक्त रेशमी तथा राजाओं के पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्रों का निर्माण करता था, परंतु
4: प्रिय, मैं अनेक प्रकार के चित्रकारियों से युक्त रेशमी वस्त्रों के निर्माण में निपुण होने पर भी उतना धन नहीं कमा पाता, क्यों?
5: सही कहते हैं आप। दूसरे जुलाहे जो केवल मोटे वस्त्रों के निर्माण में ही कुशल थे, वे हमसे अधिक समृद्ध हैं।
4: मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि ये जगह मुझे रास नहीं आ रही। मुझे दूसरे शहर में जाकर व्यापार करना चाहिए।
5: हे स्वामी, ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं। विदेश जाने पर धन लाभ ही हो, ये सारी मिथ्या बातें हैं। मनुष्य चाहे आकाश में उड़ जाए, चाहे पाताल में चला जाए, अथवा पृथ्वी के ही छोर तक चला जाए, किंतु जो वस्तु पहले नहीं मिली वो कभी मिलेगी भी नहीं। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम यहीं पर कोई उद्योग।
4: प्रिय, तुमने ठीक नहीं कहा। कार्य की सिद्धि उद्योग से होती है, केवल मनोरथ मात्र से कुछ नहीं होता। इसलिए कर्म करते रहना चाहिए। मैं विदेश अवश्य जाऊंगा।
6: ऐसा निश्चय करके सोमिलक ने वर्धमान नामक नगर में जाकर 3 वर्ष तक कड़ी मेहनत की और 300 स्वर्ण मुद्राएं कमा कर लौटा। रास्ते में एक जंगल आया, वहां विश्राम के लिए रुका, परंतु उसका धन चोरी हो गया। वो पुनः शहर गया, धन कमाया, पर अत्यधिक सावधानी के बावजूद उसका धन फिर चोरी हो गया। चौथी बार उसने देखा, उसकी ओर देखकर 2 विचित्र आकृति के पुरुष कुछ वार्तालाप कर रहे थे। उसने ध्यान से सुना।

0: हे कर्ता, क्या तुम भली भांति नहीं जानते हो कि सोमिलक के भाग्य में भोजन और वस्त्र के अतिरिक्त धन नहीं है? फिर भी आपने इसको 30 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दे दी?
1: हे कर्मन, उद्यमी पुरुषों को उनका अंश देह होता ही है, पर इसके प्रारब्ध का अंतिम निर्णय तुम्हें ही करना है। तुम मुझे व्यर्थ ही उपालंब दे रहे हो।
2: नहीं, मेरे श्रम के फल को कोई नहीं छीन सकता। मैं कटरी को संभाल कर रख लेता हूं।

0: अरे ये क्या, अरे ये गठरी तो फिर खाली है। हाय हाय हाय हाय, अब क्या होगा? मेरे निर्धन रहकर जीवित रहने से मुझे क्या लाभ है? हाय हाय हाय हाय, मैं इस वट वृक्ष की शाखा में खुद को मानकर आत्महत्या कर लूंगा। मैं जीवित नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा।
1: अरे नहीं नहीं नहीं, सोमिलक, इस प्रकार का साहस न करो। तुम्हारे धन को चुराने वाला मैं हूं। भोजन और वस्त्र से अधिक धन तुम्हारे भाग्य में नहीं है। तुम घर लौट जाओ, पर मैं तुमसे प्रसन्न हूं। हां, चाहो तो कोई और वर मांग लो।
0: सच? यदि ऐसा है तो मुझे बहुत सा धन दे दो।
1: पर तुम उसे भोग नहीं पाओगे।
0: यद्यपि धन मेरे भाग्य में नहीं है, फिर भी मेरे पास धन होना चाहिए। धनी व्यक्ति की लोग सेवा करते हैं।
1: कैसे?
0: किसी नगर में तीक्ष्ण विषाण नामक एक सांड रहता था। मद के गर्व से उसने अपने समूह का साथ छोड़ दिया था और एकाकी नदियों के किनारे उगी हुई मरकत मणि के समान हरी हरी कोमल घास को चरते हुए नदियों के तट को अपने सींग से गिराया करता था। इस प्रकार स्वच्छंद विचरण करते हुए वो धीरे धीरे जंगली हो गया और वन में निवास करने लगा। उसी वन में प्रलोभक नाम का एक श्रृगाल भी रहता था। एक दिन वो श्रृगाल अपनी पत्नी के साथ नदी तट पर सुखपूर्वक बैठा हुआ था। इसी बीच तीक्ष्ण विषाण नाम का वो सांड जल पीने के लिए नदी तट पर आ गया। उसके लटकते हुए वृहत मांसल अंशों को देखकर श्रृगाली ने कहा,
2: स्वामी देखो, इस वृषभ पर मांस के टुकड़े जिस प्रकार से लटके हुए हैं, उससे यही ज्ञात होता है कि कुछ ही पलों में ये गिर जाएंगे। आपको इस वृषभ का अनुगमन करना चाहिए।
3: प्रिये, कौन जानता है ये मांसपिंड गिरेंगे या नहीं? तुम मुझसे व्यर्थ ही परिश्रम करवा रही हो। यहां तुम्हारे साथ रहकर मैं जल पीने के लिए आने वाले चूहों को पकड़कर खाया करूंगा। मेरे विचार से सांड के पीछे भागना उचित नहीं।
2: तुम उद्यमी नहीं हो, थोड़ा बहुत जो पा जाते हो उसी से संतोष कर लेते हो। कायर और आलसी पुरुष ऐसा करते हैं। और दूसरी बात, मैं चूहों का मांस खाते खाते ऊब चुकी हूँ। अरे देखो देखो, मांस के ये टुकड़े गिरने ही वाले हैं। तुम्हें मेरी बात टालना नहीं चाहिए।

0: पत्नी की बात को श्रीगाल टाल नहीं पाया। वृषभ के पीछे घूमते हुए बहुत समय व्यतीत कर दिया, किंतु मांसपिंड नहीं गिरे। 15 वर्षों तक प्रतीक्षा करके वो श्रीगाल लौट आया। उसे लगा वो मांसपिंड कभी नहीं गिरेंगे।
1: देखो सोमिलक, यदि तुम्हें धन प्राप्ति की इतनी ही इच्छा है तो तुम मेरी बात मानो। तुम वर्धमानपुर जाओ, वहां 2 वणिक पुत्र निवास करते हैं। हाँ, एक का नाम गुप्त धन है और दूसरे का नाम उपभुक्त धन। दोनों के स्वभाव को देखो, फिर एक की प्रकृति का वर मुझसे मांग लेना।
2: ये कहकर वो पुरुष अंतर्धान हो गया। सोमिलक उस नगर में जाकर गुप्त धन के घर पहुंचा। उसे देखकर गुप्त धन स्त्री तथा बच्चों को फटकारने लगा। उनकी उपेक्षा की चिंता किए बिना सोमिलक उनके घर में प्रवेश कर बैठ गया। भोजन का समय हो जाने पर अनिच्छा से गुप्त धन ने थोड़ा सा भोजन सोमिलक को भी दे दिया। सोमिलक वहीं सो गया। रात में उसने देखा वही दोनों पुरुष वहां बातें कर रहे थे।
1: हे कर्ता, क्या आपने इस गुप्त धन के भाग्य में कोई अतिरिक्त व्यय नियत किया था जो इसने सोमिलक को भोजन के लिए दिया? ये तो अनुचित है।
3: हे कर्मन, इसमें मेरा कोई योग नहीं। पुरुष को उसके लाभ तथा हानि को प्रदान कर देना मेरा कर्तव्य है। मेरे दिए हुए फल का परिणाम आपके अधीन है।
2: अगले दिन उठकर सोमिलक ने देखा गुप्त धन आंत्रशोथ से पीड़ित है। इस कारण उस दिन गुप्त धन ने भोजन नहीं किया। फिर उस घर से निकलकर सोमिलक उपभुक्त धन के घर गया, जहां उसका विशेष स्वागत और सम्मान हुआ। उपभुक्त धन द्वारा प्रदत्त वस्त्र और भोजन से सम्मानित होकर सोमिलक एक भव्य शैया पर सो गया। रात्रि के समय उसने पुनः उन दोनों पुरुषों को देखा।
1: हे कर्ता, इसने सोमिलक के आतिथ्य में बहुत अधिक धन खर्च कर दिया। आप बतलाइए इसके ऋण का भुगतान कैसे होगा?
3: हे कर्मन, जो मैंने किया है वह मेरा कर्तव्य था। इसका परिणाम अब आपके हाथ में है।
2: प्रातः होते ही एक राज कर्मचारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया और उपभुक्त धन के हाथ में दे दिया। ये घटना देखकर सोमिलक ने मन में सोचा कि संचय रहित उपभुक्त धन ही श्रेष्ठ है।
0: धनोपार्जन की सार्थकता तो तभी होती है जब व्यक्ति उसका उपभोग करे तथा दान आदि से दूसरों को उपकृत करे। हे विधाता पुरुष, मुझे उपभुक्त धन की प्रकृति चाहिए।
2: इस कथा को सुनाकर मंथरक ने कहा,
4: मित्र हिरण्य, भोग को प्रधान मानकर तुम्हें धनहानि के विषय में दुखी नहीं होना चाहिए। कभी कभी धन के विद्यमान रहने पर भी उसे अविद्यमान ही मानना पड़ता है। धन को पाकर दान देना चाहिए अथवा उपभोग में लाना चाहिए, कभी भी संचय नहीं करना चाहिए। दान के समान कोई दूसरी निधि नहीं होती। भगवान शिव के पास धन के नाम पर केवल वृषभ नंदी हैं, फिर भी वो परमेश्वर कहलाते हैं। तुम उस खोए हुए धन की चिंता छोड़ दो मित्र।
5: हाँ मित्र हिरण्यक, मंथरक की पुरुषवाणी पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। उसने जो कुछ भी कहा है तुम्हारे हित के लिए कहा है। प्रिय बोलने वाले तो सुलभ होते हैं, परंतु अप्रिय और उचित बोलने वाले मित्र बहुत कम मिलते हैं।
6: मित्र मंथरक, मुझे लगता है आपका कथन सत्य है। अप्रिय होते हुए भी जो हितकारी बातों को कहते हैं वे ही तो वास्तविक मित्र होते हैं।
5: मित्रों देखो, एक हिरण इधर दौड़ता हुआ आ रहा है। आप सब छुप जाएं, हो सकता है इसके पीछे कोई ब्याह आ रहा हो।
7: हाँ मित्र लघुवत्तक, ये मृग बड़ा ही कातर लग रहा है।
5: हाँ।
7: चलो चलो उसके पास चलते हैं।
5: हाँ चलो।
7: मृगराज, आप भयभीत प्रतीत होते हैं।
8: जी जी, मेरा नाम चित्रांग है। आप लोगों ने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। सचमुच मैं भय संत्रस्त हूँ और बड़ी कठिनाइयों से बचकर आया हूँ। आप लोग मुझे अपनी शरण में लेकर कोई ऐसा स्थान बताएंगे जहाँ वो व्याध ना पहुँच सके।
5: मित्र, वो बहेलिया पर्याप्त मांस पिंडों को लेकर अपने घर चला गया है।
8: अच्छा,
5: अब कोई भय नहीं है, आप निश्चिंत हो सकते हैं।
2: उस दिन से चारों कौवा, कछुआ, चूहा और मृग तालाब के किनारे मनोविनोद करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन गोष्ठी में चित्रांग नहीं आया, सभी चिंतित हो गए।
6: मित्रों, क्या बात है, आज मित्र चित्रांग नहीं आया? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया?
5: शेर चीते के हाथ तो नहीं लग गया, या फिर किसी शिकारी के जाल में?
7: मित्र लघुपतनक, हिरण्यक और मैं उसे ढूंढने में असमर्थ हैं।

0: भद्र, ये तुम्हारी क्या दशा है? ये कैसे हो गया?
1: मित्र, अब तो मेरा मृत्युकाल आ गया है। अच्छा हुआ मित्र आप आ गए। प्राणांत काल में मित्र का दर्शन सुखकारक होता है। अगर मैंने कभी भी कोई अप्रिय वचन कहा हो तो मुझे क्षमा कर देना मित्र।
0: भद्र, हम लोगों के रहते आपको इस प्रकार भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी हिरण्यक को लेकर आता हूं, आप आशान्वित रहे।
1: अच्छा।
0: अरे मित्र, ये अच्छा नहीं हुआ।
2: क्यों, क्या हुआ? क्या वहां बहेलिया आ गया?
0: नहीं, परंतु ये मंत्रक भी यहाँ चला आ रहा है। अरे ये उचित नहीं है। अगर अभी वो व्याध आ गया मैं तो आकाश में उड़ जाऊंगा। तुम विवर्ण में घुसकर आत्मरक्षा कर लोगे, चित्रांग भी तेजी से भाग जाएगा, परंतु ये मंत्रक धीरे धीरे चलकर अपने आप को कैसे बचा पाएगा?
3: क्या करूं, मैं अपने को रोक नहीं पाया। मित्र के विपत्ति की सूचना के बाद मैं कैसे रहता?
4: अभी वो चारों बातें कर ही रहे थे कि अचानक वही हुआ जिसका डर था, व्याध आ गया। सभी बच गए पर मंत्रक कछुआ व्याध की पकड़ में आ गया। उसे धनुष की नोक पर टांग कर घर की ओर चल पड़ा। तीनों मित्रों की आंखों में आंसू बहने लगे। तभी तीनों ने एक उपाय किया। वो चित्रांग बहेलिए के मार्ग में जाकर तालाब के किनारे निर्जीव भूमि पर लेट गया। लघुपतनक उसके सिर पर बैठ गया। उसे देख व्याध मंत्रक को वहीं छोड़कर हिरण लेने दौड़ पड़ा। इसी बीच हिरण्यक ने मंत्रक के पाश को काट दिया। मंत्रक वहां से भाग निकला। बहेलिया जब चित्रांग हिरण के पास पहुंचा तो वो भी तेजी से भाग गया। बेचारा व्याध सिर पीटता हुआ घर की ओर चल पड़ा। उस दिन से वो चारों मित्र सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इन प्रसंगों से हमें शिक्षा मिलती है कि विचारवानों को परस्पर मित्रता रखना चाहिए और मित्र के लिए सदैव प्रेम भाव रखना चाहिए। श्रोतागण, यहीं पर हमारा द्वितीय प्रकरण मित्र संप्राप्ति समाप्त होता है। अगली कड़ी में हम आपको काकोलुकियम की कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: संग्रहालय से। इसके अंतर्गत अभी आपने पंचतंत्र की 8वीं कड़ी का प्रसारण सुना। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि दोपहर 2:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम, और 1:45 पर सुना जा सकेगा सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान होंगे। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 12:58 हुए हैं। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली में प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने बधाई दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। एक अन्य बैठक में शिक्षा मंत्री ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इंदौर में आयोजित ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमता कार्य समूह की बैठक को कल वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे ब्रिक्स देश मिलकर दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन देशों की जनसांख्यिकीय ताकत उन्हें कामकाज के भविष्य को आकार देने का अवसर देती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग, परिवहन, सहकारिता, जनजातीय कार्य, पशुपालन और लोक निर्माण विभाग के कार्यों की आज समीक्षा कर रहे हैं। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि गेहूं उपार्जन के लिए जिन किसानों के स्लॉट 23 मई तक बुक होंगे, उन किसानों से गेहूं खरीदी 28 मई तक की जाएगी। वहीं मौसम में प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है। खजुराहो में कल सबसे अधिक 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश में लू का अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट की खबर में, आईपीएल में आज अहमदाबाद में 7:30 से गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब आइए सुनते हैं महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा।

स्वागत है प्यारी सखियों का कार्यक्रम महिला सभा में। आज का महिला सभा लेकर हाजिर हूँ मैं सोनल चौरे। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, तपतपाती गर्मियों के बीच सुकून देता हमारा आपका साथ और धीरे धीरे हम आप पहुँचे हैं अपने साथ के 71वें वर्ष की ओर। इसी तरह आकाशवाणी इंदौर को आपका आप सबका प्रेम मिलता रहे। सखियों, आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। ये दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की स्मृति में मनाया जाता है, जिनकी 1991 में एक आतंकवादी हमले में हत्या कर दी गई थी। इसलिए भारत में हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस मनाते हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को हिंसा से दूर रखना, आतंकवाद रोकना और राष्ट्रीय सौहार्द को बढ़ाना है। साथ ही ये दिन उन सुरक्षाकर्मी और नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर है जिन्होंने आतंकवादी हमलों में अपनी जान गंवाई, देश की रक्षा करते देश की माटी में समा गए। उन्हें हमारा सादर नमन।

0: हमारी बहुत सी सखियां घर और कार्यक्षेत्र में अपनी दोहरी भूमिका निभाती है, जिसके चलते शैक्षणिक दबाव, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, पारिवारिक अपेक्षाएं, सुरक्षा एवं भविष्य की चिंता और हाँ, परफेक्ट बनने का सामाजिक दबाव, ये सारे कारण हैं। तनाव, चिंता या एंग्जाइटी के जो शारीरिक परिवर्तन, हार्मोनल असंतुलन और मानसिक अस्थिरता पैदा करते हैं। सखियो, जीवन है तो उलझने तो होंगी ही, फिर क्यों तनाव लेकर या चिंता करके अपने आप को परेशान करना। इन सब से बचने के लिए सबसे पहले अपने लिए समय निकालना जरूरी है। खुद को प्राथमिकता दें, अपनों के साथ मिलें, बातें करें और हाँ ना कहना भी आप सीखें। परिवार और कार्यस्थल के बीच संतुलन बनाकर रखें, टाइम मैनेजमेंट भी रखें ताकि आप अपने शौक के लिए भी समय निकाल सकें। और हाँ सखियो, दूसरों से तुलना कतई ना करें। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट वॉक करें, योग और मेडिटेशन का सहारा लें, मन शांत रहेगा, साथ ही आप स्वस्थ रहेंगी। कैफीन, प्रोसेस्ड फूड कम करें, भोजन में फाइबर, मैग्नीशियम, ताजे फल सब्जियां शामिल करें, संतुलित आहार लें, खूब पानी पिए और हाँ 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद भी जरूर लें। मोबाइल या स्क्रीन से दूरी बनाकर रखें, घूमें, नाचें, गाएं, कुल मिलाकर खुश रहें और मुस्कुराती रहें।
1: नमस्कार सखियों, मैं अर्पणा जोशी आज आप सभी के लिए कुछ कविताएं लेकर आई हूं। मेरी पहली कविता का शीर्षक है हिंदी का मान। भाषाओं की सुरभित आंगन की हिंदी तुलसी क्यारी है, भाषाओं की सुरभित आंगन की हिंदी तुलसी क्यारी है, गंगा जल सी पावन निर्मल लगती हमको प्यारी है। और पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की यदि हम बात करें, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की यदि हम बात करें, सभी दिशाओं के जनमानस पर हिंदी ही तो राज करे। तुलसी पंत निराला मैथिल जगमग करते तारे हैं, तुलसी पंत निराला मैथिल जगमग करते तारे हैं, व्योम धरा पर हिंदी की महिमा को गाते सारे हैं। और भारतवासी आओ, भारतवासी आओ मिलकर हिंदी का उत्थान करें। हिंदी दिवस विशेष नहीं, सब दिन हिंदी का सम्मान करें, सब दिन हिंदी का सम्मान करें। तो आइए अब हम अपनी दूसरी कविता की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है आस का दीप। जब निराशा का काला बादल जीवन को घेर लेता है, तब कहीं सूरज की एक नन्ही किरण जीवन का पथ प्रशस्त कर जाती है। सुनिएगा कि जब अंधियारी काली रातें हों, जब अंधियारी काली रातें हों, राह कहीं ना दिखती हो, थाम सके जो तुझको ऐसी बाह कहीं ना दिखती हो, अपने मन की देहरी पर तुम आस का दीप जला लेना, तपकर सोना कुंदन बनता है खुद को यह समझा लेना, तपकर सोना कुंदन बनता है खुद को यह समझा लेना। और जब जब नयन सजल हों तेरे, जब जब नयन सजल हों तेरे, विषदंश चुभोते अपने हों, ठोकर लगती पग पग पर और टूट गए सब सपने हों, एकाकीपन हो खाली मन हो, एकाकीपन हो खाली मन हो, गीत यही बस गा लेना, तपकर सोना कुंदन बनता है खुद को यह समझा लेना, तपकर सोना कुंदन बनता है खुद को यह समझा लेना। और जीवन नदिया खारी हो जाए, जीवन नदिया खारी हो जाए, मन पर्वत सा भारी हो जाए, जब लगे कि कुछ भी शेष नहीं, पतझर की तैयारी हो जाए, भेज निमंत्रण मधुमासों को, भेज निमंत्रण मधुमासों को, बस इतना बतला देना, तपकर सोना कुंदन बनता है खुद को यह समझा लेना, तपकर सोना कुंदन बनता है खुद को यह समझा लेना। अंतर द्वंद्वों की उहापोह में जब उलझे उलझे धागे हों, अंतर द्वंद्वों की उहापोह में जब उलझे उलझे धागे हों, नितांत अकेली सुनी राहों में ना पीछे ना कोई आगे हो, देख स्वयं को दर्पण में, देख स्वयं को दर्पण में, बस इतना दोहरा लेना, तपकर सोना कुंदन बनता है खुद को यह समझा लेना, तपकर सोना कुंदन बनता है खुद को यह समझा लेना। तो सखियों, आज हमने अभी सुना आस का दीप। अब हम अगली कविता की ओर बढ़ते हैं, जो समर्पित है ईश्वर की अनुपम कृति माँ को। शब्द कलश। कि शब्द कलश भी रिक्त हुए हैं, भावों की गंगा बहती है, शब्द कलश भी रिक्त हुए हैं, भावों की गंगा बहती है, हृदय कुंज के झुरमुट में माँ अमराई सी रहती है। और शब्द अनूठा अनुपम ऐसा परमेश्वर ने उपहार दिया, शब्द अनूठा अनुपम ऐसा परमेश्वर ने उपहार दिया, जहां स्वयं ना पहुंचे भगवान सृष्टि को आधार दिया। और ममता पर जो लिखना चाहा, ममता पर जो लिखना चाहा, कलम भला कब रुकती है, हृदय कुंज के झुरमुट में माँ अमराई सी रहती है। और सहकर पीड़ा भारी जो जीवन का पुष्प खिलाती है, सहकर पीड़ा भारी जो जीवन का पुष्प खिलाती है, जाग जाग कर रातों में जो लोरी मधुर सुनाती है, पूजा घर में जलते दीपक सी घर को आलोकित करती है, पूजा घर में जलते दीपक सी घर को आलोकित करती है। और तुलसी दल सी पावन है जो मन को सुरभित करती है, क्या लिख जाऊं क्या छोड़ू मैं, क्या लिख जाऊं क्या छोड़ू मैं, मंथन की लहरें चलती हैं, हृदय कुंज के झुरमुट में माँ अमराई सी रहती है। और जीवन के तपते रेगिस्तानों में आंचल की ठंडी छांह मिली, जीवन के तपते रेगिस्तानों में आंचल की ठंडी छांह मिली, कठिन डगर पर कैसे गिरती मुझको माँ की बांह मिली। और मंजिल मंजिल पार करूं मैं, शूल स्वयं हट जाते हैं, मंजिल मंजिल पार करूं मैं, शूल स्वयं हट जाते हैं, जब मेरे गालों पर आकर माँ के हाथ ठहर जाते हैं। मुस्कान मनोहर माँ की छाया, मुस्कान मनोहर माँ की छाया, त्रिवेणी सी लगती है, हृदय कुंज के झुरमुट में माँ अमराई सी रहती है, हृदय कुंज के झुरमुट में माँ अमराई सी रहती है। और नैहर की सीढ़ी पर जाऊं, नैहर की सीढ़ी पर जाऊं, माँ हंसकर गले लगाती है,

0: उसकी बूढ़ी आंखें मुझ पर प्रेम सुधा बरसाती हैं और पास बिठाकर मुझको जो तन से कमजोर बताती है, पास बिठाकर मुझको जो तन से कमजोर बताती है और मेरे पकते बालों को देख जरा जरा वो घबराती है, मेरे पकते बालों को देख जरा जरा वो घबराती है और माँ के बिन नैहर कैसा, माँ के बिन नैहर कैसा, दुनिया सच ही कहती है हृदय कुंज के झुरमुट में माँ अमराई सी रहती है, हृदय कुंज के झुरमुट में माँ अमराई सी रहती है। तो सखियों, अभी हमने माँ पर आधारित एक रचना सुनी। लीजिए हम अपनी अगली रचना की ओर बढ़ते हैं जिसका शीर्षक है आंसू। कहा जाता है कि मन की व्यथा को अभिव्यक्त करने के लिए नैनों में आंसू की एक बूंद ही काफी होती है। तो अगली रचना का शीर्षक है आंसू। नैनों का श्रृंगार हुए हैं जब खुशियों का संदेश सुनाते हैं, नैनों का श्रृंगार हुए हैं जब खुशियों का संदेश सुनाते हैं, दृगकोरों का भार हुए हैं व्यथा हृदय की बतलाते हैं, और झरते हैं मोती बनकर नैनों से, झरते हैं मोती बनकर नैनों से, जाने कितने शोक मिटाते हैं और मन की सीपी के मोती हैं जो यदा कदा अखियों में लहराते हैं, और पीड़ा की अभिव्यक्ति है आंसू, पीड़ा की अभिव्यक्ति है आंसू, बहकर मन निर्मल कर जाते हैं, खुशियों का उपहार भी आंसू हैं, अधरों की मुस्कानों संग आते हैं, और पावनता का पर्याय बने हैं आंसू, पावनता का पर्याय बने हैं आंसू, इसीलिए गंगाजल कहलाते हैं, इसीलिए गंगाजल कहलाते हैं। सखियों, अगली कविता का शीर्षक है यादें। जब मन में यादों की संदूक खुलते हैं तो अधरों पर मुस्कान आती है और कभी कभी नैनों में आंसू आते हैं। ये यादें मन के आंगन में पड़ती वो ठंडी फुहारे हैं जो मन के आंगन की धरती को गीली कर जाती हैं। तो हमारी अगली कविता का शीर्षक है यादें। कुछ यादें जो मन के आंगन में पसरी रहती हैं, कुछ यादें जो मन के आंगन में पसरी रहती हैं, कुछ यादें जो दिल के संदूकों में बंद रहती हैं, कुछ यादें जो काली बदली बनकर छा जाती हैं, कुछ यादें जो जाने अनजाने ही आ जाती हैं, कुछ यादें जो नैनों की कोर भिगो जाती हैं, कुछ यादें जो मुस्कानों के मोती दे जाती हैं, कुछ यादें जो अमलतास सी बिखरी रहती हैं, कुछ यादें जो दिल के दर्पण में निखरी रहती हैं, कुछ यादें जो दिल की पगडंडी पर सुमन खिलाती हैं, कुछ यादें जो बिछड़े मनमीत याद दिलाती हैं। यादें ही तो हैं जो तुम संग हमको जोड़े हैं, यादें ही तो हैं जो तुम संग हमको जोड़े हैं, नेह बंध के रेशमी धागे दिल को तुमसे जोड़े हैं, तुम यादों में ही रहना स्वप्न सुहाना बनकर, तुम यादों में ही रहना स्वप्न सुहाना बनकर, और बाहें खोले मिलना मुझको हरदम ले मुस्कान मनोहर, बाहें खोले मिलना मुझको हरदम ले मुस्कान मनोहर। मेरी अगली कविता का शीर्षक है प्रीत तुम्हारी। इंद्रधनुष के रंगों जैसी बिखरी बिखरी रहती है, इंद्रधनुष के रंगों जैसी बिखरी बिखरी रहती है और चटक रंगोली जैसी मन के द्वारे सजती है, प्रीत तुम्हारी खिली चांदनी आंगन में छिटकी रहती है और गंगा जल सी निर्मल है यह तुलसी दल सी पावन है, पूजा घर में दीपक सी मधिर मधिर यह चलती है और कोयल कुंके जो अमराई में मीठी तान सुनाती है और भ्रमरों की गुंजारों सी मन का मोत बढ़ाती है, प्रीत तुम्हारी खिली खिली चांदनी बनकर रहती है और संग तुम्हारा आज भी मुझको ऐसे भाता है, संग तुम्हारा आज भी मुझको ऐसे भाता है, ठंडी हवा का झोंका जो मन को सुहावन लगता है और जब भी तेरी यादों की बदली घुमड़ घुमड़ कर आती है, नेह नीर बरसे झरझर मन का ताप मिटाती है और अब भी अक्सर ऐसा होता है उंगली तेरा नाम लिखती और मिटाती है, प्रीत तुम्हारी मन के आंगन में खिली खिली सी रहती है, प्रीत तुम्हारी मन के आंगन में खिली खिली सी रहती है। सखियों, आप सभी
1: सखियों, अभी हम सुन रहे थे अर्पणा जोशी जी से काव्य पाठ, और अब जानकारी दे दें आपको भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही नई रोशनी योजना की। सखियों, नई रोशनी योजना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 2012 से 2013 में शुरू की गई एक केंद्रीय नेतृत्व विकास योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग के अल्पसंख्यक महिलाओं को सरकारी प्रणालियों, बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ बातचीत करने के लिए सशक्त बनाना है। कुल मिलाकर महिलाओं के बीच आत्मविश्वास पैदा करना, उन्हें नेतृत्व क्षमता के प्रति जागरूक करना और चार दीवारी से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करना है। यह योजना 5 दिवसीय आवासीय या 6 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में संचालित होती है। प्रशिक्षण में शामिल जो विषय हैं वो हैं स्वास्थ्य और स्वच्छता, महिलाओं के कानूनी अधिकार और वित्तीय डिजिटल साक्षरता, स्वच्छ भारत मिशन, जीवन कौशल और सामाजिक व्यवहार में बदलाव, भारत में रहने वाली अल्पसंख्यक समुदायों की 18 से 65 वर्ष की महिलाएं जुड़ सकती हैं। यह योजना देश भर में गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाजों द्वारा लागू की जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए सखियों, आप अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय पोर्टल पर विजिट करें और इस तरह आप प्रशिक्षण पाकर बेहतर कुशलता पा सकती हैं। और सखियों, गर्मी का मौसम है तो आपके निखार की बात हो जाए तो सखियों, गर्मी की वजह से स्किन रिलेटेड समस्या होना आम बात है, क्योंकि इस समय पसीना आने से हमारी स्किन खराब हो सकती है। सबसे ज़्यादा समस्या होती है ऑयली स्किन के लिए। जिनकी ऑयली स्किन होती है उन्हें इस समय खास केयर करने की ज़रूरत होती है। आज के रूपलावण्य में बात करेंगे कि ऑयली स्किन के लिए किस प्रकार से केयर की जाए ताकि किसी तरह के कील मुहासे होने से बचा जा सके। तो सखियों, गर्मी में सही क्लेंजर का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है और दिन में 2 से 3 बार चेहरा जरूर धोना चाहिए। इसके लिए आप माइल्ड फेस वॉश यूज़ कर सकती हैं। इस दौरान मेकअप ऑयली स्किन के लिए सही नहीं होता तो आप मेकअप से बचें या फिर आप लाइट मेकअप कर सकती हैं। ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र का उपयोग करें और धूप से बचाव के लिए सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ना भूलें। इस समय जेल बेस्ड सनस्क्रीन का उपयोग करें ताकि चेहरे पर चिपचिपाहट या पसीना न आए। घरेलू उपाय ऑयली स्किन के लिए बेहतर होते हैं। मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक आप यूज़ करें जिससे चेहरे पर चिपचिपाहट कम हो। मुल्तानी मिट्टी के फेस पैक बनाने के लिए मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल या खीरे का रस मिलाकर आप इसका फेस पैक बनाकर हफ्ते में 2 बार लगा सकती हैं। सखियों, रात में सोने से पहले चेहरे पर शुद्ध एलोवेरा जेल जरूर लगाएं। ये त्वचा को ठंडा और हाइड्रेटेड रखता है तो आपकी खूबसूरती को गर्मी के मौसम में भी बरकरार रखना जरूरी है। साथ ही हमारे साथ आप बनी रहिए सखियों और मुस्कुराते रहिए इस गीत के साथ।

शब्दाक्षरों और सुरों के अनूठे संगम को समेटे आकाशवाणी प्रसारण के गौरवमयी 90 वर्ष की सफर और आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी श्रोता सादर आमंत्रित हैं शुक्रवार 22 मई सन 2026 को सजीव फोन इन प्रोग्राम में सुबह 10:10 से 12 बजे श्रोता इस कार्यक्रम के माध्यम से आकाशवाणी से अपने 90 वर्ष के सफर का जिक्र कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर के बाहर की श्रोता 0731 कोड अवश्य लगाएं। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और विविध भारती चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जाएगा। इस प्रोग्राम को आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। साथ ही इस प्रोग्राम का लाइव स्ट्रीमिंग आकाशवाणी इंदौर की फेसबुक पेज पर भी किया जाएगा। इस प्रोग्राम में आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। आकाशवाणी इंदौर के अभियांत्रिकी प्रमुख अभय कुमार गुप्ता से, आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक से। साथ ही आप बातें कर सकेंगे अपने समय के जाने माने उद्घोषक विजय रॉय से, आकाशवाणी इंदौर की हर दिल अजीज उद्घोषिका देविंदर कौर मधु से और अपने जमाने के आवाज के जादूगर संतोष जोशी से। इस कार्यक्रम में उत्साह है, उमंग है और ढोल की थाप है, तो जरूर फोन लगाइए। शुक्रवार दिनांक 22 मई सन 2026 को सुबह 10:10 से 12 बजे तक

सखियों चलते हैं हमारे अगले क्रम फैमिली फिटनेस की ओर। सखियों, बढ़ती गर्मी में शारीरिक थकान होने लगती है और ये हमारे शरीर में पानी की कमी की वजह से होती है। शरीर को हाइड्रेटेड रखना इसलिए बहुत ज़रूरी है। इस समय हर थोड़ी थोड़ी देर में लिक्विड डाइट आप लेती रहें। बच्चों और बुजुर्गों का खास तौर से आपको ख्याल रखना है सखियों, उन्हें नींबू पानी या कोई भी शरबत पिलाती रहें या दही और छाछ भी पेट को ठंडक देते हैं, तो ये भी भोजन के साथ आप ज़रूर लें और उन्हें भी दें। गर्मी में तला भुना और मसालेदार भोजन कम खाएं। मौसमी फल सलाद और जरूर सलाद वगैरह जरूर लें। सखियों, घर से बाहर निकलते समय छाता, टोपी या स्कार्फ का उपयोग जरूर करें। हालांकि इस समय 12 से 4 बजे के बीच में तेज धूप में जाने से बचना है। इसके अलावा सखियों, कॉटन के हल्के रंग के कपड़े पहने और शरीर को ठंडा रखें। और पसीना आसानी से ये सोखते हैं, इसलिए बच्चों को भी हल्के और सॉफ्ट कपड़े पहनाएं। कमरे में हवा का इंतजाम रखें और घर को ठंडा रखें। इसके लिए आप खसिया ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकती हैं, जिससे घर में धूप ना आने पाए। यदि परिवार में किसी को चक्कर आना, तेज सिर दर्द, उल्टी या अत्यधिक कमजोरी महसूस हो रही है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो सखियों, इस गर्मी में आप अपना और अपने परिवार का ख्याल जरूर रखें ताकि आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकें। इसी के साथ सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

सखियो, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आज के कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर प्रीति छिड़ीदार। अब अनुमति दीजिए आपकी सखी सोनल चौरे को। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा। अब अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल से।
1: 30 मिनट हुए हैं, ये समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का और इस कार्यक्रम में अब आप सुनने जा रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति। आज कलाकार हैं तिलोत्तमा विश्वकर्मा, इनसे सुनते हैं कार्यक्रम के आरंभ में ये लंगोरिया।

और अब हम आपको एक बन्नी सुनवाना चाह रहे हैं, स्वर एक बार फिर तिलोत्तमा विश्वकर्मा का।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने ये बन्नी गीत सुना, और इसमें आवाज़ थी तिलोत्तमा विश्वकर्मा की, और इसी बन्नी गीत के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय हुआ है सुगम संगीत के कार्यक्रम का, और इस कार्यक्रम में एक बार हम आपको पुनः सुनवा रहे हैं जबलपुर केंद्र की ही प्रस्तुति। अभी कलाकार हैं मोनल सावरकर, इनसे सुनते हैं कार्यक्रम की ये पहली रचना एक गीत के रूप में।

और कार्यक्रम के इस हिस्से में आप सुनने जा रहे हैं मीराबाई का ये भजन मोनल सावरकर के स्वर में।

शब्दाक्षरों और सुरों के अनूठे संगम को समेटे आकाशवाणी प्रसारण के गौरवमय 90 वर्ष की सफर और आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी श्रोता सादर आमंत्रित है शुक्रवार 22 मई सन 2026 को सजीव फोन इन प्रोग्राम में सुबह 10:10 से 12 बजे श्रोता इस कार्यक्रम के माध्यम से आकाशवाणी से अपने 90 वर्ष के सफर का जिक्र कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर के बाहर की श्रोता 0731 कोड अवश्य लगाए। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और विविध भारती चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जाएगा। इस प्रोग्राम को आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। साथ ही इस प्रोग्राम का लाइव स्ट्रीमिंग आकाशवाणी इंदौर की फेसबुक पेज पर भी किया जाएगा। इस प्रोग्राम में आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। आकाशवाणी इंदौर के अभियांत्रिकी प्रमुख अभय कुमार गुप्ता से, आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक से, साथ ही आप बातें कर सकेंगे अपने समय के जाने माने उद्घोषक विजय रॉय से, आकाशवाणी इंदौर की हर दिल अजीज उद्घोषिका देविंदर कौर मधु से और अपने जमाने के आवाज के जादूगर संतोष जोशी से। इस कार्यक्रम में उत्साह है, उमंग है और ढोल की थाप है, तो जरूर फोन लगाइए। शुक्रवार दिनांक 22 मई सन 2026 को सुबह 10:10 से 12 बजे तक

आप सुन रहे हैं भागम भागफल में कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान को। प्रीतम ने इस गीत की धुन बनाई थी और बोल थे समीर के।

और अब आ रहा है बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में इंदिवर के बोलों से सजा हुआ वो गीत जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने, फिल्म का नाम गिरफ्तार।

0: और गिरफ्तार फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब ख़त्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:10 होने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पूरी कर आज दिल्ली लौट आए हैं। इस दौरे में उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा किया। इटली में श्री मोदी ने वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की और दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। दिल्ली लौटकर शाम 5 बजे प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल रोम में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के सर्वोच्च सम्मान FAO एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। ये सम्मान उन्हें किसानों के कल्याण, खाद्य सुरक्षा और श्री अन्न यानी मिलेट्स को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए दिया गया। श्री मोदी ने इस सम्मान को देश के करोड़ों किसानों, पशुपालकों और कृषि वैज्ञानिकों को समर्पित किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि ये सम्मान भारत की कृषि नीतियों की वैश्विक स्वीकृति है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के मंत्री क्वोन ओह यूल के साथ मिलकर भारतीय समर स्मारक का उद्घाटन किया। यह स्मारक कोरिया युद्ध के 75 वर्ष पूरे होने पर बनाया गया है। इसमें उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है जिन्होंने उस युद्ध में अपनी सेवाएं दी थीं। इस मौके पर श्री सिंह ने कहा कि
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि सांदीपनी विद्यालयों में पढ़ाई के बाद बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट की गतिविधियां चलाई जाएं। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल स्तर पर ही व्यावसायिक शिक्षा देने पर भी जोर दिया गया। प्रदेश में RTE के तहत दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी कल जारी की गई, जिसमें 11,485 बच्चों को उनकी पसंद के प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त दाखिला मिला है। ये वो बच्चे थे जिन्हें पहले चरण में स्कूल नहीं मिल पाया था। इस तरह इस साल RTE के तहत मुफ्त दाखिला पाने वाले बच्चों की कुल संख्या 1,17,000 से ज्यादा हो गई है। भोपाल की चर्चित मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में कल जिला अदालत ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि शव को -80 डिग्री तापमान पर सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। इस बीच प्रदेश सरकार ने मामले की CBI जांच के लिए केंद्र को पत्र लिखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ट्विशा के परिजनों से मिलकर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया और जरूरत पड़ने पर शव को दिल्ली एम्स भेजने की बात भी कही। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। कल 16 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया। खजुराहो सबसे ज्यादा तपा, जहां पर तापमान 47.4 डिग्री तक पहुंच गया और 33 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। वहीं मौसम विभाग ने आज प्रदेश के भिंड, दतिया और निवाड़ी समेत 7 जिलों में तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है और 23 मई तक राहत के कोई आसार नहीं है। अब रुक करते हैं क्रिकेट की खबर का। IPL में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। गुजरात पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी है, जबकि चेन्नई अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए जूझ रही है। कल रात के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा बनाए रखा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे ने कल आगरमालवा के नलखेड़ा स्थित पीताम्बरा सिद्धपीठ माँ बगलामुखी के दर्शन पूजन कर हवन अनुष्ठान किया। झाबुआ के भावेश सोलंकी को सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद कर जान बचाने के लिए राहवीर योजना के तहत प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया और शिवपुरी जिले के पिछोर अनुविभाग के भौती में कल राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने 100 से अधिक दुकानें स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
3: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
4: It is ironic that Pakistan, with its long
5: time, ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले तीन महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
4: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली

0: कार्यों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
1: इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड,
2: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
1: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
2: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोक भवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में 4th स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करें।

0: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
1: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं। चाय,
2: ये चाय। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो, या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का ये पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। साथ दिया है बाबुल सुप्रियो ने, समीर के बोल, नदीम श्रवण का।

और भीगी पलके फिल्म का ये गीत आपने सुना था किशोर कुमार का गाया हुआ, एमजी हशमत ने इसे बोल दिए थे और जुगल किशोर तिलक राज ने संगीत तैयार किया था। सुनने के ख्वाहिशमंद थे हमारे ये सभी दोस्त। रामचंद्र माखीजा का

फिर शंकर लाल माखीजा, राहुल कुमार, श्रीमती सविता, बीबी स्वाति और पूरा माखीजा परिवार बनियापारा धमतरी से इस गीत को सुनना चाहता था। अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि और पंजाब राव निम्बालकर, साथ में है संदीप पाटिल, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा था। दतरंगी से भागवत वर्मा, गुलाब दास, मानिकपुरी लेवई से रंगिनी से दिनेश वर्मा, लच्छिनपुर से विश्वनाथ साहू और मवाली सिंगारपुर से सालिक बुजारी।

ये गीत आपने सुना युवराज फिल्म से। अलका याग्निक और जावेद अली ने इसे अपनी आवाज़ें दी थी। गुलजार के बोल थे और एआर रहमान की धुन थी। सुनना चाहा था ग्राम फांसी से राजकुमार डूडी, सरजीत से हैं प्रमोद कुमार और सौरभ डूडी। हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू।

और डब्बू। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसू और तासु। मयंक शुक्ला, राशि शुक्ला, पंकज शर्मा, साधना शर्मा ने कोलार रोड भोपाल से इसी गीत को सुनना चाहा था। प्रमिला गंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से, मालवा रेडियो श्रोता संघ से ये चिट्ठी लिख भेजी है। बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने।

रविंद्र जैन के गीत और संगीत को आप सुन रहे हैं किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में। फिल्म का नाम है राम भरोसे और इस गीत को और इसके बाद वाले गीत को सुनवाने के लिए हमारे जिन सभी दोस्तों ने चिट्ठियां लिख भेजी है उन सभी के नाम आपको बता दें। संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सरमती पंचोलिया, इन्होंने घंटाघर चौक खंडवा से हमें खत लिख भेजा था। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर ने चिट्ठी लिखी थी। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार वर्मा, साथ में हैं झावेंद्र कुमार, राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा ने सुनना चाहा है हमारे कार्यक्रम के इस अगले गीत को। डोंगरगांव जिला छत्तीसगढ़, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। और ये अगली और आखिरी चिट्ठी है उत्तम कुमार भगत, श्वेता, कीसु तासु, विकास शर्मा, ज्योति पुरुषवानी, मीना, नीतू सिंह और प्रतीका चतुर्वेदी की, इन्होंने हमें झारखंड से लिख भेजा था। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत।

इस गीत में आप सुन रहे हैं राजेंद्र कृष्ण के बोलों को। रवि के संगीत निर्देशन में महेंद्र कपूर और लता जी का गाया हुआ ये गीत है। फिल्म का नाम है भरोसा।

0: और इसी नगमे के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश ख़त्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:58 होने को हैं। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा पूरी कर दिल्ली लौट आए हैं। इस दौरे में उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा किया। इटली में श्री मोदी ने वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की और दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के सर्वोच्च सम्मान FAO एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। ये सम्मान उन्हें किसानों के कल्याण, खाद्य सुरक्षा और श्री अन्न यानी मिलेट्स को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के मंत्री कोन ओह यूल के साथ मिलकर भारतीय समर स्मारक का उद्घाटन किया। ये स्मारक कोरिया युद्ध के 75 वर्ष पूरे होने पर बनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि सांदीपनी विद्यालयों में पढ़ाई के बाद बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट की गतिविधियां चलाई जाएं। प्रदेश में RTE के तहत दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी कल जारी की गई, जिसमें 11,485 बच्चों को उनकी पसंद के प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त दाखिला मिला है। ये वो बच्चे थे जिन्हें पहले चरण में स्कूल नहीं मिल पाया था। भोपाल की चर्चित मॉडल त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में कल जिला अदालत ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग खारिज कर दी है। हालांकि कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि शव को -80 डिग्री तापमान पर सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। और मौसम में प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, निवाड़ी समेत प्रदेश के 7 जिलों में तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है और 23 मई तक राहत के कोई आसार नहीं है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। इस सभा के समापन से पहले हम आपको जानकारी दे दें हमारी सांध्यकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। 5:02 पर युवा दोस्तों के कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान होगा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 6:00। ग्राम लक्ष्मी आप सुन सकते हैं 7:21 पर। और सुर्खियों में इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा 8:00। आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी 10:00। और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में पंडित उल्हास कासलकर का राग यमन कल्याण में ख्याल गायन आप सुन सकते हैं। ये थी जानकारी उन कार्यक्रमों की जिन्हें आप हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण में सुन सकते हैं। 3:02 होने को हैं। अब मीडियम वेव पर हमारा ये प्रसारण संपन्न होता है। आप 5:00 से हमारे प्रसारण को पुनः मीडियम वेव पर सुन सकते हैं। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत कर रहे हैं युवा श्रोताओं के कार्यक्रम के साथ, तो प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं ईरा
1: और मैं अनुभूति स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।
0: तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज दिन है गुरुवार का, यानी कि हमारे खास सेगमेंट सफलता की कहानी का दिन, जिसमें आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं एक ऐसे युवा साथी से जिनकी स्टोरी आप सभी को जरूर प्रेरणा देगी, है ना अनुभूति?
1: बिल्कुल। तो हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में आप सभी बने रहिए, क्योंकि हम बहुत सारे गीत भी सुनने वाले हैं और बहुत सारे रोचक जानकारी आपको देने वाले हैं, है ना ईरा?
0: बिल्कुल, वो तो देनी ही होती है हमें हर बार।
1: लेकिन उससे पहले हम ये भी बता देते हैं हमारे श्रोताओं को कि आज के प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है?
0: और साथियों, आज के कार्यक्रम का दूसरा प्रश्न है, हनुमान जी के कितने भाई थे?
1: हम प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है?
0: और साथियों, दूसरा प्रश्न है, हनुमान जी के कितने भाई थे? अब दोनों ही प्रश्नों के सही उत्तर आप सभी को खोजने हैं और हम आपको जो सही उत्तर है वो कार्यक्रम के अंत में तो बताएंगे ही। लेकिन अनुभूति, अब इतनी सारी बातचीत तो हमने हमारे श्रोताओं से कर ही ली है, तो क्यों ना पहला गाना भी सुन लिया जाए इसी के साथ।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में

0: जारी।
1: तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर गुरुवार सफलता की कहानी सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी, एक ऐसी इंस्पायरिंग कहानी जिसे सुनकर आप सभी प्रेरणा ले सकें और अपने अपने करियर फील्ड में या अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। और इसीलिए आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं।
2: जी हाँ साथियों, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है अमन व्यास जी। अमन जी एक बेहद प्रतिभावान लेखक, शानदार कवि और एक ओजस्वी वक्ता है, और साथ ही साथ वो अपने न्यूज चैनल द जर्नलिस्ट के चीफ एडिटर भी हैं। तो अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी इंदौर के युववाणी कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
2: अमन जी, आपका जो डिजिटल वेंचर है द जर्नलिस्ट, उसने, हम सभी लोग जानते हैं, बहुत ही कम समय में 100K फॉलोअर्स गेन कर लिए थे। तो सबसे पहले तो हम द जर्नलिस्ट की स्टोरी जानना चाहेंगे, कैसे इसकी शुरुआत हुई, आइडिया कैसे आया और कैसे ये सफ़र 100K तक का तय हुआ।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबसे पहले बुलाने के लिए, ये मौका देने के लिए। पत्रकारिता के बारे में सामान्यता यह है कि जो जो प्रचार माध्यम जब जब ट्रेंड में रहता है, पत्रकारिता उधर चले जाती है। एक समय ऐसा भी हुआ होगा कि कोई माध्यम नहीं होगा, तब हमारे यहाँ हम कहते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाले। कोई माध्यम नहीं था तो इस देश में हर बोले घर घर जाते होंगे, चौराहों पर जाते होंगे गांव के, और वो अपने देश की स्टोरी सुनाते होंगे। तो चौपालों पर कभी खबरें सुनाई गई होगी, हमने पूरे उदाहरण सुने ही है। उसके बाद जब मैगजीन्स आई, पत्र पत्रिकाएं आई, एक समय दीवार लेखन चलता था कि दीवारों पर कोई बात लिख दी गई या कई पर्ची से कहीं चले गई। हमने देखा है कि पत्रकारिता का इतना महत्व है कि ज्योतिबा फुले से लेकर महात्मा गांधी से लेकर तो बाबा साहब अम्बेडकर सब अपने समय में लेख लिखते रहे, जिन्हें आज भी हम लोग कोट करते हैं, जिनका आर्काइव करते हैं। इसलिए पत्रकारिता, फिर इलेक्ट्रॉनिक आया, लेकिन हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि डिजिटल पर कुछ होता है तो देश में बड़ा उसका प्रभाव होता है। हम लोग उससे इन्फ्लुएंस भी थे और हमें लगा कि हम इन्फ्लुएंस हैं तो देश का पूरा जो युवा है, जिसे आजकल जेन जी वर्ड कहा जा रहा है, ये भी सब इससे इन्फ्लुएंस हो ही रहे होंगे। और हमारा ये मानना पिछले 2 सालों में द जर्नलिस्ट का सार्थक हुआ है, हमें जो लग रहा था वो सच है। क्योंकि मैं अपने कुछ उदाहरण, द जर्नलिस्ट ने बहुत कुछ, हमारी जितनी सामर्थ्य जितनी शक्ति हम उतना ही कवर कर पाते हैं। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हम ये कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश के एक लीडिंग मीडिया हाउस है, लेकिन हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है
2: जी।
3: और मध्य प्रदेश जैसा स्टेट, जिसे आज से 2 साल पहले डेथ स्टेट कहा जाता था कि खबरों के बारे में मध्य प्रदेश में आपको कोई खबर नहीं मिलेगी, ये शांत स्टेट है। अब यूपी में जाएंगे, बिहार में जाएंगे तो उनकी कोई एक खबर देश में नेशनल रहती है। मध्य प्रदेश साल में कभी एक बार नेशनल में आता था, लेकिन अभी पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के किसी हिस्से की खबर आज देश में हर दूसरे दिन ट्रेंडिंग में रहे। तो मध्य प्रदेश बढ़ रहा है और देश का दूसरा भूगोल में सबसे बड़ा राज्य है, तो इसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। और ये शांति स्टेट इसलिए भी कह सकते हैं कि यहाँ का जो समाज है, जहाँ जो लोग है, जो युवा है, वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में, बहुत ज्यादा अन्य पॉलिटिक्स अन्य चीजों में फंसने की बजाय वो अपना फोकस्ड लाइफ जीता है, वो अपना काम करना चाहता है वो करता है। लेकिन फिर भी 9 करोड़ लोगों का एक राज्य, देश 140 करोड़ का है वो अपनी जगह है, लेकिन 9 करोड़ लोगों का एक राज्य, वहां पर कुछ हो रहा है और उसके बारे में कुछ भी गलत आ जाए और पूरा राज्य उसी तरह थिंक करे, क्योंकि हमें नहीं पता कि आज कोई घटना हुई तो उसके पीछे का फैक्ट क्या है। जो मीडिया ने कह दिया हमें लगता है कि यही सत्य, इसे ब्रेन शेपिंग कहा जाता है। और इसके लिए हम लोगों ने देखा है कि पहले विदेशों से फंडिंग होती थी, सब कुछ होता था, तो हमें लगा कि जो हो रहा है, कुछ घटनाओं ने हमें इस बात पर झकझोरा भी, चाहे वो खरगोन में दंगा हुआ था एक समय जब मैं और कहीं था, तो मुझे लगा कि जो सत्य है, जब दंगा होने के दूसरे दिन देश के सारे मीडिया हाउस, दुनिया के सारे मीडिया हाउस वहां पहुंचते हैं, लेकिन उनको ये कुछ नहीं पता कि वहां पर हुआ क्या था। उनके सामने जो बता दिया गया या उन्हें, उनके रिपोर्टर को, उनके प्रतिनिधि को कोई पकड़ के ले गया, जिसकी बाइट दिला दी, हो सकता है उसने विक्टिम कार्ड खेल लिया हो, तो उन्हें लगा कि वही सत्य, क्योंकि उन्हें पता नहीं था। लेकिन जो किसी राज्य को, किसी गांव को, किसी शहर को, मतलब सबसे ज्यादा समस्या भी लोकेलिटी की है, और इसलिए उस राज्य को जानने वाले लोग अगर उस राज्य की पत्रकारिता करेंगे तो हो सकता है कि वो सत्य पत्रकारिता। मैं उसका दावा नहीं करता कि हम सब कुछ अच्छा कर ही रहे हैं या करेंगे ही, लेकिन हमारा प्रयास अच्छा है ये हम मानते हैं, और उसी की यात्रा है और हमारा प्रयास सही है। इसका मैं सबसे अच्छा उदाहरण देता हूं कि पिछले 2 सालों में हमने जो कुछ भी किया, कभी हमारा कंटेंट किसी के जानबूझ का विरोध में नहीं है, इंटेंशन हमारा कभी भी गलत नहीं रहा। और इसलिए हमने आज किसी को कुछ कहा भी है तो 3 दिन बाद वो बात सही हुई, आज किसी को गलत लगा भी है तो फैक्ट्स उसके 3 दिन बाद सबको सही लगे, तो हम बस इतना ही चाहते हैं कि फैक्ट्स पर बात हो।
2: बिल्कुल, और पत्रकारिता में न्यूट्रल रहना जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है।

0: किसी एक पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करना है, किसी एक ग्रुप को ज्यादा सपोर्ट करना, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आजकल पत्रकारिता में हम लोग हमें देखने को मिलता है। लेकिन द जर्नलिस्ट की आपने जैसा कि बताया कि हम लोग जो फैक्ट्स है सिर्फ उन्हीं को कवर करते हैं, है ना अनुभूति?
1: बिल्कुल ईरा, और जिस तरीके से अमन जी आप बता रहे हैं कि किस तरह सिर्फ 2 सालों में आपने इतनी अच्छी तरीके से प्रगति की है, और इसी तरह आप एक जो बोलते हैं कि पूर्ण निष्ठा के साथ आप काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, और उसी से हमारे जो श्रोता हमें सुन रहे हैं वो प्रेरणा भी ले रहे होंगे। वैसे जैसे आपने बताया कि द जर्नलिस्ट जो आपका चैनल है वो सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और इंस्टाग्राम पर अगर हम बात करें तो 1 लाख फॉलोअर्स से ज़्यादा द जर्नलिस्ट के हैं। तो ये जो सिलसिला है, जो खबरों का सिलसिला है, जो भी आप पोस्ट करते हैं, रील्स डालते हैं, वो कहीं ना कहीं हर रील या हर दूसरी रील वायरल होती है, ये हम सभी जानते हैं। उसकी सोर्स ऑफ क्रेडिबिलिटी और क्रिएटिविटी दोनों चीज़ें, मतलब कि आपकी खबर में रचनात्मकता भी हो और आपकी खबर क्रेडिबल भी हो, विश्वसनीय सोर्स हो, तो वो आप कैसे मेंटेन करके चलते हैं हर आपकी न्यूज़ स्टोरी में?
2: देखिए, द जर्नलिस्ट के 2 साल सब देखते हैं, तो उससे पहले के पिछले 6 साल थोड़ा और देखना चाहिए तो समझ में आएगा हमें क्रेडिबिलिटी क्या है। ऐसा नहीं है कि हम अचानक से आ गए, अचानक से दिख जरूर सकते हैं, लेकिन अचानक से आने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए हमने जब भोजशाला हमारे लिए सबसे बड़ा मूवमेंट रहा, मतलब किसी भी न्यूज चैनल के लिए एक मूवमेंट कुछ रहता है,
1: जी
2: तो भोजशाला हमने 2 साल पहले यह कहा था कि जब जर्नलिस्ट शुरू कर रहे थे कि भोजशाला 2026 में इस देश में ट्रेंडिंग में होगी, जब हम स्टार्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमने भोजशाला को जानते थे, भोजशाला का इतिहास जानते थे, हम जानते थे 2003 में शुक्रवार को वसंत पंचमी आई तब क्या हुई था, तो हमें ध्यान था कि 2026 में जो वसंत पंचमी आएगी तब क्या होगा, और इसलिए हम लोग घोषित कर कर ये आए कि, तो इसलिए मैं जो आप जो क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो किसी चीज को जानते हैं तो हमको ये पता है कि जो मीडिया में दिख रहा है उसके पीछे भी क्या है, तो ये अनुभव भी है, और ऐसे सारे हमारे सोर्स भी होते हैं, ये पत्रकारिता में वो सारे सोर्स हैं। दूसरा, जो न्यूट्रल रहने की बात आपने की, तो निष्पक्ष रहना ये तो सही ही है, रहना ही चाहिए, लेकिन पत्रकारिता में निष्पक्ष रहते रहते कई बार ऐसा भी होता है कि हम अवेलेबल बेस्ट को छोड़ देते हैं, तो अवेलेबल बेस्ट की जगह हम अवेलेबल वर्स्ट का साथ अपने आप दे सकते हैं। जैसे पहलगाम में हमला हुआ भारतीय नागरिकों पर, तो आपको किसी एक की तरफ ही जाना पड़ेगा कि वो आतंकी हमला है, तो कोई एक तो गलत होना ही है, इसलिए कई बार हमारी इच्छा ना होते हुए भी कोई एक गलत हो जाता है, उसमें हमारा उनके लिए इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन किसी एक पक्ष का है। जैसे भोजशाला के बारे में हम लोगों पर सवाल उठाया गया कि हम हिंदुओं के पक्ष में आ गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमने केवल फैक्ट्स पर बात की, लेकिन वो फैक्ट्स ही वहां जा रहे थे, जैसे हाईकोर्ट ने कहा कि बात ही वहां जा रही है तो अब हम क्या कर सकते हैं, एएसआई की रिपोर्ट ही वहां जा रही है, लेकिन हम लोग ये पक्का करके चल रहे हैं कि हमारा इंटेंशन कभी किसी के खिलाफ नहीं होगा, वो किसी घटना में कोई गलत हो सकता है तो वो गलत ही दिखेगा, फिर हम निष्पक्ष हम भी नहीं रह सकते, हमारा पक्ष सत्य का पक्ष है।
0: बिल्कुल, जैसा कि अमन जी आपने कहा, मीडिया का काम ही निष्पक्ष रहना है, और उसी रूप से अगर वो काम करे तो मुझे लगता है कि जनता तक हम सही मैसेज पहुंचा सकते हैं। और इसी से मुझे एक बात याद आती है, जैसे कि द जर्नलिस्ट की सोशल प्रेजेंस जो है हम लोग देख रहे हैं एमपी में खासकर बहुत बढ़ रही है, और युवा लोग जो है खासकर ट्रैक्शन बहुत गेन कर रहे हैं उससे, तो आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी न्यूज़ को कवर करना है और किस तरीके से कवर करना है ताकि वो हर एज ग्रुप को कवर कर सके?
2: नहीं, देखिए, सभी प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी जगह है, इंस्टा की अपनी जगह है, एक्स पर एक अलग प्रकार की ऑडियंस है, फेसबुक पर अपने प्रकार की ऑडियंस है, तो हम ऑडियंस के हिसाब से भी ऐसा कंटेंट बनाते हैं। सामान्यतः इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग पर चलता है, कभी कुछ ट्रेंडिंग होता है, 5 दिन 7 दिन चलता है, तो हम वैसा कंटेंट या उस फ्रेम में कंटेंट को चलाना, हम जो बात कहना चाह रहे हैं उसी बात को उस तरीके से कहना जो ट्रेंडिंग में कुछ चल रहा हो, तो वैसे हम लोग करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं मानता, अभी संसाधन बढ़ने हैं, शक्ति बढ़नी है, लोग बढ़ने हैं, लेकिन हमारा ट्रैक सही है, हमारी दिशा ठीक है, इसलिए हम जो कवर कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह कि हम बहुत कवर करें, मतलब कंटेंट का एक्सप्लोजन लाएं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते, जितना हो पा रहा है उसको ठीक से करें, और इसी कारण कि आज 50 मिलियन 60 मिलियन लोग आपको महीने भर में देख लेते हैं बिना किसी पैसे लगाए हुए प्रमोशन के, इसका एकमात्र कारण है कि आपकी क्रेडिबिलिटी मेंटेन है, तो हमको मतलब फ्यूचर की बहुत सारी प्लानिंग रहती है, उसको करते हुए अभी जितना कर सकते उतनी शक्ति के साथ हम लोग कर रहे हैं।
1: ये आपने बिल्कुल ठीक कहा अमन जी, और ये बहुत अच्छी बात है कि ये इस तरह की कि आप छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं और छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह जब आपने द जर्नलिस्ट चैनल शुरू किया होगा, तो जाहिर सी बात है कि कई सारी चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ा होगा। तो अगर कोई युवा स्टार्टअप कर रहा है, कोई इस फील्ड में आगे बढ़ रहा है, तो किस तरह की गाइडेंस आपसे ले सकता है, आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे?
2: एक तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं इसके योग्य हूँ कि किसी को गाइडेंस दूँ। दूसरी बात कि केवल बने रहना, मतलब नियमित चलने से भी काम हो जाते हैं। सबसे बड़ी हार यह है कि रुक जाना, अवरोधों को देखकर, बाधाओं को देखकर रुक जाना, यही सबसे बड़ी समस्या है। मतलब कोई कभी किसी का एक ट्रेक नहीं होता है कि आप ऐसे सफलता पाएंगे, लेकिन कुछ बातें जो हमारे यहाँ बताई जाती है कि जैसे धैर्य, सातत्य, समर्पण, तो पेशेंस चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए और उसके लिए डेडिकेशन चाहिए। अगर ये तीन काम लगातार आप करते रहे और ये ध्यान करके कि किसी भी कार्य के लिए 3-4 साल, 5 साल खपना पड़ेगा और आपको जो अपयश मिले, निंदा मिले, इनसे परे होकर ये सब करना पड़ेगा, तो भी करना ही चाहिए। और हम लोगों ने कुछ प्लान किया, किसी भी काम को करने के लिए कम से कम पंचवर्षीय योजना तो बनानी चाहिए। कोई भी काम 1 दिन 2 दिन में नहीं होता, कुछ महीने साल में भी नहीं होता, मिनिमम 5 साल, जिसे हमारे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है, वो तो करना ही चाहिए। तो हम लोगों ने जब द जर्नलिस्ट शुरू किया तो हम लोगों ने कुछ प्लान किए कि कुछ बड़े कंटेंट जब तक हमारे पास नहीं आएंगे इन 5 सालों में, तो हम नहीं जा सकते बड़े। तो हम लोगों ने सोचा मध्य प्रदेश को कवर करेंगे, तो हम लोगों की जिन चीज़ों पर अच्छी पकड़ है उनमें से हमारे लिए धार था, जो आप सभी ने विषय देखा और हम लोगों को सच में हम उसमें बहुत आगे बढ़े। हम लोगों ने जो दो चीज़ें और सोची उनमें से एक है उज्जैन का सिंहस्थ। हम लोगों ने जब इसे 2024-25 में इस पर सोचा होगा, तब हम लोगों ने सोचा कि सिंहस्थ आएगा 2028 में, उसी समय मध्य प्रदेश में इलेक्शन भी आएंगे, तो आप बहुत नीचे तक जा सकते हो और पूरा देश इन चीजों को देखना चाहता है। तो हम लोगों ने ऐसी पंचवर्षीय योजना बनाई है, वो पंचवर्षीय योजना समय के साथ चेंज होती है। हमें लग रहा है कि अब उसमें कुछ चेंज किया जा सकते हैं, तो हम लोग उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ महाभारत का एक प्रसंग है कि भीम जब युद्ध पूरा आसन्न हो गया, सब रणभूमि में खड़े थे, तो भीम अर्जुन के रथ के पास आते हैं और कृष्ण जी से पूछते हैं कि आप कहते हो कि सत्य की विजय होती है, सत्य की विजय होती है, मान लिया, लेकिन सत्य की ही विजय होती है, पर सत्य प्रताड़ित कितना हुआ, हम लोगों के साथ लाक्षाग्रह हुआ, वनवास हुआ, पत्नी के साथ कितना कुछ हुआ, फिर हम लोगों को खांडव प्रस्थ मिला, और आज भी जीतेंगे इसका क्या, मतलब कैसे जीतेंगे, मतलब वो युद्ध के मैदान में पूछ रहे पहले दिन। तो वह कहते हैं कि सुमंत्रिते, सुविक्रांते, सुनियोजिते, सुक्रते, ये महाभारत का एक श्लोक है। अच्छे से विचार करके सुविक्रांते, किसी भी कार्य के लिए, ये केवल युद्ध के लिए नहीं है, जीवन में भी किसी भी कार्य के लिए अच्छे से सोच कर सुविक्रांते, फिर सुमंत्रिते, उसके बारे में उसके जानने वाले लोगों से, अपने लोगों से, करीबी लोगों से उसके बारे में अच्छे से मंत्रणा करके, चर्चा करके, फिर सुनियोजिते, उसका अच्छे से नियोजन करके, उसके बारे में कहाँ किस व्यक्ति को लगाना है, अगले कुछ समय में क्या करना है, ये सारी योजनाएं बनाकर, और फिर सुकृते, फिर उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करना। ये 4 स्टेप अगर हो जाती, मतलब हम बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन अगर ये 4 स्टेप हो गई हमारे जीवन में, तो हमारा कोई भी कार्य, छोटे से छोटा कार्य, मतलब हम लोगों को मार्केट से कुछ सामान खरीदना है तो भी ये 4 चीजें करना पड़ेगी, और जीवन में कुछ बड़ा करना है तो भी ये 4 चीजें करनी पड़ेगी। भगवान कृष्ण पहले ही कह चुके, युधिष्ठिर पहले ही कह चुके, तो यही करना है बस।
1: क्या बात है, बहुत ही अच्छी तरीके से, अच्छे उदाहरण के साथ, हमारे पौराणिक ग्रंथों के माध्यम से आपने ये जो बात हमें समझाई है, वो वाकई हमारे जो लिसनर्स हैं ईरा, उन्हें काफ़ी पसंद आ रही होगी। जो भी युवा आज बढ़ना चाह रहे हैं आगे और अपना नया स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, हम देखते हैं कि कई लोग आज पॉडकास्ट शुरू कर चुके हैं, रील्स बना रहे हैं, इंफॉर्मेटिव, एंटरटेनिंग हर तरीके की। तो उन्हें आप ऐसी क्या दो तीन चीजें सजेस्ट करना चाहेंगे जो आपने एक्सपीरियंस की और आपको लगता है कि सबको जानना चाहिए और वैसे आगे बढ़ना चाहिए?
2: सबसे पहला तो इंस्टाग्राम की रील से प्रभावित होकर कोई स्टार्टअप शुरू ना करें, थोड़ा लंबा समय। और देखिए, हम लोग जो कार्य करते हैं, मतलब मैंने भी पत्रकारिता कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, कभी नहीं लगा कि संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आनंद ही इतना आता है, रस इतना आता है। कभी कभी सोचते हैं ये खत्म हो गया और सब कुछ एक वे में चलने लगा तो हम करेंगे क्या, मतलब आनंद इसका एक नया टास्क क्या लेना है। तो ये जो बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी और इसके चक्कर में, वो ये कंटिन्यूटी चाहिए। तो मतलब मैं बहुत कुछ क्या बताऊं युवाओं को, युवा कर भी बहुत अच्छा रहा है, मतलब हम लोगों को कई बार युवाओं पर भरोसा कम हो जाता है, तो उन पर भरोसा भी कीजिए, वो लोग कर भी रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं और करेंगे ही। और दूसरा ये है कि निंदा में भी और स्तुति में भी दोनों में एक जैसा रहना, मतलब बहुत ज्यादा यश मिल रहा है बहुत ज्यादा अपयश मिल रहा है, तो ना किसी चीज से डिमोटिव होना है ना किसी चीज का अहंकार करना, दोनों में संभाव रहना चाहिए।

0: बिल्कुल। और इसी से मुझे अर्जुन और कृष्ण भगवान का एक संवाद का एक लाइन याद आती है, ये समय भी गुजर जाएगा तो अगर अच्छा है तो वो वक्त भी गुजर जाएगा, और बुरा है तो वो तो गुजरना ही है। अमन जी, आपसे एक लास्ट प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी इसके पहले कि हम हमारी बातचीत खत्म करें। द जर्नलिस्ट जो है अभी इंदौर और मध्य प्रदेश में पीक हम लोग मान सकते हैं डिजिटल मीडिया के फॉर्म में चैनल है, और मैं ये जानना चाहूंगी आगे के आने वाले 5 सालों में, यानी और फ्यूचर में हम कहें तो आपकी क्या योजनाएं रहेंगी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं डिजिटल मीडिया जो है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और रोज कुछ नवाचार हो रहा है, रोज कुछ इनोवेशन हो रहा है इस फील्ड में। तो द जर्नलिस्ट की क्या प्लानिंग है इसको लेकर?
1: आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सुबह से हम लोग इसके लिए मीटिंग कर भी रहे हैं। मतलब हम लोग लग रहा है कि अब थोड़े स्टेबल हो गए हैं तो कुछ करना चाहिए। हमारी पंचवर्षीय योजना सफल हो रही है, उससे आगे बढ़ रही है। तो एक तो फाइनेंस जो विषय रहता है, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी मेंटेन करते हुए हम लोगों ने पूरा ये पक्का किया है कि अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम लोगों कुछ प्रोग्राम्स पर, हम लोग कुछ इवेंट्स पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं ताकि इवेंट्स ब्रांड वैल्यू बनाते हैं। तो द
0: बिल्कुल।
1: जर्नलिस्ट को अगर ब्रांड वैल्यू बनना है तो केवल इन्फ्लुएंसर नहीं है, हम लोग कुछ और हैं। हम लोग मतलब पत्रकार हैं, कुछ और का अर्थ पत्रकार हैं। और इस समाज का नैरेटिव अगर फिक्स करना है, मतलब नैरेटिव फिक्स करना है, इट मीन्स हमारा कोई अलग से कोई विचार नहीं है, जो सही है वो जाना चाहिए जनता के बीच में, उस वो जाए, इसलिए सबको लगे कि ये एक क्रेडिबल मीडिया हाउस है। उसके लिए कुछ इवेंट्स हम लोग प्लान कर रहे हैं अगले 2 सालों के लिए। हम लोगों के लिए सिंहस्थ ये एक बड़ा काम है, तो हम लोग उसके लिए काम करेंगे। उससे पहले अगले साल कुछ नगरीय निकायों के और देश भर की ग्राम पंचायतों के इलेक्शन है, पूरे राज्य की ग्राम पंचायतों के इलेक्शन है। इसलिए आप गांवों तक जा सकते हैं, बहुत नीचे तक जा सकते हैं। इसलिए उसके लिए एक बड़ा सेटअप खड़ा करना, लोग खड़े करना, इन सब के लिए हम लोग लगातार कर रहे हैं। और मुझे लगता है जैसा हो रहा है और ईश्वरी इच्छा रही, ईश्वरी कृपा रही, तो अगले 4-5 वर्षों में मध्य प्रदेश का हर जन और देश के भी किसी, अगर दिल्ली से, मतलब इस बार हुआ भी है कि भोजशाला के विषय में आज तक को कुछ जानकारी चाहिए या दूरदर्शन को कुछ चाहिए, तो वह द जर्नलिस्ट के पत्रकार से पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सत्य कौन बताएगा। तो हम उसी सत्य की ओर, कि मध्य प्रदेश के बारे में अगर किसी को भी जानना हो तो उसके लिए एक जगह हो सकती है, उसके लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, केवल न्यूज चैनल नहीं, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी द जर्नलिस्ट हो सकता है। ये हमारी तैयारी है। मेरा बहुत कुछ लंबा सोचने का कभी सामर्थ्य रहा नहीं, यही है कि कुछ करते जाओ, उसके आगे कुछ पता चलता है। कई बार ये लगता है कि बहुत दूर का रास्ता दिख नहीं रहा, तो जहां तक का दिख रहा है वहां तक चल लेते हैं, उसके बाद पता चलता है कि हाँ आगे का भी दिख रहा है, क्योंकि आगे कोहरा रहता है। तो जहां जहां कोहरे से आगे बढ़ते जाते हैं रास्ता साफ होता जाता है। तो मैं बहुत लंबा नहीं सोचता, इसलिए बहुत अच्छा बोल भी नहीं पाता हूँ, इसलिए बहुत अच्छी मोटिवेशन स्पीकर भी नहीं हूँ, लेकिन जितना है उतना यही है।

0: तो साथियों, ये थी अमन व्यास जी की सफलता की कहानी और हमें पूरी उम्मीद है कि ये आप सभी को पसंद आई होगी। खासकर हमारे युवा श्रोताओं को इस कहानी से प्रेरणा मिली होगी। अमन जी निरंतर पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं वो इसी तरह निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें।
1: बिल्कुल। वैसे साथियों, आज के दिन के बारे में यदि हम बात करें तो आज राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाया जाता है।
0: जी हाँ साथियों, ये दिवस हर वर्ष भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है।
1: इस दिन का उद्देश्य लोगों को आतंकवाद और हिंसा के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और समाज में शांति, एकता और सद्भाव का संदेश फैलाना है।
0: साथियों, आतंकवाद केवल किसी एक व्यक्ति या देश को नहीं बल्कि पूरी मानवता को नुकसान पहुंचाता है। ये डर, असुरक्षा और अशांति का माहौल पैदा करता है।
1: इसलिए जरूरी है कि हम सभी मिलकर प्रेम, भाईचारे और मानवता की भावना को मजबूत करें।
0: राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हमें ये भी सिखाता है कि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा नहीं बल्कि संवाद और समझदारी होती है।
1: और युवाओं की इसमें सबसे बड़ी भूमिका भी है। अगर युवा सही दिशा में आगे बढ़े तो समाज को हिंसा और बुरी आदतों से दूर रख सकता है।
0: तो आइए आज हम सभी ये संकल्प लें कि हम शांति, एकता और देश की अखंडता बनाए रखने में अपना योगदान देंगे
1: और साथ ही आतंकवाद जैसी बुराइयों के खिलाफ

रविवार 22 मई सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सुनिए आकाशवाणी इंदौर और विविध भारती इंदौर पर आकाशवाणी इंदौर के स्थापना दिवस पर विशेष प्रोग्राम आकाशवाणी इंदौर मालवा हाउस अतीत की झरोखों से। सुनना ना भूले आकाशवाणी इंदौर के स्थापना दिवस पर ये विशेष प्रोग्राम रविवार 22 मई सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आकाशवाणी इंदौर और विविध भारती इंदौर पर एक साथ।

0: छुट्टियों में, चूंकि गर्मी इतनी हो रही है तो मुझे तो पहाड़ों वाली जगह पर जाना पसंद है, कोई ठंडी जगह पर जाना पसंद है, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड है, वहाँ के कोई भी शहर में, कहीं भी, कोई भी प्लेस पे आप मुझे लेके चले जाएं, वो हमेशा अच्छी ही लगती है, सीनिक ही लगती है ना?
1: बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा भी है कि पहाड़ों पर जाने से ना सब ठीक हो जाता है, ऐसा लगता है लोगों को.
0: और मुझे ऐसा लगता है कि ये सच भी है अनुभूति, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ पर्सनली भी एक्सपीरियंस की है. तुम्हें क्या लगता है?
1: बिल्कुल, तुम्हें पता है लास्ट गर्मी की छुट्टियों में मैं कश्मीर गई थी. वहाँ की खूबसूरत वादियाँ, इतनी सुंदर, इतना प्यारा मौसम, इतना सुहाना मौसम, मतलब इतनी सारी चीज़ें थी वहाँ एक्सप्लोर करने के लिए. मतलब तुम मानोगी नहीं कि अभी तक भी कश्मीर के जो व्यू दृश्य हैं, जो व्यूज़ हैं, वो मेरी आँखों में, मन में, दिलों में बस चुके हैं.
0: मैं बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ तुमसे, और शायद इसीलिए ना कश्मीर को हेवन ऑन अर्थ भी कहा जाता है. डल लेक ले लो, वहाँ की डल लेक में राइड करना, वहाँ के नज़ारे देखना, वो ही एक इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस है ना. और बर्फ़ तो हर जगह होती ही है, हम घिरे हुए होते हैं बर्फ़ से. और अगर अनुभूति हिमाचल की भी बात करें तो डलहौजी, धर्मशाला जैसे जो सिटीज़ हैं जहाँ पर हम लोग जा सकते हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहता है. वहाँ पर तो तुम्हें पता है कई सारे मार्केट्स भी हैं, मॉल रोड है मनाली में, या डलहौजी में भी मॉल रोड है, वहाँ पर हम घूमने जा सकते हैं. और ये जो प्लेसेस शिफ्ट करने का जो सफ़र होता है ना, जैसे अगर हम डलहौजी से धर्मशाला जा रहे हैं, या जम्मू से कश्मीर या श्रीनगर ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो जो रास्ता रहता है ना, वो ही इतना ब्यूटीफुल रहता है कि वो ही हमारा एक सफ़र बन जाता है.
1: बिल्कुल, और जैसे तुमने बताया कि मनाली, शिमला में जो मॉल रोड होती हैं, वो कई सारी वहाँ की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उससे भी हमारा परिचय कराती हैं. तो गर्मी की छुट्टियों के लिए ये सारी जो हिल स्टेशन की लोकेशंस हैं, ये काफ़ी अच्छी हैं. जैसे इसके अलावा भी अगर हम हिमाचल के अलावा भी बात करें
0: तो राजस्थान का माउंट आबू, वो
1: हाँ
0: भी तो इतना अच्छा विकल्प है ना घूमने जाने के लिए.
1: बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम नॉर्थ साइड में ना जाना चाहें तो हम यहाँ राजस्थान भी जा सकते हैं,
0: पंचमढ़ी जा सकते हैं हम लोग. वहाँ भी बहुत अच्छा ठंड में, गर्मी में ठंडक भरा माहौल रहता है.
1: बिल्कुल,
0: वैसे
1: बिल्कुल.
0: अनुभूति, मुझे तो ऐसा लगता है कि गर्मी की छुट्टियों में हम कहीं जाए ना जाए, लेकिन नानी के घर भी हम लोग अगर हम चले जाते हैं ना, हमारी नानी के घर, कोई बुआ के घर जा रहा होता है, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा और मेमोरेबल खास एक्सपीरियंस बन जाता है. सारे कजिन्स हमारे साथ होते हैं, और सबके साथ खेलना, पुरानी यादों को ताज़ा करना, नई यादें बनाना, इतनी सारी.
1: सही बात है. तो ये तो हमारी गर्मी की छुट्टियों की प्लानिंग हो गई. वैसे दोस्तों, आप इन गर्मी की छुट्टियों में क्या कर रहे हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं, कौन से ऐसी घूमने की जगहों के सजेशंस हैं जो आप हमें देना चाहते हैं, ये हमें ज़रूर दीजिए. फिलहाल आइए सुनते हैं अगला गीत.

0: प्रश्नों के उत्तर बताने का आज का पहला प्रश्न था, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, जिसका उत्तर है सामवेद।
1: और साथियों, कार्यक्रम का दूसरा प्रश्न था, हनुमान जी के कितने भाई हैं, जिसका उत्तर है हनुमान जी के 5 छोटे भाई हैं।
0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत अनुभूति
1: और इरा को।
0: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। यह आकाशवाणी इंदौर है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

आकाशवाणी इंदौर से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं दिलजीत सुखविंदर और साथियों का गाया गुड न्यूज़ फिल्म का गीत, गीत रचना कुमार की।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
3: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
3: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग NCERT सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
2: उमंग NCERT के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
3: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
2: जी,
3: अगला संदेश हमें मिला है
2: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश, कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
2: NCERT के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
3: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
2: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओ, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में। और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
2: श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
3: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
2: जी,
3: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
2: जी,
3: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
2: जी,
3: तो शुरू करें?
2: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
3: जी
2: श्रोताओ, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
3: जी श्रोताओ, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
2: जी,
3: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
2: जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
3: जी, शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
2: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
3: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
2: श्रोताओ, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
3: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: जी,
3: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
2: जी,
3: अद्भुत बात ये है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
2: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
3: श्रोताओ, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊँचे नहीं होते।
2: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो

0: आसपास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
1: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोलावन के बारे में कुछ और बातें। शोलावन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
0: इसीलिए शोलावनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
1: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
0: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृ वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृवृक्ष किसे कहते हैं।
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम।

0: 5559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम।

0: इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?

0: बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
4: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
5: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
6: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी। फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
5: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
6: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
5: हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़, इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
6: बिल्कुल सही कहा अटकू, इसे काटो।
7: भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
6: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल चल।
4: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
8: रुको रुको रुको रुको, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
5: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
6: हाँ अटकू चल आगे चलते हैं।
4: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
6: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
5: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
4: वो उसे काटने लगे।
7: काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
5: अच्छा ठीक है
6: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
4: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
8: ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे, अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ ना होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें।
6: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
4: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया फल सब्जी

0: सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
1: अरे वाह, अटकू मटकू।
0: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
2: पेड़ हमारे
3: दोस्त हैं।
2: जीवन में हरियाली लाओ,
3: पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ।
4: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: श्रोताओं, अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, पलासी शर्मा के स्वर में आप सुनिए सुगम संगीत। आज हम आपको सुनवाएंगे इनकी गाई चंद गजलें। पहले सुनिए बशीर बद्र का यह कलाम।

आकाशवाणी इंदौर से श्रोताओं, पलासी शर्मा के स्वर में आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। लीजिए अब सुनिए बहादुर शाह जफर का यह कलाम।

श्रोताओं, पलासी शर्मा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लोक संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं किशनलाल मधुकर और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत।

0: लोक संगीत में श्रोताओं सुन रहे हैं आप किशन लाल मधुकर और साथियों के गायन निमाड़ी लोकगीत। लीजिए प्रस्तुत है ये अगली लोक रचना।
1: राम का सुमिरण कर।

श्रोताओं, लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं किशन लाल मधुकर और साथियों के गायन निमाड़ी लोकगीत। लीजिए सुनिए ये अगली लोक रचना।

0: श्रोताओं, लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे किशनलाल मधुकर और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
0: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की पांच देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कुआन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रों के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकरोधी कार्यसमूह की बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आतंकियों को पनाह देने और समर्थन करने वालों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर बल दिया। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दिया गया। ये सम्मेलन 28 से 31 मई तक नई दिल्ली में होना था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। गुजरात पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: यह आकाशवाणी इंदौर है।

0: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको आज के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा बता दें। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। सुर्खियों में ये कार्यक्रम रात 8 बजे हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम पेश होगा रात 8:15 से। चित्रगीत का आनंद लीजिएगा रात 9:15 पर। और पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन आप सुनेंगे रात 8:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर आज हम आपको सुनवाएंगे शशिकांत मनोहर तांबे का ख्याल गायन, राग होगा अब होगी। श्रोताओं, ये थे आज के कार्यक्रम। अब कल के कार्यक्रम आपको बता दें, भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन आप सुनेंगे 6:05 पर। चिंतन होगा कल 6:30 पर। श्री रामचरित मानस गान आप सुनेंगे कल 6:40 पर। और श्रोताओं, आकाशवाणी प्रसारण के गौरवमयी 90 वर्ष के सफर और आकाशवाणी इंदौर का 71वां स्थापना दिवस पर सजीव फोन इन कार्यक्रम आप सुनेंगे कल 10:10 से। तो श्रोताओं, ये थे हमारे आज के कार्यक्रम की जानकारी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पूरी कर लौटे, भारत को मिली 40 अरब डॉलर निवेश की सौगात। देश में पेट्रोल डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार, 3 दिन में 1,34,00,000 सिलेंडर की डिलीवरी। भोपाल में कल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्री समिट का आगाज, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री करेंगे शुभारंभ। और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने की कई विभागों की समीक्षा, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू करने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पूरी कर आज दिल्ली लौट आए हैं। यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यह 5 दिवसीय यात्रा भारत के लिए बड़ी कामयाबी लेकर आई है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर, एआई, ग्रीन हाइड्रोजन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों की 50 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें करीब 40 अरब डॉलर के नए निवेश की प्रतिबद्धताएं मिली हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी वीरभूमि पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा कि राजीव गांधी का दूरदर्शी नेतृत्व और देश के प्रति समर्पण पार्टी को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं और सभी रिफाइनरी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 3 दिनों में 1,34,00,000 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी की जा चुकी है।
4: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
3: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज मंत्रालय में पशुपालन, स्कूल शिक्षा, परिवहन विभाग, जनजातीय कार्य और सहकारिता विभाग की एक एक कर समीक्षा बैठक ली। डॉ यादव ने कृषि, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के निर्देश दिए। वहीं परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना शुरू करने के निर्देश दिए गए। इस योजना के पहले चरण में 1,164 मार्गों पर 5,206 बसें चलाई जाएंगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड भारत सरकार के राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया है। बोर्ड में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही सीआईआई, फिक्की जैसे प्रमुख व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित और फैक्ट्री मालिक मुकेश विज को चीन से लौटते ही दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया है। बीते 14 मई को देवास के टोककला इलाके में हुए इस भीषण ब्लास्ट में 6 मजदूरों की मौत हो गई थी और 20 से ज्यादा गंभीर रूप से झुलस गए थे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
5: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
3: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की जल स्रोत पूजन एवं गंगा कलश यात्रा के पोस्टर का आज विमोचन किया। ये यात्रा 25 मई से प्रदेश के सभी जिलों में निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण को जन भागीदारी का अभियान बताते हुए लोगों से जल स्रोतों की रक्षा में आगे आने की अपील की है।
6: जल संरक्षण को लेकर के जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक चलने वाला है। ऐसे में गंगा दशमी के दिन पूरे प्रदेश में एक साथ सभी कुएं, बावड़ी, नहर, तालाब इत्यादि स्थानों पर श्रमदान करते हुए बड़ा अभियान लिया गया है। सभी संस्थाओं को जोड़कर सभी पंचायत, सभी नगरीय निकाय हर स्थान पर जल गंगा संवर्धन का बड़ा काम करने वाले हैं। तो इस सबसे जुड़े हुए अभियान के लिए आम जनता से भी आह्वान करता हूं कि वो सब जुड़े।
3: अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर कल भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्री समिट इवेंट का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस कार्यक्रम में वन विभाग की 20 बाइक और एक रेस्क्यू ट्रक को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कार्यक्रम में जैव विविधता संरक्षण और बिग कैट संरक्षण पर विचार विमर्श के साथ ही भारत में चीता पुनर्स्थापन अभियान पर विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कम्प्यूटर ड्रॉ के जरिए इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1000 यात्रियों का चयन किया है। ये यात्री जून से अगस्त के बीच लिपुलेख और नाथुला दर्रों के रास्ते 20 जत्थों में रवाना होंगे और हर जत्थे में 50 यात्री होंगे। नई दिल्ली में आज 11वीं ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्य समूह की बैठक में भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय के सचिव सिबी जॉर्ज ने आतंकवाद को पनाह देने वालों को जवाबदेह ठहराने और आतंकी वित्त पोषण पर अंकुश लगाने की जरूरत पर जोर दिया। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई ने ई सिगरेट तस्करों पर बड़ा शिकंजा कसा है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में एक साथ छापेमारी कर 3 लाख इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पकड़ी गई है, जिनकी कीमत 120 करोड़ रूपये बताई जा रही है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक यह सारा माल चीन से चोरी छिपे मंगवाया गया था। भारत ने साल 2019 से ही ई सिगरेट और इस तरह के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स निकोटीन उत्पादों पर पूरी तरह से पाबंदी है। इन दिनों बालाघाट की सुनीता सिहोरे की खूब चर्चा है। उनके घर में 70 तरह के देशी बीजों का अनोखा खजाना है, जो उन्होंने खुद जमा किया है। आजीविका मिशन की बीज सखी सुनीता ये बीज किसानों को मुफ्त देती हैं और ये बीज कम पानी, कम खाद में भी अच्छी पैदावार देते हैं। सुनीता जैसी महिलाओं की बदौलत रासायनिक खेती की आंधी में खो चुके देसी बीज एक बार फिर खेतों में लौट रहे हैं। अब पूरे प्रदेश में 454 बीज सखियां और 29 जिलों में 99 बीज बैंक तैयार हो चुके हैं। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। आईपीएल में अब से कुछ ही देर में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। गुजरात पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी है, जबकि चेन्नई अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए जूझ रही है। अब बात करते हैं मौसम की। नौतपा शुरू होने से पहले ही प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में आ गया है। खजुराहो में 47.4 डिग्री तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर बन गया है, जबकि राजधानी भोपाल में भी पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। गर्मी का असर इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी पड़ रहा है। वन विहार नेशनल पार्क में शेर, बाघ और तेंदुओं के लिए कूलर, पर्दे और ग्रीन नेट लगाए गए हैं। वहीं सतना, रीवा और टीकमगढ़ समेत 6 जिलों में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर लोगों को मोबाइल पर चेतावनी संदेश भेजे जा रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर और अनूपपुर में आज जनगणना 2027 कार्य के प्रचार प्रसार के लिए जनगणना प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शहडोल जिले में नाव एवं मोटरबोट में निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने पर रोक के साथ कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं। सागर नगर निगम ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 98.32 वेटेज स्कोर प्राप्त कर प्रदेश की 16 नगर निगमों में प्रथम स्थान हासिल किया है। सीहोर जिला अस्पताल में महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग ने एक कदम सुपोषण की ओर अभियान के तहत बच्चों को पोषण टोकरियां बांटी गईं। झाबुआ खनिज विभाग के अमले ने जिले में सघन जांच अभियान चलाकर अवैध रूप से खनिज ले जा रहे 5 वाहनों को जब्त किया है। छिंदवाड़ा वन वृत्त में लक्ष्य का 50% से अधिक तेंदुपत्ता संग्रहण पूरा हो चुका है और शिवपुरी जिले के ग्राम सिरसोना और टीला में फार्मर रजिस्ट्री अभियान के अंतर्गत कैंप का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पूरी कर लौटे। भारत को मिली $40 अरब निवेश की सौगात। देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार। 3 दिन में 1,34,00,000 सिलेंडर की डिलीवरी। भोपाल में कल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्री समिट का आगाज। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री करेंगे शुभारंभ। और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने की कई विभागों की समीक्षा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू करने के दिए निर्देश। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला सभी किसान भाई बहन नख आपकी बहन तुलसा की राम राम। भाई नोनी आज हम बात करांगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का बारे में, जो कि केंद्र सरकार का द्वारा चलाई जा रही एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है, जेम गरीब परिवार की महिला नख मुफ्त में LPG कनेक्शन, गैस चूल्हो न पहला भरेल सिलेंडर दे। पात्र लाभार्थी नख प्रति सिलेंडर 300 रुपया की सब्सिडी, यानी अधिकतम 12 सिलेंडर तक हर साल सीधा उनका बैंक खाता नम आई जाए। भाइनोनी इन योजना को मुख्य उद्देश्य छे ग्रामीण न वंचित परिवार की महिला न चूल्हा का धुआं से मुक्त करण न स्वच्छ ईंधन उपलब्ध करण। पात्र महिला न हर रिफिलिंग पर 300 रुपया की सब्सिडी मिले, कनेक्शन का साथ पहली बार को रिफिल सिलेंडर न गैस स्टोव बिल्कुल मुफ्त में मिले। इन योजना को लाभ लेना का लेना आवेदक की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए न वो केवल एक महिला होनी चाहिए। महिला को नाम SECC 2011 सूची या केंद्र राज्य सरकार द्वारा जो तय करेल छे BPL कार्ड यानी गरीबी रेखा को कार्ड उसकी श्रेणी में होनी चाहिए। घर में पहले से कोई भी LPG गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। बहनोनी इन योजना को लाभ लेना का लेना आवश्यक दस्तावेज न आधार कार्ड जेम पहचान न पता को प्रमाण पत्र का रूप में होना चाहिए, राशन कार्ड या राज्य सरकार द्वारा जारी करेल परिवार की संरचना को दस्तावेज भी होना चाहिए। सब्सिडी प्राप्त करने का लेना बैंकों को खातों नंबर न IFC कोड हमका देना पड़ेगा न साथ पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेगा। आवा आवेदन कसो करा तो भाई बहनोनी उज्ज्वला योजना को आवेदन हम ऑफलाइन या ऑनलाइन दो ही प्रकार से करी सकान। ऑफलाइन आवेदन का लेना अपना नजदीक की LPG गैस एजेंसी का कार्यालय में जावा न उज्ज्वला योजना को आवेदन पत्र भरी न आवश्यक दस्तावेज वहां पर जमा करी देवा, या फिर ऑनलाइन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ऑफिशियल वेबसाइट या माय स्कीम पोर्टल का माध्यम से भी हम ऑनलाइन आवेदन का लेना फार्म डाउनलोड करी सकान या अपना पास का कॉमन सर्विस सेंटर की मदद भी हम ली सकान। तो भाई बहनोनी कभी अभी तक भी आपने उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं लियो हो तो तुरंत अपना पास की LPG एजेंसी में जावा न वहाँ आवेदन दई न इन योजना को लाभ लेवा। न भाई बहनोनी आवश्यक संदेश

0: भैनोनी अभी हमने शारदा पगारे को गायल ये निमाड़ी लोकगीत सुनियो न अब अपना कार्यक्रम में सुना जे एक भेंटवार्ता। भेंटवार्ता को विषय छे जैव संवर्धित किस्मों की उपयोगिता न वर्तमान कृषि उत्पादन। इना विषय पर हमका जानकारी दी रहे डॉक्टर डी के वर्मा, जिनका से बातचीत करी अपनी बहन संध्या कोठारी न। तो सुना जी नी भेंटवार्ता।
1: किसान भाइयों, गेहूं की खेती हम करन, ओमे भी कई किस्म न होज, कई प्रजाति का हम बोवान, कोई 90 दिन का हो, कोई 60 दिन का हो, और कोई कोई में तो बहुत सारो पोषण रज, ऐसी कई तरह की किस्म छे। और एक ही जानकारी देना का लेना आज हमारे चौपाल पायल छे डॉक्टर दिलीप कुमार वर्मा, जो कि प्रधान वैज्ञानिक गेहूं अनुसंधान केंद्र इंदौर से छे। डॉक्टर साहब राम राम।
2: राम राम।
1: डॉक्टर साहब, आपने जो विषय लियो छे कि हम जैव संवर्धित किस्म को उपयोगिता, तो यो है का यो बताओ, पहले तो यो प्रश्न मारो।
2: सबसे पहले है कि हम लोग पहले उत्पादन की ओर ध्यान देते थे।
1: अच्छा।
2: जो कि कम उत्पादन के समय में सहायता होता था और किसान अधिक उत्पादन ले पाते थे।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन यह भी पाया गया, खास करके 60 एवं 70 के दशक में, हम लोग कुपोषित हो रहे हैं।
1: बिल्कुल।
2: कुपोषण हो रहा है, हमारे बच्चे, उनकी मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो रही है। तब जो वर्ल्ड बैंक रहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रहा, उन्होंने स्टडी करके पाया कि भाई आप यदि किसानों को देते हैं तो जैव संबंधित किस्में दें। जैव संवर्धित किस्मों में उसमें आयरन भी होगा, जिंक भी होगा, बीटा कैरेटीन भी होगा, तो इसकी गोली जो अलग से खानी पड़ रही है
1: जी जी
2: किसान भाइयों या उनके बच्चों को या जनता को,
1: हाँ।
2: वो उससे वो बच पाए और आराम से स्वस्थता से उनकी बढ़ पाए।
1: अच्छा, तो खास करने को मतलब यो छे कि जैव संवर्धित किस्म जो छे वह पूर्ण पोषित छे, कुपोषण से बचाने वाली, और ओकाम सारी जो हमका जो चाहिए शरीर में,
2: हाँ।
1: वो काम अपन का मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, एक काम कहाँ कहाँ की किस्म हो?
2: यहाँ पर जो भारत का क्षेत्रीय केंद्र इंदौर में अवस्थित है
1: जी,
2: उसका मुख्य उद्देश्य रहा गेहूं की भिन्न भिन्न किस्मों का इजाद करना।
1: बिल्कुल।
2: और उसमें पहले जो सोच थी,
1: हाँ,
2: कि हमें यहाँ जो कठिया गेहूं थी एकदम खत्म हो गई थी, लुप्त हो गई थी।
1: अच्छा।
2: तो 1951 में यह सोच करके इस स्थान केंद्र की स्थापना की गई कि वापस कठिया गेहूं को लाया जाए, सर्वती गेहूं की भी उत्पादकता को बढ़ाया।

0: जाए, और
1: अच्छा
0: उसमें हम लोग अभी तक 45 किस्मों को ईजाद कर चुके हैं, डेवलप
1: अच्छा
0: कर चुके हैं, विकास कर चुके हैं। तो
1: हाँ
0: वैसी स्थिति में हुआ कि जो पोषण है, कुपोषण से कैसे मिटाएं या
1: अच्छा
0: कुपोषण को दूर कैसे करें, तो उस दिशा में हमारा संस्थान 2005 से ही प्रगतिशील है और प्रयास कर रहा है।
1: अच्छा मतलब पहले तो जो अपना पास जो किस्म न थी, बहुत सारी किस्म थी और बहुत सारी,
0: के
1: पर
0: बारे में
1: ओका बाद मालूम नहीं कि किस प्रकार से हमारा शरीर में काम करेगी।
0: हाँ काम करेगी
1: अच्छा तो ओका बात फिर एक हो
0: जी
1: अपन करी राज अच्छे से कि भाई जेव जो
0: जी
1: छे जेव संबंधित गेहूं
0: हाँ जैव
1: एक
0: संबंधित
1: हाँ
0: गेहूँ
1: एक उत्पादन हमारा किसान
0: जी
1: कर। तो जैसे आपने बताया कि मुख्य जो फसल न की जो किस्म की अपन ने बात करी तो
0: जी
1: ये कौन कौन सी छे।
0: मुख्य फसल जैसे ज्वार है, बाजरा है, शकरकंद है, स्वीट पोटेटो, तो ये सब सात फसलों में जो कि मुख्य उपयोग में लाती है
1: हाँ हाँ
0: मानव के उपयोग के लिए चावल है, तो उसमें इसके जैव संबंधित किस्मों का विकास का योजना शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा।
1: अच्छा
0: तो उसके बाद गेहूं के क्षेत्र में है कि जैसे खाद्य सुरक्षा जरूरी है, साथ ही साथ लोगों की पोषण सुरक्षा भी हो, और
1: बिल्कुल
0: इसीलिए देखते होंगे कि दलिया या कोई भी चीज बच्चों को दिया जाता है,
1: हाँ मोटा
0: आंगनवाड़ी,
1: अनाज
0: हाँ
1: जो को
0: मोटा
1: अपना
0: अनाज, तो
1: प्रधानमंत्री
0: पोषण
1: जी ने
0: सुरक्षा के हेतु
1: हाँ हाँ
0: 2018 से ही जैव संबंधित किस्मों को किसानों के बीच में वितरित किया जा रहा है
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: बीजों को दिया जा रहा है, ताकि
1: अच्छा
0: उनके बच्चे भी स्वस्थ रहें और हमारी जनता जनार्दन भी स्वस्थ रहे।
1: बिल्कुल भाई किसान तो स्वस्थ रहे क्योंकि किसान का तो बहुत काम रहे, पर
0: जी
1: जब किसान जिन्हीं भी चीज को उत्पादन करे
0: जी
1: पर बेचे तो अपन नकश जनता मत जाएगा, तो भाई जनता भी स्वस्थ रहे और वो
0: जी
1: भी रहे एको ध्यान
0: जी
1: तो हमका राखनोच पड़ेगा।
0: जी
1: तो अपन जैसा जैव संबंधित किस्म न की आवश्यकता जैसे आपने बताई सही, पर आपको पूछू कि क्यों पड़ी।
0: जैव संबंधित किस्मों का इसलिए आवश्यकता पड़ा कि जब कोई भी इंसान होता है, पहले आप देखते होंगे कि यदि कोई खास न्यूट्रिएंट कम होता है, आप
1: हाँ
0: कमजोर होते हैं, तो बाह्य कारक जो रोग के हैं
1: जी
0: वो आपको ज्यादा परेशान करता है।
1: बिल्कुल
0: मान लीजिए कि आपके शरीर में जिंक की कमी है,
1: हाँ हाँ
0: आयरन की कमी है, और आपको देखिएगा सर्दी ज्यादा हो जाएगी,
1: बिल्कुल
0: थोड़ी अभी जैसे गर्मी का है तो गर्मी में आपको गर्मी ज्यादा होगा, लू का अटैक जल्दी हो जाएगा।
1: हाँ
0: इस
1: हाँ
0: सबसे बचाना जो है वह जब जैव संबंधित किस्में रहेगी, तो यदि जो डॉक्टर साहब जिंक की दवाई देंगे, आयरन की दवाई देंगे सप्लीमेंट करने के लिए कि रोग से आप निकल पाए,
1: बिल्कुल
0: उसके लिए पहले से गेहूं में यदि ये है, उस
1: अच्छा
0: तरह की किस्में हैं,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: हमारे किसान के उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा,
1: बिल्कुल
0: उनको डॉक्टरों के पास कम जाना पड़ेगा,
1: बिल्कुल
0: उनकी स्वास्थ्य अच्छा माना जाएगा,
1: डॉक्टर साहब
0: अच्छा
1: सही बात तो
0: रहेगा।
1: यह है कि सबसे पहले अपना शरीर का स्वस्थ रखा
0: हाँ
1: और पोषित चीज ने जो भी है हमारे
0: जी
1: शरीर में जिन
0: जी
1: चीज की
0: जी
1: कमी
0: जी
1: है वह
0: जी
1: अगर हम गेहूं और अनाज का द्वारा खावा तो
0: जी
1: हमारा शरीर में कमी
0: अब जैसे
1: होएगी नहीं।
0: काठिया गेहूं या मालवी गेहूं में जो है विकसित की गई है जैव संवर्धित किस्में, तो उसमें आपका HI 8737 है, जिसका प्यारा नाम पूसा अनमोल भी है।
1: अच्छा
0: दूसरा है HI 8769 है, जिसका पूसा तेजस नाम है। HI 8777 है, जिसका पूसा गेहूं 8777 है। ये तीन किस्में बहुत ही अच्छा कर रही है। विकसित तो कई किस्में हैं,
1: अच्छा
0: लेकिन
1: अच्छा
0: कई किस्मों के बीच में भी सबसे अच्छा माना जाए,
1: तो
0: जैसे
1: ये
0: कि आप
1: तीनों किस्में
0: ये तीनों किस्में हैं, और तीनों किस्में एक पर एक हैं, और हमारे ही संस्थान से के द्वारा भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों के योगदान के द्वारा तैयार की गई हैं।
1: अच्छा तो ये हमारे किसान भाइयों से हम यू कहवा कि जो आपने तीन फसल बताई इनको जो उत्पादन करा एक का बीज नक लगावा और एक ही उत्पादन ले। हाँ वो ये पूछ रही थी आपका कि जैसे हमारे किसान भाई ये तीन जाति अगर बोवे तो उनको उत्पादन अच्छा रहेगा,
0: हाँ
1: किसान के कोई नुकसान तो नहीं।
0: ये ऐसा है कि जो गेहूं के किस्मों के विकास के चरण है,
1: हाँ हाँ
0: उस चरण में ये सोचा जाता है यदि बेस वैरायटी है, आधार वैरायटी है, उसकी से यदि जो विकसित की जा रही है किस्में उसकी 15 से 20% उपज ज्यादा नहीं होगी,
1: अच्छा
0: तो उसको हम आगे भेजेंगे ही नहीं।
1: अच्छा
0: उसमें प्रथम चरण होता है स्टेशन का ट्रायल होता है,
1: हाँ हाँ।
0: उसमें जो पास कर गया 15% मार्क्स ज्यादा ला करके,
1: अच्छा।
0: उपज भी के साथ साथ पोषण वगैरह सारे,
1: हाँ।
0: मानक तत्व जानकारी के बाद, तब उसको एनआईवीटी में भेजा जाता है। एनआईवीटी मतलब राष्ट्रीय स्तर पर वो ट्रायल होता है,
1: अच्छा।
0: जो कि सोचा जाता है कि हाँ भाई इस तरह के

0: कि कुछ रोटी के लिए जो चपाती या चंदौसी सरबती गेहूं है उसमें आपकी किस्में हैं HI 1605 है, जिसे आप पूसा उजाला के नाम से जानते हैं। HI 1633 है, जिसे पूसा वाणी के रूप में जानते हैं। पूसा अहिल्या है, जिसका नंबर है HI 1634। इस तरह से और भी कई किस्में हैं, लेकिन संक्षेप में हम इतना कहेंगे कि चार आप कठिया गेहूं का हमेशा याद रखें, जैसे हनुमान चालीसा याद रखते हैं उस तरह से, और इस तरह की सरबती गेहूं में ये तीन चार किस्मों को रखिए। और भी यदि कभी केंद्र आते हैं किसान भाई, तो उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जा सकता है कि हाँ भाई ये किस्में है, इसका ऐसी बाली होती है, इसके ऐसे दाने होते हैं, इसके ये चमक होती है, जिससे कि उनको सारा चीज प्रत्यक्षंकिंग प्रमाण,
1: हाँ मतलब वो आंखों से देख ले कि इसका दाना कितना बड़ा होना है। क्योंकि गेहूं अगर मंडी में हम जाए सारा गेहूं एक जैसा दिखता है, उसकी पहचान भी हमारे किसानों को
0: किसान पहचान पाएंगे। साथ ही साथ यह भी है कि जैसे आपकी देखते हैं कि जब बुआई करते हैं तो आपको विविधता रखते हैं, विविधता के साथ साथ फसलों की किस्मों में भी विविधता होनी चाहिए।
1: अच्छा।
0: ताकि एक यदि किस्में किसी कारणवश पीड़ित हो जाती है तो हमारा अर्थव्यवस्था
1: मुश्किल में
0: चरमरा न जाए, इसीलिए हमें हमेशा गेहूं भारत से कुपोषण मिटाने के लिए और देश को समृद्ध बनाने के लिए मालवा को खास करके इस तरह के जैव संवर्धित किस्मों का उपयोग करना चाहिए।
1: अच्छा, तो हमारा किसान भाई जैसा जैव संवर्धित किस्मों को उपयोग भी करे, और एक आम लागत कम रहे कि नहीं होती रह?
0: लागत कान के हमने पहले ही बताया कि गेहूं की किस्मों का जो विकास होता है तो उसमें उसको कंट्रोल प्लॉट जो रखा जाता है, चेक प्लॉट भी रखा जाता है, उसमें भी हम वही खाद की मात्रा रखते हैं जो किसान भाई रखते हैं।
1: अच्छा,
0: जो संस्कृत रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस हम बोलते हैं।
1: अच्छा,
0: तो जितना संस्कृत पहले से किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा,
1: उतना
0: ही खाद हम उस ट्रायल वाले
1: पर भी डालेंगे। अच्छा अच्छा,
0: इससे दिक्कत क्या होगा कि हर हालत में आपको वह किस्में जो विकसित की गई हैं वह उसी अनुपात में यदि पोषक तत्व तो प्राप्त हो रहे हैं।
1: अच्छा,
0: तो वह उसका उपयोग करके उतना उससे ज्यादा उपज दे सकती है, उसे कम उपज देने की संभावना नहीं के बराबर।
1: मतलब सही बात यह है कि हमारा किसान भाई जो आप बताई रहे
0: जी,
1: जो जैव संवर्धित जो किस्म छे उनका बोगा, तो उनका कोई भी नुकसान
0: नहीं है।
1: और फायदा अपन का होना चाहिए, खावांगा तो शरीर में फायदा होगा पर किसान का कोई नुकसान नहीं
0: स्वाद
1: है,
0: स्वाद में भी कोई अंतर नहीं है।
1: अच्छा,
0: आपको यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ना दिखाया जाए तो आप नहीं पकड़ पाएंगे कि इसमें स्वाद में कोई अंतर आ गया या उपज में कोई अंतर आ गया। इसलिए जैव संबंधित किस्में एक तरह से समझा जाए कि वो सामान्य किस्में ही
1: सामान्य किस्म और अपना शरीर में
0: पोषण सुरक्षा,
1: पोषण सुरक्षा बिल्कुल कि हम अगर इनका खावांगा तो हम स्वस्थ रहवांगा। और सही बात है, भूसो खाना से तो अच्छी चीज खावा तो हमारा शरीर में लगा, क्योंकि कई किस्म ऐसी है कि जो केवल पेट भर
0: जी,
1: तो पेट भरनू एक मेन उद्देश्य नहीं है, हमारा शरीर का भी स्वस्थ रहना
0: बहुत
1: जरूरी है। तो आजकल आप देखो दिन भर सुबह से उठे पहले गोली खाओ, ओका बाद काम चले, तो भाई अगर हम खान पीना जैसा रखांगा तो जेका सी हमारा शरीर अगर स्वस्थ रहे तो हमको गोली खाना की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आप हमारी चौपाल पर आया और आपने जैव संवर्धित किस्म की उपयोगिता की का बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: किसान भाइयों। अभी हम सुनी रहा था भेंटवार्ता, जैव संवर्धित किस्मों की उपयोगिता न वर्तमान कृषि उत्पादन, जानकारी दी रहा था डॉक्टर DK वर्मा, प्रधान वैज्ञानिक कृषि अनुसंधान के संस्थान इंदौर से, निनका सी बातचीत करी थी अपनी बहन संध्या कोठारी ने। आवा अपना कार्यक्रम में सुना एक संदेश।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना KYC अपडेट कराने के लिए

0: अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: भाई इन्होंने आवाज सुना दी एक लोकगीत, देखा गाय अपना भाई संजय महाजन उनकी मंडली ना।

भाई नोनी, हम अपने खेत में जो भी फसल लगावा न, हम चाहन कि हमका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिला। तो हम एकल न अनाज वाली फसल न भी लगावा न दाल वाली फसल न भी लगावा। जो दाल वाली फसल न रहे न, उकी जड़ न की ग्रंथि न राइजोबियम नाम को एक जीवाणु रहे, जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करी न पौधा न का उपलब्ध कारण न एकासी कई लाभ भी छे कि एक जो जीवाणु खाद एकासी जो बनज उका में 8 से 20% नाइट्रोजन का स्तर में वृद्धि हुई जाए न फसल की उपज में 15 से 20% तक की वृद्धि हुई जाए। साथ ही एक में हार्मोन न विटामिन को उत्सर्जन भी करज जीवाणु की खाद जैकासी पौधा न का विकास में सहायता मिलज न एको प्रयोग करने से पौधा न का फास्फोरस अधिक मात्रा में उपयोग करज जैकासी उनकी शाखा न भी ज़्यादा बनज न हमको उत्पादन में भी वृद्धि हो। लोबिया न मटर जैसी दाल वाली जो फसल न छे न उका में पत्ती न की संख्या

न फली में लगना वाला दाना की संख्या भी बढ़ी जाए, जेकासी विटामिन जो दूसरा खनिज तत्व है ओका में भी वृद्धि हुई जाए। तो एक कारण हमको अनाज वाली फसल न का साथ साथ दाल वाली फसल न भी लगावा, जेकासी हमारी जो जीवाणु खाद की छे पूर्ति छे हो ही जाएगा और हमको हमारी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होएगा। न किशन भाई ब्रोणी अपना कार्यक्रम में अब एक सुना लोकगीत जेका कहे अपना भाई किशन लाल मधुकर न उनकी मंडली ना।

भाई नोनी, अभी हमने किशन लाल मधुकर उनकी मंडली को गायरी लोग भी सुनियो, न काल सवेरा खेती की बात में अपन सुनांगा लू से बचाव का बारे में जानकारी, न संजा की घड़ा खेती गृहस्थी में सुनांगा जीव प्रौद्योगिकी द्वारा किस्म सुधार कार्यक्रम जानकारी देगा डॉक्टर गिरिराज कुमावत ने। एका साथ हमारो आज को खेती गृहस्थी कार्यक्रम को समय भी समाप्ति रहो, तो अपनी बहन का देव आज्ञा, राम राम।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम खेती गृहस्थी। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सुर्खियों में के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्राची प्रिया। आज हम बात करेंगे प्रधान

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की 5 देशों की महत्वपूर्ण विदेश यात्रा और उसके प्रमुख निष्कर्षों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई से 20 मई तक 5 देशों की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा के प्रत्येक चरण की विस्तृत कवरेज आकाशवाणी के संवाददाताओं ने की। कार्यक्रम में हम उनकी विशेष रिपोर्ट भी आपको सुनाएंगे। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा पूरी कर दिल्ली वापस लौटे। 5 देशों की इस यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 15 मई को संयुक्त अरब अमीरात से की। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान की ओर से यूएई पर हुए हमलों की निंदा की और हॉर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित तथा निर्बाध परिवहन के महत्व पर भी जोर दिया। दुबई में प्रसार भारती के विशेष संवाददाता विनोद कुमार ने इस यात्रा को संयुक्त अरब अमीरात से कवर भी किया। आइए सुनते हैं उनकी ये विशेष रिपोर्ट।
1: इस दौरे में कई महत्वपूर्ण समझौता पर साइन किया गया। एनर्जी के मोर्चे पर इंडिया की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिसर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने एक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत इंडिया की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिसर्व में यूएई का हिस्सा बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल्स तक पहुंचा जाएगा। ये इंडिया की एनर्जी सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा और जरूरी कदम है। साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अडनोक के बीच एक लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई अरेंजमेंट भी संपन्न हुआ, जो दोनों देशों की एनर्जी साझेदारी को और मजबूत करता है। डिफेंस कॉरपोरेशन के क्षेत्र में भी एक बड़ी पेश रकम हुई। दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क साइन किया, जिसमें इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस और इंटेलिजेंस एक्सचेंज शामिल है। ये वो एरियाज हैं जो आज के दौर में दोनों देशों के लिए तेजी से स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी बनता जा रहा है। निवेश के मोर्चे पर यूएई ने इंडिया में 5 अरब US डॉलर्स की कमिटमेंट का ऐलान किया। 3 अरब डॉलर्स इमिरेट्स न्यू डेवलपमेंट बैंक से आरबीएल बैंक में आएंगे। दोनों देशों ने गुजरात की वडिनार में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने का भी एग्रीमेंट किया और साथ ही मैरीटाइम सेक्टर के लिए एक स्किल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया है। ये दोनों कदम इंडिया में रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे और देश की इंडस्ट्रियल सामर्थ्य को भी नए ऊंचाइयां देंगे। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दूसरे चरण में नेदरलैंड्स पहुंचे। ये उनकी नेदरलैंड की दूसरी यात्रा थी। नेदरलैंड्स यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग को लेकर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन की मौजूदगी में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत दोनों कंपनियां गुजरात के धोलेरा में भारत के पहले सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र के विकास में साथ मिलकर काम करेंगी। इस यात्रा के दौरान कई अन्य अहम समझौते और घोषणाएं भी हुई, जिनके दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इन उपलब्धियों पर विस्तार से जानकारी के लिए आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता सुश्रुत शर्मा की ये विशेष रिपोर्ट।
2: व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा और यूरोप में सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वर्ष 2024-25 में दोनों देशों का व्यापार 27.8 अरब डॉलर का रहा। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक है। यह यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है। हाल में संपन्न भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद इससे व्यापक भारत यूरोपीय संघ संबंधों में भी मजबूती आने की संभावना है। नीदरलैंड्स में यूरोप की एक बड़ी भारतीय मूल की आबादी रहती है। यहाँ 90,000 से अधिक NRI, PIO और 2,00,000 से अधिक सूरीनामी हिंदुस्तानी हैं, जो डच समाज में पूरी तरह से एकीकृत हैं। प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय प्रवासी भारत नीदरलैंड्स साझेदारी का जीवंत सेतु है। सूरीनामी हिंदुस्तानी समुदाय के लिए OCI कार्ड की पात्रता 4थी पीढ़ी से बढ़ाकर 6ठी पीढ़ी तक करने के निर्णय का प्रवासी समुदाय ने उत्साह पूर्वक स्वागत किया। नीदरलैंड्स यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने अफसली डाइक बांध का दौरा किया। यह दौरा कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड तकनीकी सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है। अफसली डाइक के 90 से अधिक वर्षों के अनुभव का लाभ उठाते हुए नीदरलैंड्स इस परियोजना को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। अफुस लाइट डाइक 32 किलोमीटर लंबा समुद्री बांध है जिसने डच जल रक्षा तथा भूमि सुधार को नई परिभाषा दी है। कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खम्बात की खाड़ी पर लगभग 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाया जाएगा। ये नर्मदा, साबरमती, माही और ढाढ़र जैसी प्रमुख नदियों के मीठे पानी को रोकेगा और एक विशाल तटीय जलाशय का निर्माण करेगा। ये परियोजना कृषि और औद्योगिक विकास के लिए बंजर भूमि के विशाल क्षेत्रों का सुधार करेगी। इस यात्रा के परिणामों को 17 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपलब्धियों के तौर पर देखा जा सकता है। इनमें शामिल हैं स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को गति देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर एक संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रूपरेखा, आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए दुर्लभ खनिज सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना के माध्यम से जल प्रबंधन पर डस्ट सहयोग, कृषि और कौशल विकास के अंतर्गत त्रिपुरा में पुष्प कृषि और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच उत्कृष्टता केंद्र, शिक्षा और अनुसंधान के लिए नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालयों के बीच समझौता ज्ञापन और स्वास्थ्य तथा सीमा शुल्क जैसे अन्य क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देना है। नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: श्रोताओं, नीदरलैंड्स की यात्रा संपन्न कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 मई को स्वीडन पहुंचे। प्रधानमंत्री की ये दूसरी स्वीडन यात्रा भारत स्वीडन संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुई जिसने दोनों देशों के रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया। श्रोताओं, इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वो रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। ये विदेशी शासनाध्यक्षों को दिया जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है जो दोनों देशों के बीच गहरे लोकतांत्रिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक है।
3: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: आकाशवाणी की संवाददाता साक्षी सिंह प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने के लिए स्वीडन में थी। आइए सुनते हैं उनकी ये विशेष रिपोर्ट।
4: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के लिए एक संयुक्त कार्य योजना अपनाई जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी ये यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। दोनों देशों ने संयुक्त नवाचार साझेदारी 2.0 की शुरुआत की और AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: स्वीडन की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री 18 मई को नॉर्वे पहुंचे, जहां उन्होंने ओस्लो स्थित रॉयल पैलेस में नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम से मुलाकात की और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और इंडिया नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। श्रोताओं, नॉर्वे की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की जनता और वहाँ के नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि भारत और नॉर्वे के बीच लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों और दोनों देशों की जनता के बीच आपसी विश्वास तथा स्नेह का सम्मान है। आइए सुनते हैं श्रोताओं, आकाशवाणी संवाददाता संगीत

0: गोवा गोलपोड़े की विशेष रिपोर्ट जो इस यात्रा को कवर करने के लिए नॉर्वे में थी।
1: ओस्लो में आयोजित 30वें भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन ने भारत नॉर्डिक संबंधों को एक रणनीतिक आयाम प्रदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ ओस्लो में आयोजित 30वें भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन में भारत नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक उन्नत करने का निर्णय लिया गया। स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी में भारत की विशाल क्षमता और नॉर्डिक देशों की विशेषज्ञता को साथ लाना इसका उद्देश्य है। नॉर्डिक ब्लॉक के देश हरित प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी और डिफेंस के क्षेत्र में विभिन्न विशेषज्ञता रखते हैं। शिखर सम्मेलन में प्रत्येक सदस्य की विशेषज्ञता के अनुसार सहयोग करने पर चर्चा की गई। नेताओं ने भारत के सागरमाला और महासागर कार्यक्रमों के माध्यम से सस्टेनेबल शिपिंग पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। भारत और नॉर्डिक देशों ने हाल ही में लागू हुए ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के मद्देनजर आर्थिक सहयोग को और गहरा करने का निर्णय लिया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वे वैश्विक भू राजनीतिक उथल पुथल और आर्थिक तथा तकनीकी परिवर्तन के दौर में मिल रहे हैं। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और नॉर्डिक देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ निखिल कुमार।
0: 5 देशों की इस यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 20 मई को इटली पहुंचे, जहां उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ औपचारिक वार्ता की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को एक नए और उच्च स्तर पर ले जाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों ने व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को नई गति देने का संकल्प लिया और वर्ष 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य दोहराया। सेमीकंडक्टर्स, स्वच्छ ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, फार्मा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। विज्ञान, नवाचार और AI के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में इनोवेटिव इंडिया नामक एक नए नवाचार केंद्र की स्थापना की भी घोषणा की गई। इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम तकनीक, ग्रीन हाइड्रोजन और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे भविष्य के क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने छात्रों, शोधकर्ताओं और कुशल पेशेवरों की आवाजाही बढ़ाने, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और वर्ष 2027 को भारत इटली संस्कृति एवं पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने पर भी सहमति व्यक्त की।
2: आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की 5 देशों की ये यात्रा भारत और नॉर्डिक देशों के संबंधों को नए स्तर पर ले जाने और UAE के साथ हमारे संबंध को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण साबित हुई। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में मीडियम 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

आँख से दूर न हो, दिल से उतर जाएगा। वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा।

ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए, वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। अपने दिल को दुख ना दे यूं ही इस ज़माने की बेरुखी के लिए। वक्त के साथ साथ चलता रहे यही बेहतर है आदमी के लिए।

आकाशवाणी इंदौर से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल ने फरियाद किया। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में।

कुर्बत भी नहीं, दिल से उतर भी नहीं जाता, वो शख्स कोई फैसला कर भी नहीं जाता। आंखें हैं कि खाली नहीं रहती लहू से, और जख्म है जुदाई है कि भर भी नहीं जाता। वो राहत जहाँ है मगर इस दरबदरी में ऐसा है कि अब ध्यान उधर भी नहीं जाता। दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है और तुझसे पिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता।

0: कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: अमेरिका एंड इंडिया,
4: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
3: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है। विकसित भारत की

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: द मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और

श्रोता संघ छत्रपति शाहू नगर हिंगोली से रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टीकू इंगोले, रमाबाई सुरेंद्र, मयूरी सुरभि मंजूषा और गौतम इंगोले, अमरावती से चंदूजी हातोले, करनाल से सुधीर नूतन और इनके परिवार के सदस्य, किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम चांदनी और इनके परिवार के सदस्य, ग्राम लोहारी जिला खंडवा से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल, शीला, गायत्री, मानपुर से विजय वैद, रानी, महिमा, नीतू और इनके परिवार के सदस्य, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल, दिवेंद्र कुमार, नेहा, मिलिंद, रजनी, मास्टर प्रणय और कुमार साहू, अमरावती महाराष्ट्र से दिलीप लकड़े, सुरेखा, शुभम, डॉक्टर सारंग और विराज। अगले हमारे श्रोता हैं सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का आशा भोसले का गाया लोफर फिल्म का ये गीत।

इन दोस्त श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन। लीजिए, अब आपको सुनवाते हैं आए दिन बहार के फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और शब्द हैं आनंद बख्शी के। लिखने वाले हमारे श्रोता सतारा महाराष्ट्र से सतीश वाघमारे, अतीश, स्वाति, वर्षा, श्रमण, श्रवेण और इनके परिवार के सदस्य, कोल्हापुर से विजय चौहान, तेजस्विनी चौहान, अंकिता, अनिकेत और माय चौहान, इंदौर मध्य प्रदेश से अनुरोध करता है आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा, कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूरा श्रीमाली, खंडवा के ही हमारे श्रोता है संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति, सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान, लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोक, सुशील, पी के पुरी, कैलाश, अनीता, ममता, मेघा, पूजा, गगन, गुंजन, लालसा, रामा, कुणाल, निधि, हरीश, सतीश, रमेश, विनोद, पाली, डीसी पुरी और अरुण, पुणे महाराष्ट्र से प्रियंका आर्या, पंकज बाड़ोदे, जरूर अरुण से बाबा साहेब बाड़ोदे और मीनाक्षी चरपे, बेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री, वैष्णवी चंचल, अर्जुन धीरज और इनके परिवार के सदस्य, बालोद से कमलेश जयपुरिया, भिलाई से अनुश्री प्रदीप, पिंकी और प्रमिला, रायगढ़ से लाल चंद्र मिश्रा और नरेंद्र कुमार राम, डबवाली भटिंडा रोड से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग, राजपुर से घीसु दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का मोहम्मद रफी का गाया आए दिन बहार के फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन, और अब आपको सुनवा रहे हैं साहिल लुधियानवी का लिखा और रवि का संगीतबद्ध किया आंखें फिल्म का गीत। स्वर लता मंगेशकर का है। फरमाइश हमें

इन श्रोताओं से मिली है। मालेगांव महाराष्ट्र से दत्ता, सुनीताबाई, सानिका, गजानन और इनके परिवार के सदस्य। इंदौर से खुशी खर्चे, ब्रोनो, गणेश, कार्तिक, संजना, परी, ललिता, नारायण खर्चे, स्वाति, मालती और इनके परिवार के सदस्य। इंदौर के ही हमारे श्रोता हैं अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदनी, मुस्कान, नीलम, साजन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन और समस्त बामनिया परिवार। देवास से नागू सिंह कुमावत, राजकुमार, अभिषेक। देवास के ही श्रोता हैं मुरारीलाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम, राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, विनोद कुशवाहा, सोनू सेन और इनके परिवार के सदस्य। खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और इनके परिवार के सदस्य। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार और साई गायकवाड़। बदलापुर मुंबई से विजय वडालकर, लता वडालकर और अजिंक्य वडालकर। अंबरनाथ मुंबई से आकाश रेलकर और वैष्णवी। खंडवा मध्य प्रदेश से रमेश पंचोली, बीनू देवी पंचोली, प्रकाश, उर्मिला, दीपक, दीपिका, नंदनी, निखिल और गोरांज पंचोली। साथ ही और श्रोता हैं तेजल नीलकंठ, मीरा देवी, शिवानी, पिंकी, राधाबेन और इनके परिवार के सदस्य। तो आइए सुनवाते हैं आपको लता मंगेशकर का गाया आंखें फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, मन भवन कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं हमराज फिल्म का गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। रवि का संगीत है, साहिल लुधियानवी के शब्द हैं और सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे ये श्रोता सुमाई नगर इंदौर से बी आर, राष्ट्री, रौनक, दिव्यांशी, रोशनी, धीरज, सूति, टोनी, निधि और इनके परिवार के सदस्य, बेमेत्रा से पूर्णिमा सारथी, पूजा, आरती, भाविया और सुषमा सारथी, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा और इनके परिवार के सदस्य, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया, उमरखेड़ महाराष्ट्र से गंगाधर पोपलवाड़, सम्यक, प्रियंका, लक्ष्मीबाई और भारत धुले, वाकुड़ी से उत्तम जमधाड़े, बोरखेड़ा पित्रामल से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मुणत, चेतन धाटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मुणत और इनके परिवार के सदस्य, अगले हमारे श्रोता बहरामपुर टेमा से तिलोक चंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक, अमित, सचिन, श्वेता, अंजलि और समस्त वर्मा परिवार, बुरहानपुर मध्य प्रदेश से मुशरफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक, परवेज, रोजमीन, तैमूर तड़वी और भैया तड़वी, बुल्ढाना महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा, आकाश और इनके साथी, भाटापारा दतरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक ज्ञावेंद्र कुमार वर्मा। तो आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर का गाया हमराज फिल्म का ये गीत।

आकाशवाणी इंदौर से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन और अब हम आपको सुनवा रहे हैं चिराग फिल्म का गीत रफी की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के शब्द हैं, मदन मोहन का संगीत। सुनने वाले हमारे श्रोता सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया, अस्मा, सालिया, शोएब, मुश्ताबा खान, शाहिद राउफ और इनके साथी। छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। अगले हमारे श्रोता हैं गंज बासुदा जिला विदिशा मध्य प्रदेश से सुमित साहू, खिलान साहू, राजेश, प्रेम भाई, करिश्मा, अजय, राज और इनके परिवार के सदस्य। अगले हमारे श्रोता झिरनिया जिला खरगोन मध्य प्रदेश से भागीरथ नायक, जितेंद्र, सुभाष, रविंद्र, शिवानी, अश्विनी, अरविंद्र, आदित्य, गुनगुन और इनके परिवार के सदस्य। सनावत से किशोर कुमार सावले, रेखा सावले, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना चारुवी और प्रणव सावले। इंदौर मध्य प्रदेश से धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश, हनी, जिमी, अंकिता, दीमाना और जियांश। बुड़गहन छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता और शशिकांता। अगले श्रोता नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। नागपुर महाराष्ट्र से विट्ठल जाधव, अनुसुईया जाधव, मंगेश, पप्पू, पवन राजे। औरंगाबाद से मंगेश, संध्या, स्वराज और विराज। तो आइए सुनते हैं चिराग फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

कार्यक्रम में श्रोताओं अब आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा और आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया पड़ोसन फिल्म का गीत, स्वर किशोर कुमार का। लिखने वाले हमारे श्रोता पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी। वाशिम महाराष्ट्र से गबासी राठौर, सतीश, अभय, अजय, यश, खुशन। अगले हमारे श्रोता अनूपगढ़ से मंगल जनागल, रोशनी जनागल, अंकुल, इंदु, सुनील और इनके परिवार के सदस्य। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया। ग्रामखेड़ा मंसूर से भगत राम चौहान, कृष्णपाल, मयंक और प्रीति चौहान। सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान। धर्मपुरी जिलाधार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर, आयान, फैजान, सुमेरा, साइमा, हसनैन और खुशी। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहरा जहां।

श्रोताओं, मनभावन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इंदौर से। लीजिए अब सुनिए, नक्श लियालपुरी का लिखा और खयाम का संगीतबद्ध किया खानदान फिल्म का गीत। आवाज लता मंगेशकर की है। लिखने वाले हमारे श्रोता छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि और शीतल। मित्र रेडियो श्रोता संघ सनावद मध्य प्रदेश से हुकुम चंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक, सचिन कटारिया, प्रभा, कृष्णा, विराज, अर्नव और काव्यांशी। बैतूल मध्य प्रदेश से अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल। अगले हमारे श्रोता इंदौर मध्य प्रदेश से अनिल कौचाले, सभिया फजल, सुषमा, पूजा निनामा, सीमा, मीनू जोशी और इनके परिवार के सदस्य। राजस्थान से ब्रजलाल चौहान, नीरज कुमार चौहान। मलोट पंजाब से आदर्श शर्मा, क्षमा कीजिए, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरव और शाइना शर्मा। इंदौर के ही हमारे श्रोता हैं समता चित्रा, निशा, अनिल भंडारे और उषा भंडारे। द्वारकापुरी इंदौर से राजेश शर्मा, भावना शर्मा, जयदीप, अर्पिता, हेमंत, हिमांशु, अद्विका, निशिता शर्मा और इनके परिवार के सदस्य। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया खानदान फिल्म का ये गीत।

श्रोता मनभावन कार्यक्रम की अंतिम पेशकश के रूप में आपको सुनवा रहे हैं दाग फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। साहिल लुधियानवी ने इस गीत को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता महाराष्ट्र से गंगाधर पोपलवाड़, सम्यक प्रियंका, लक्ष्मी, स्वरित और उत्तम जमधाड़े, आगर मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवीय, सुषमा, ममता, मंजू, राधा, दुर्गा, आयुष, उमंग, आयुष और इनके परिवार के सदस्य, बिरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज, वाशिम महाराष्ट्र से विठ्ठल सुरोशे, सुषमा, परिधि, निधीश, मायरा, डोंबिवली मुंबई से भावना यादव, अधीश यादव, स्मित और श्रियांश गोरे, ग्राम फ्रांसी से राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह, प्रमोद, हांसी शहर से राजू मेघलानी, बबीता, सुभाष और बबू डब्बू, जालना महाराष्ट्र से सुधाकर राजे यादव, प्रशांत जगू, वर्षा, संचित, प्रथमेश, सोहम, प्रणाली, सानवी और इनके परिवार के सदस्य, महाराष्ट्र के ही श्रोता है सैयद आरिफ, जुनेद बेग, गोविंद भगेरिया और मुईद अली, तेलंगाना से फरमाइश करने वाले श्रोता मोहम्मद बरहाउद्दीन, रुकनुद्दीन मटाल, मजान, समेश, अजीज़ और अब्दुल बाबा, बहरामपुर टेमा खरगोन मध्य प्रदेश से।

त्रिलोकचंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा, अमित वर्मा, सचिन, समर राज, आर्यन, आरोही, इशिका, अंजलि और श्वेता। तो आइए सुनते हैं दाग फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन, यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं शशिकांत मनोहर तांबे का ख्याल गायन, राग है अभोगी।

48 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप 2 में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।